अगर किसी बात ने आपको अंदर से परेशान किया है तो उस बात को आज की सुबह में ही भूल जाइए, क्योंकि कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है सभी के लिए।

दोस्तों, ये जो सुबह की ठंडी हवा है ना, ये सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि सोच भी बदल देती है। और जब सोच बदलती है तब पूरी दुनिया नई लगने लगती है।

हो सकता है कि अभी सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप अब भी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले लोग कभी हारते नहीं, बस सीखते जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं।

दोस्तों, तो इस नए दिन का स्वागत एक हल्की सी मुस्कान के साथ कीजिए, और मैं तो कहता हूं कि खिलखिला कर कीजिए, क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है एक और मौका बेहतर बनने का और बेहतर जीने का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53:30 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची। 6:10 पर आप सुनेंगे

लीजिए कार्यक्रम अर्पण और 6:44 पर सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, जिसमें आप गान सुनेंगे। 7:10 पर कार्यक्रम सुनेंगे गोल प्रभात। 8:45 पर म्यूजिकल दिल लगी। प्रातः के 9:10 पर फिर से आप म्यूजिकल दिल लगी सुनेंगे। 10:30 पर कार्यक्रम सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर कार्यक्रम तस्वीर प्रस्तुत होगा, जिसमें आप आज बातें होंगी चेरा पूंजी की। 12:10 पर कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे। 1:10 पर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुनेंगे, जिसमें आज बातें होंगी प्रेम चोपड़ा जी की। 2:30 पर कार्यक्रम उन्नत किसान सुनेंगे। 3:10 पर कार्यक्रम मन भवन आप सुनेंगे। 4:10 पर फिल्मी गीत आपको सुनने को मिलेंगे। 4:30 पर कार्यक्रम सुनेंगे परिक्रमा। 5:10 पर गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:10 पर कार्यक्रम सदाबहार गीत सुनेंगे। 7:25 पर कार्यक्रम सांझ ढले आप सुनेंगे। 8:10 पर मधुरिमा और 10:30 पर कार्यक्रम हर सिंगार प्रस्तुत होगा। उसके बाद 11:10 पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी

0: वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Nashik Police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. CBI has now taken his custody. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of AMMK, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction, led by former Chief Minister and Party General Secretary Eddapadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners.

जीवन को पकड़ कर रखने की कोशिश मत कीजिए। ये नदी की तरह है, बहने पर ही सुंदर लगता है। दरअसल हर अनुभव हमें थोड़ा और गहरा बना जाता है। तो आज जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। 100.1 MHz पर अर्पण में आज आप हैं उर्वशी के साथ। सुप्रभात।

कभी ध्यान दिया है? बाहर के ट्रैफिक से ज्यादा शोर हमारे मन में चलता है, हर समय तुलना, चिंता, उम्मीदें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है

संसार की आवाजें उसे डेगा नहीं पाती। इसलिए दिन में बस कुछ पल अपने भीतर उतरिए, क्योंकि सबसे पवित्र मंदिर शायद आपका शांत मन ही है।

कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं और अंत में खुद से ही दूर हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना भी भक्ति ही है। जिस दिन आप बिना डरे अपने सत्य में जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेगा, दीपक की तरह शांत लेकिन उज्जवल। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं अर्पण और वशी के साथ।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

6:30, 14.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण। हम अक्सर लोगों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम उनके लिए करते हैं, पर जीवन कोई हिसाब किताब की दुकान नहीं। रामायण में देखें तो समझ सकते हैं कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार करना जानता है। कभी कभी सामने वाला बदलने नहीं वाला, लेकिन हमारा देखने का नजरिया बदल जाए तो मन का बोझ हल्का हो जाता है।

गंगा मैया सबको पार लगाएं, इसी शुभकामना के साथ अब बस अर्पण से इजाजत लूंगी और थोड़ी देर में आप सुनेंगे रामचरितमानस।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।

मनपसंद चाय, मनपसंद आवाज और मनपसंद गाना एक साथ मिल जाए तो भाई क्या बात है ना। तो चलिए सुबह को और खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ। गोल्ड सुप्रभात में आप हैं उर्वशी के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 7:11 और 10 सेकेंड। गुड मॉर्निंग।

बिल्कुल ऐसा ही हमें कई बार अपने घर में लगता है ना कि बहुत टाइम हो गया, बस हम अपने आप से ही नहीं मिल पाए। अक्सर देखा गया है कि हमारे घरों में लिविंग रूम होता है, बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, यानी जगह बहुत होती है, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा कमी शायद एक ब्रीदिंग रूम की महसूस होती है। घबराइए मत, इसके लिए कोई बड़ा 10x10 का कमरा नहीं चाहिए। मन की शांति के लिए, दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए तो घर का एक छोटा सा कोना ही काफी होता है। वो एक छोटी सी मेज हो सकती है जिस पर रखे हों ताजे फूल, या फिर पूजा की जगह हो सकती है, या फिर घर हरे भरे गमलों और विंड चाइम वाली बालकनी का कोई शांत कोना, मतलब घर की वो जगह जहां आपको सुकून महसूस होता हो, अपनापन महसूस होता हो, जहां कुछ देर आप अपना साथ महसूस कर पाए। अगर ऐसा कोई कोना अभी तक नहीं है घर में तो एक जरूर ढूंढिए, थोड़ी जगह दीजिए खुद को और अपने मन को भी।

इन नए बस्ती इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, धोखा दे जाती है पुराने निशान। खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठहरता हूं। यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौट रहा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौट रहा हूं। आप सुन रहे हैं गोल सुप्रभात उर्वशी के साथ FM गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कई बार लगता है ना कि काश हम बीती कुछ बातों को बदल पाते, कुछ चीजों को बिगड़ने से रोक पाते, कुछ बातों को सुधार पाते, पर ऐसा होता कहाँ है। जो बीत गया वो बीत ही जाता है, इसलिए जो करना है आज में करना होता है। अब देखिए ना, कार में आगे का शीशा पीछे वाले शीशे से बड़ा होता है। अब पीछे जो छूट गया वो छूट गया, क्या छूटा उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं।

सफर है हो

13 मई बुधवार की खूबसूरत सुबह का सफर आगे बढ़ाते हैं। अब फिलहाल मैं चलती हूं, एफएम गोल्ड पर आपसे मिलूंगी 8:45 पर दोबारा। अब वक्त है समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना ही पड़ता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन में अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें और अपने मनोरथों को सिद्ध करें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। दिस इज आज सवेरे and yes, we are very happy and very thrilled to begin our program. Well, it is a blend of news, music and so many things. Metro City updates as well. We'll also explore today's history. Today's 13th of May 2026. So let's begin our program without any further delay. We are starting with the headlines.
0: Ji bilkul. तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को AIDMK से अलग हुए गुट का समर्थन भी प्राप्त है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: The Central Bureau of Investigation or CBI has taken into its custody Shubham Khenner in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam was admission for to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities.
0: उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं।

0: से जांच होगी।
1: Now let's give you the weather updates. So the India Meteorological Department has issued red alert for heatwave conditions in Rajasthan. Border districts of the state are currently reeling under severe heatwave conditions. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius. Pretty hot. Barmer was the hottest place in the state yesterday with the maximum temperature recorded at 48.3 degrees Celsius. So this is all about Rajasthan. So the director of the Meteorological Center, Jaipur, told Akashwani that severe heatwave conditions are likely to continue in the western districts of the state for the next 3 to 4 days.
0: और अगर बात करें खेल जगत की तो आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से मात दी। कागेश्वर अबाडा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है।
1: Now, Asian Boxing Under 17 Championship. So, at this particular championships, in Tashkent, Uzbekistan, Lakshya Pogat emerged as the lone finalist among the Indian boys after defeating Korea's Sungmin Lee 5-0 in the 75kg semi-final. Four other Indian boxers settled for bronze medals. Meanwhile, the Indian girls continued their impressive campaign with 8 boxers advancing to the finals and 4 others clinching bronze medals. The girls' team will now aim to convert their strong performances into gold medals in the finals.
0: श्रोताओं अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली से जुड़े समाचारों की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इसमें 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि वर्ष 2017 में अपनी स्थापना के बाद से पेंशन अदालतें लंबे समय से लंबित और जटिल पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी मंच साबित हुई हैं। अब तक आयोजित 15 पेंशन अदालतों के माध्यम से लगभग 28,000 मामलों पर सुनवाई हुई है। और दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की द्वारका उपनगरी को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। एक बैठक में उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को द्वारका के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि इसी तर्ज पर रोहिणी और नरेला को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वर्ष 1956 से देश के चिकित्सा नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्यरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा को किफायती बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख ओपीडी के साथ संस्थान ने अद्वितीय गुणवत्ता के साथ रोगी देखभाल का मानक स्थापित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में रोगी देखभाल अवसंरचना के निर्माण के लिए एम्स में 2,800 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग 390 से बढ़कर 825 हो गई है।
1: We will focus now on Chennai. So Tamil Nadu is among the top 5 states in India in higher secondary education enrollment with a gross enrollment ratio which is GER of 83.4% according to a Niti Aayog report. Goa ranked first with 93.8%, followed by Kerala and Himachal Pradesh at 84.7%, while Uttarakhand stood at 80.9%. So the report said, Tamil Nadu improved its higher secondary GER, which is gross enrollment ratio, by 13.1% between 2014 and 2025. So enrollment among girls also increased from 76.7% during the same period. Education experts said that this rise is due to more higher secondary schools, free laptop schemes, also campaigns to bring back dropouts and incentives for continuing education. The report also noted that 60.8% of schools in Tamil Nadu have functional smart classrooms.
0: और अगर बात करें महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों का, तो महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर और सतारा में पूर्व सैनिकों के लिए

0: एकीकृत कल्याण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए गठित विशेष निधि समिति की 50वीं वार्षिक बैठक कल मुंबई के लोकभवन में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में 5,459 पुलिसकर्मियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम के रूप में 1,768 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए आवास ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना लागू की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बाद में इस योजना को दोबारा शुरू किया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 और 56 के तहत की गई है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
1: So turning our attention to Bengaluru, the first update, Karnataka has secured major recognition in the National Panchayat Awards 2025 announced by the central government. 6 gram panchayats from the state won awards in different categories and this makes Karnataka one of the top performing states in the country. Rural Development Minister Priyank Kharge congratulated the award-winning panchayats. Mudradi Gram Panchayat in Udupi district won the first prize in the poverty-free and enhanced livelihoods category and received a cash award of 1 crore rupees. Other award-winning panchayats, they included Vansay, Sanuru and Hakladi. 5 of the 6 award-winning panchayats are from Udupi district only. Another update, it is about PM E-Drive scheme. So Union Minister H.T. Kumaraswamy has announced approval for 1,243 EV charging stations in Karnataka under this scheme, PM E-Drive scheme, with a financial outlay of over 123 crore rupees. Addressing a national conference on EV charging infrastructure in Bengaluru, the minister said, H.D. Kumaraswamy, he said, Karnataka, especially Bengaluru, has become a key hub in India's clean mobility transition. He added, the proposals for 4,874 EV chargers worth over 503 crore rupees have been approved across various states and public sector enterprises.
0: और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी विभागों को अगले छह महीने और 2 साल की विकास योजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के आधार पर सख्त उपस्थिति नियम भी लागू किए गए हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुबह 10 बजे से 10:15 बजे के बीच ड्यूटी पर उपस्थित होना अनिवार्य है और उन्हें शाम 5 बजे से 5:15 बजे के बीच जाने की अनुमति नहीं होगी। नए नियमों का लक्ष्य शासन को गति देना है।
1: नाउ लेट्स हेड टू हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला इनॉग्रेटेड द फील द जेल एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम and Jail Museum at the State Institute of Correctional Administration in Hyderabad. The governor said that prisons must transform from places of punishment into centres of reform. He emphasised that social progress requires both punishment and rehabilitation, helping prisoners develop personality and start new lives. The initiative, this allows visitors to experience prison life firsthand through specially designed cells. So the Jail Museum displays the history of prisons in Telangana and this includes exhibits from Nizam era and the role of prisoners in building the Nagarjun Sagar Dam. The museum features displays about notable historical figures who were actually imprisoned in Telangana such as Dasarathi Krishnamacharyulu and Bhakta Ramadasu. It also showcases prisoner rehabilitation programs, prison industries and inmate-made products. So these were the Metro City updates, listeners, for you.
0: और श्रोताओं, आज सवेरे कार्यक्रम में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। इधर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो शहर में आज बारिश और आंधी आने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा।

0: शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर बात करें कोलकाता की तो शहर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच सकता है। अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल शगुन से।
1: वेल, बिगिनिंग विद चेन्नई मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 22 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature, minimum temperature will be around 27 degrees Celsius and maximum temperature in Hyderabad will be around 40 degrees Celsius.
0: अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
1: Well, we'll start with the year 1648. So the construction of the Red Fort, Lal Qila in Delhi, was completed after nearly a decade of work and becoming the primary residence of the Mughal emperors. In 1846, the United States Congress officially declared war on Mexico following a request from President James K. Polk. In 1909, the first Giro d'Italia bicycle race began in Milan, Italy.
0: और 1918 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किए।
1: In 1940, Winston Churchill delivered his first speech as Prime Minister to the House of Commons, and he famously stated there, and I'm quoting, "I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat." In 1952, the first ever session of the Rajya Sabha, Upper House of Parliament, it was held in Delhi. In 1952 again, Pandit Jawaharlal Nehru was again sworn in as the Prime Minister of India and formed a new Union Ministry following the first general elections. In 1962, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was sworn in as the second President of India while Dr. Rajendra Prasad retired from the post. In 1967, Dr. Zakir Hussain was sworn in as the third President of India, becoming the first Muslim to hold the office. In 1971, the government of India announced the nationalization of LIC General Insurance.
0: और वर्ष 1999 में जापानी छात्र के नागुई विश्व की सात सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र यानी कि 25 वर्ष में उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, पर्वतारोही बने थे। इसके बाद 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब भी अपने नाम किया। इसके 10 बरस बाद यानी कि साल 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: In 1998, India successfully conducted two more nuclear tests at Pokhran, Rajasthan, completing the Pokhran 2 series, Operation Shakti.
0: बिल्कुल। और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। इस कड़ी में सबसे पहले बात बादल सरकार की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे एक अभिनेता, नाटककार और निर्देशक थे। उन्होंने तीसरा रंगमंच का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया और उसे मंच पर भी उतारा। कम से कम खर्च में नाटक का मंचन करना और आम जन तक उसकी पहुंच को सुलभ बनाना ही उनका मकसद था। सन 1956 में बादल सरकार ने अपना पहला नाटक सोल्यूशन एक्स लिखा। उनकी मुख्य रचनाएं हैं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, राम श्याम जोदू, कवि कहानी, बाकी इतिहास, तीसरी शताब्दी और कई।
1: Well, today we are also remembering Joseph Henry, the founding father of electrical industry and electrical technology as well. Along with Michael Faraday, revolutionized the electrical industry and electrical technology. Electric motors, generators, transformers, radio and the telegraph all function on electromagnetic principles discovered by these men who worked on opposite sides. Well, Henry not only pioneered electrical technology almost 50 years before Thomas Edison, but led the Smithsonian, well, the National Academy of Science, and occupied important positions such as President Lincoln's science advisor. The world of physics and electronics now uses the scientific unit Henry H to measure the inductance. Henry is the founding father of the National Weather Service and led study of the atmosphere as well. I was telling you about Joseph Henry.

0: मैं अपने श्रोताओं से अपील करूंगा कि वे इस बैकग्राउंड में बज रही धुन को पहचाने.
1: Well, yes, I can.
0: और मुझे लगता है कि अब तक सभी श्रोता इसको पहचान ही गए होंगे.
1: Exactly.
0: ये धुन है प्रसिद्ध धारावाहिक मालगुड़ी डेज की, और आज इसको बनाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन स्वामी की पुण्यतिथि है. उन्हें आर के नारायण के नाम से जाना जाता है. वे अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में तीन सबसे महान उपन्यासकारों में से एक गिने जाते हैं. मुलक राज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है. उपन्यास तथा कहानी की विधा को अपनाते हुए आर के नारायण ने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में नाटक का मंचन किया.
1: Well, yes, we are remembering the literary genius, the master of simplicity and storytelling, R.K. Narayan. Well, through his stories, he brought Malgudi to life and gave Indian literature a classic voice. So the soul of Malgudi, Mukesh, still whispers through the pages of his books, reminding us that storytelling is not just a craft, but it is a way of life. He taught us to find beauty in the ordinary. So R.K. Narayan's Malgudi Adventures, it is more than just a collection of stories. It is a timeless portrayal of human nature, of small joys and the rhythm of everyday life.
0: धारावाहिक के जो मतलब एक तरीके से हम बात करें तो एक किरदारों में जो जीवंतता दिखाई देती है इन्हीं के धारावाहिक मालगुड़ी डेज में जो मिठाई वाला करके एक पूरी सीरीज है उसमें क्या माली और उसके पिता के बीच में जो संवाद हुआ और एक तरीके से अगर हम बात करें तो
1: वेरी सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरीटेलिंग,
0: बिल्कुल जीवंत बिल्कुल बुनियादी चीजें उसमें दिखाई गई हैं. एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पर उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत होगी उस समय के मिठाइयों के रेट लिखे हैं 25 रुपए और
1: They were prevalent at that time.
0: मतलब कितना वो सस्ता समय होगा और उसमें
1: yeah, it makes us wonder.
0: बिल्कुल. So, आज भी अगर उसे हम देखें तो ऐसा लगता है कि पुराने समय में हम चले गए हैं.
1: Well, right. And we can actually say that he shaped Indian literature as we know it today. So we were telling you about R.K. Narayan.

0: आर के नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। इसके अलावा भी ना जाने कितना ही कुछ। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा कई सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
1: Today, listeners, we are also remembering Ritchie Valens. Well, a pioneer, a trailblazer, a voice that changed music forever. Well, Ritchie Valens, though his life was cut tragically short, well, his impact was anything but small. With songs like La Bamba, Ritchie brought Mexican-American culture to the mainstream, proving that rock and roll could be bilingual and deeply rooted in heritage as well.

0: we were listening to Donna by Richie Valens.
1: और श्रोताओं, आज असित सेन, हिंदी के सिनेमा किंग कहे जाने वाले, कॉमेडी किंग कहे जाने वाले असित सेन की आज जयंती है। उन्होंने 4 दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का यादगार किरदार प्ले किया। असित सेन ने अभिनय की शुरुआत दुर्गाबाड़ी में चलने वाले कई बांग्ला नाटकों से की। असित ने बांग्ला फिल्म अमानुष और आनंद आश्रम सहित अनुसंधान में भी काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में हैं 20 साल बाद, चांद और सूरज, भूत बंगला, नौनिहाल।

0: ब्रह्मचारी, यकीन और आराधना, प्यार का मौसम, पूरब और पश्चिम और भी बहुत कुछ। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म 2-4 से उनका ये डायलॉग।
1: हेलो पुलिस स्टेशन,
2: रामू, गोपाल, गिरधारी,
1: चिल्लाओ नहीं, पुलिस आ रही है।
2: अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे, चलो भागते रहे।
3: So listeners, today we are also remembering T. Balasaraswati, the celebrated dancer of the 20th century, synonymous with Bharatnatyam, well known for highly technical and specialized technique of storytelling through mime. She was well known as the most successful dancer to tour the West, holding residencies at prestigious venues, particularly the Deva universities where she used to perform as well. Today we curate, we have so much to say about her, and T. Balasaraswati in her prime performing her signature piece Krishnani Begani. She is accompanied here by N. Narasimhulu on the vocal as well. Well, we were telling you about the highly celebrated dancer T. Balasaraswati.
0: इनके बारे में अगर बात करें तो 1934 में इन्होंने कलकत्ता में पहली बार दक्षिण भारत में अपनी परंपरागत शैली का प्रदर्शन किया। ऐसा करने वाली तंजोर बालासरस्वती भारत की पहली महिला थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और आज सच्चिदानंद राउत राय, जो कि उड़ीसा के साहित्यकार माने जाते हैं, उनकी भी आज जयंती है। उन्हें वर्ष 1962 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह कविता 1962 के लिए उन्हें सन 1963 में उड़िया भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें 1986 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाथेय, रक्त शिखा, हांसत, मसानीर फूला, चित्रग्रीवा, माटीर ताज और बाजी राउत उनकी प्रमुख रचनाओं में शुमार है। स्वाधीनता संग्राम सहित अनेक आंदोलन में भाग लेने के कारण सच्चिदानंद राउत राय कई बार जेल भी गए।
3: Well, today we are also remembering Major Ronald Ross, the epitome of Victorian bug hunters. Well, he returned to his roots as a physician and he pursued Manson. And the hypothesis is that the mosquito acted as a nurse to the malaria parasite. He paid patients to allow mosquitoes to bite and then dissected mosquitoes after their blood meal. So, well, I was telling you about Major Ronald Ross.
0: और श्रोताओं, आज रविशंकर का जन्मदिन है। वे एक प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक कहे जाते हैं। उन्होंने तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक अभूतपूर्व विश्वव्यापी आंदोलन चलाया है। विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों, आर्ट ऑफ लिविंग तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज सहित कई संगठनों की एक श्रृंखला और 156 देशों से भी अधिक देशों में तेजी से बढ़ रही अपनी उपस्थिति से गुरुदेव रविशंकर अब तक लगभग 45 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई ख्याति प्राप्त मंचों से सम्मान प्राप्त हुए हैं।
3: Well, today let's also tell you about another musician, Stevie Wonder. The singer, songwriter, musician and record producer, well, he is credited as a pioneer and influencer of musicians across a range of genres that include R&B, it includes pop, soul, gospel, funk and jazz. Let's listen to one of his most loved hits.

0: श्रोताओं, पार्श्व में बज रही इस धुन के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों

0: विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष

0: ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की तीन दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चार पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवी मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी ओहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज्म व जब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौकफ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज्म व जब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी

0: देने का हुक्म दिया गया है, जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की किफायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उजराए आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने पीएनजी, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वजीर आला, वजरा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर जरूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वजीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने पीएनबी मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर खास तौर से जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि वजरा, एमपी, एमएलए और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियां मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बुहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरखास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वह बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाकये में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिवीजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने

0: कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताजातरीन अमन तजवीज को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्जाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाजे को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जनूब मगरबी मॉनसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात आईएमडी के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जनूब मगरबी मॉनसून के जनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुन्दर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निजाम सतह समुन्दर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इंकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह है, मुजाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा जेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत

अली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शेयरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मॉनसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 म्यूजिकल दिल्ली में आप हैं उर्वशी के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर। और आज कल ऑनलाइन दुनिया में स्मार्ट बनना भी जरूरी है और अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डीप फेक एआई मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल सी फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करके फेक इंटीमेट कंटेंट बनाना बस कुछ ही मिनटों का काम रह गया है। पहले ऐसे फेक कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने में लगभग 24 घंटे से लेकर कई दिनों तक लग जाते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया है कि शिकायत मिलने के बाद ऐसा कंटेंट सिर्फ 2 घंटों के अंदर डिलीट कर दिया जाना चाहिए। तो अब इस पर प्रतिक्रिया कैसी आती है ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं बल्कि किसी की प्राइवेसी, रिस्पेक्ट और मेंटल पीस को भी इफेक्ट करता है। ऐसे फेक वीडियो और तस्वीरें कई लोगों में फियर, एंग्जाइटी, शेम या सोशल आइसोलेशन जैसी मानसिक परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल जमाने में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। तो क्या कहते हैं, आप भी स्मार्ट है ना और अलर्ट भी है ना, और अगर कुछ चीजें नहीं भी पता हैं, थोड़ा इधर उधर होती है, तो हम हैं ना यहाँ पर एफएम गोल्ड पर ऐसी ही चीजों के साथ लिए म्यूजिकल दिल्ली की आपके पास पहुंच रही है उर्वशी और ये प्यारा सा गीत। चलिए एंजॉय करते हैं साथ साथ।

नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था। उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था। जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम। विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र

0: साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था, जो मैं रात को हवा महल जिस पे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: आकाशवाणी की दीवानगी ऐसे ही जारी रहेगी हमारे साथ, आपके साथ। 8:55 हो चुके हैं और म्यूजिकल दिल लगे में आप हैं और वशीक के साथ, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET के बारे में बात करने वाली हूं, क्योंकि ये जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चों को नई दिशा देता है, बेहतर भविष्य भी देता है। और CTET ऐसे ही शिक्षकों को, योग्य शिक्षकों को चुनने में मदद करती है ताकि हम अपने देश का भविष्य बेहतर कर पाए। तो अगर आप भी इसी का इंतजार कर रहे थे, टीचर टेस्ट का, तो आपको बता दें कि सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया 11 मई से शुरू हो गई है, 10 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, 6 सितंबर को परीक्षा होगी ऐसा कहा जा रहा है, पर जरूरत पड़ने पर 5 सितंबर को भी आयोजित की जा सकती है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि एप्लीकेंट अपने पसंद का शहर नहीं चुन पाएंगे, परीक्षा शहर। तो CBSE की तरफ से परीक्षा शहर और सेंटर रैंडम बेसिस पे दिया जाएगा, शहर बदलने की भी कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी, तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। फिलहाल अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 15 से 18 जून तक करेक्शन करने का मौका मिलेगा, और रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के अंत तक आने की संभावना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट नोट कर लीजिए, CTET.NIC.IN, और दूसरी वेबसाइट है CBSE.GOV.IN के जरिए आप यहां अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

तो ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको. दिन भर गाते कर रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा इन गीतों को और मुझे याद करते रहिएगा. फिलहाल म्यूजिकल दिल्ली का सफर जो है वो जारी रहेगा नाज के साथ. फिलहाल मैं चलती हूँ और बीच में चलिए सुन लेते हैं समाचार FM गोल्ड पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गए। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीसामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कल हैदराबाद स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में फील द जेल कार्यक्रम और जेल संग्रह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि जेलों को सुधार केंद्रों में बदला जाना चाहिए। जेल संग्रहालय में तेलंगाना की जेलों के इतिहास, निजाम काल की वस्तुओं और नागार्जुन सागर बांध के निर्माण में कैदियों की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान

सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। अगले 24 घंटे में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातों के बीच माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ और एंजॉय करेंगे फिलहाल प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आएंगे, क्योंकि इस ट्रैक के उस पार है आपके लिए आज का सवाल, जिसका जवाब भी तो आप देंगे।

बहस, इख्तलाफात या डिसएग्रीमेंट्स इस दुनिया के हर रिश्ते में होते हैं, है ना? गलत फहमियां भी हो जाती हैं, कभी कभी मन भर जाता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होता है तो साथ निभाने का इरादा, जैसे आपका और हमारा। 8 जून 1936 से शुरू हुआ आकाशवाणी का ये सफर 90 साल का होने जा रहा है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का दिया नाम आकाशवाणी, यानी आकाश, आसमान से आती वाणी। भारत की 98% आबादी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बोलियों या भाषाओं तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है 23 भाषाएं और 146 बोलियां। जी हाँ, और पूरे देश की आवाज बनने तक के इस सफर में हमें सुन रहे हर लिसनर का एक हिस्सा है, और एक बड़ा वाला थैंक यू भी बनता है हमारे साथ जुड़ने और हमें कभी न छोड़ने के लिए। फिलहाल म्यूजिकल दिल्लगी में पूछ रही हूं आपसे आज का सवाल, जिसके जवाब में आपको लिखकर भेजना है या फिर भेज सकते हैं एक से ज्यादा भी आकाशवाणी के सबसे पॉपुलर यानी सबसे मशहूर रूरल यानी कि ग्रामीण अंचल से जुड़े प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम्स के नाम। इसके साथ ही आपका पर्सनल फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है ये भी जरूर बताइएगा, कहां और कैसे ये भी याद दिला देती हूं। fmgoldair@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868886753 पर। और मैं क्या करूंगी, आपका बढ़ाऊंगी थोड़ा सा ज्ञानकोश आज के दिन के बारे में, और फिर प्रोग्राम के एंड में शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने भेजा होगा आज के सवाल का जवाब। साथ ही आप में से किसी एक लिसनर से करूंगी गपशप फोन लाइन पर। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि सवाल का जवाब भेजने के बाद फोन को कहीं साइड में नहीं रखना और ना ही बिजी रखना है, ताकि मैं जब करूं आपको कॉल तो जल्दी से हो जाए हमारी टॉक।

0: और चलिए, जब साथ निभाने का वादा कर ही लिया है तो अब नहीं गवाऊंगी वक्त ज्यादा और आपको बताऊंगी कि क्यों आज की तारीख यानी 13 मई को आपको याद रखना चाहिए। भारत के डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन एक खास मुकाम रखता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1952 में आजाद भारत का पहला संसद सत्र आयोजित किया गया था। इससे पहले 3 अप्रैल 1953 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन हुआ था और फिर कुछ दिनों के बाद ही 17 अप्रैल 1953 को ही लोकसभा का गठन किया गया था। और इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 13 मई 1952 वो तारीख थी जब स्वतंत्र भारत की संसदीय व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई थी। और भी बहुत सी खास बातें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, जिन्हें मैं बताऊंगी और आप सुनेंगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उससे पहले एक छोटा वक्फा, वक्फा माने ब्रेक, और तब तक आप सुनिए आशा जी की आवाज में खतूबा।
1: खतूबा

अच्छा वैसे खतूबा का मतलब यानी मीनिंग आपको पता है? मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने अपने साथ साथ इंटरनेट को लगाया काम पर और कई घंटों की मेहनत के बाद मुझे पता चला कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जी हाँ, खतूबा ये खास शब्द कलम के जादूगर आनंद बख्शी साहब ने गढ़ा था पंचमदा के लिए और फिल्म थी अली बाबा 40 चोर। और कमाल देखिए, इस बेमतलब से शब्द ने इस गाने को कितना गहरा असर दे दिया जो आज तक कम नहीं हुआ। और वैसे हुआ तो कम नहीं है आपका जोश भी, क्योंकि जिस तरह से आप सभी भेज रहे हैं आज के सवाल का जवाब, मुझे लग रहा है डर कि इतने सारे नामों में से कहीं मुझसे कोई नाम छूट गया तो आप नाराज हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या, सच बताइए। अभी सुनिए ये अगला ट्रैक, तब तक मैं आपकी नाराजगी से बचने की पुरजोर कोशिश करती हूं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ। घड़ी ने बजा दिए हैं 9:38 और 28 सेकंड्स भी। और आपको याद दिला दूं कि सवाल भी पूछा है मैंने आपसे। आपको बताना है आकाशवाणी के पॉपुलर रूरल प्रोग्राम्स के नाम, साथ ही आपका फेवरेट कौन सा है ये भी लिख भेजिएगा fmgoldair@delhi.gmail.com पर, या फिर अगर व्हाट्सएप खुला हुआ है फोन में तो लिख भेजिए 9868867 पर अपना मैसेज। और फिलहाल सुनिए कि और क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन यानी 13 मई को। तो साल था वो 2000, जब एक और जीत हुई थी हमारी, जब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। साइप्रस के निकोसिया शहर में हुआ था फाइनल राउंड, जिसमें 9.99 का स्कोर लारा दत्ता जी ने हासिल किया था, जो मिस यूनिवर्स के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्कोर है। और इससे पहले साल 1994 में भारत की ओर से ही सुष्मिता सेन ने यह खिताब अपने नाम किया था। सच में बेटियों के पंखों को अगर मजबूती दी जाए तो वो कहां तक उड़ सकती हैं और क्या कुछ करके दिखा सकती हैं, इस बात का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नहीं? और भारत की बेटियां यूं ही उड़ान भरती रहें और देश का नाम रोशन करती रहें, इसके लिए जरूरी है उनका बचना और फिर पढ़ना भी, जिसे इसी बात को सुनिश्चित करती भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहां पर जिक्र करने वाली हूं, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में और तारीख थी 22 जनवरी। बेटियों को लेकर समाज की पुरानी मानसिकता बदले और उन्हें भी बराबरी का हर मौका मिले, इस ओर ये एक सराहनीय कदम है जिसमें हम सबको अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभानी है और अपनी बेटियों को न सिर्फ उड़ने देना है बल्कि उनका साथ भी निभाना है जहां तक उन्हें जरूरत हो।

आज के दिन यानी 13 मई से जुड़ी कुछ और खास बातें अब जान लीजिए, जिनमें शामिल है साल 1905 भी, जब भारत के पांचवें राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जन्म पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक देश के सर्वोच्च यानी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और इस पद पर रहते हुए ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया था। और इन्हीं के साथ आज के दिन को हमें याद रखना चाहिए भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महान और मशहूर उपन्यासकारों में से एक आर के नारायण साहब के लिए भी, क्योंकि आज उनका स्मृति दिवस है। आज ही के दिन साल 2001 में उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड और हम सबकी जानी मानी कहानी मालगुड़ी डेज। उन्हीं का लिखा ये शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियों का एक मशहूर संग्रह है। और चलिए अब सुन लेते हैं अगला गाना, क्योंकि इसके बाद मुझे यानी नाज को आपको आज के सवाल का जवाब भी तो है बताना।

0: आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो हमेशा से भारत के कृषि विकास और किसानों को जागरूक करने के मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है, जिसका जरिया रहे हैं समय समय पर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अलग अलग कार्यक्रम। बात अगर पॉपुलैरिटी की करें तो उसकी भी कोई सीमा नहीं रही है, फिर चाहे वो किसान वाणी हो या फिर चौपाल, फार्म एंड होम प्रोग्राम हो या फिर रेडियो रूरल फोरम। आकाशवाणी के हर प्रोग्राम को आप सभी लिसनर्स ने खूब सराहा और अपना ढेर सारा प्यार दिया। तो चलिए मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर लेती हूँ आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की। शामिल करती हूँ प्रोग्राम में उन सभी लिसनर्स के नाम जिन्होंने बिना देरी किए आज के सवाल का दिया सही जवाब। तो नवीन भाटिया जी का सबसे पहले आया हर रोज की तरह सही जवाब मोतीनगर नई दिल्ली से। अनु बड़जात्या जी मुंबई से बिल्कुल सही जवाब के साथ इन्होंने मैसेज किया था। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, मनीषा साखर दांडे जबलपुर मध्य प्रदेश से, आशीष गायकर मुंबई से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से, संतोष सक्सेना मुंबई से, हेमंत साखर दांडे जबलपुर मध्य प्रदेश, भाभानी शंकर चेन्नई, वसंती कटारिया ओमकार नवालकर तिलक राज अरोड़ा खुर्जा यूपी से, पंकज मोहोड़ अमरावती से बिल्कुल सही जवाब भेजने वाले लिसनर्स में शामिल हैं। और बात तो ये भी हुई थी कि आप में से एक लिसनर जुड़ेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर, तो भाई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनु बड़जात्या जी का, मुंबई से सीधे जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग नाथ जी, कैसी हैं?
0: मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और आपसे बात करने के बाद तो मेरी तबीयत और भी बढ़िया होने वाली है। फिलहाल आप बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? और जी
1: हाँ बोलिए बोलिए।
0: जी जी बोलिए आप।
1: मैं आई एम सो हैप्पी। और आप प्रोग्राम पूछ रही हैं कृषि जगत का, तो अपने ही चैनल से 2:30 to 3 o'clock को पीएम को प्रोग्राम आता है कृषि से संबंधित। बहुत प्यारा प्रोग्राम है, मैं रेगुलरली सुनती हूँ उसको।
0: ओके और इसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम पसंद करते हैं? क्या रिश्ता कितना जी कितना लंबा और कितना गहरा रिश्ता है आकाशवाणी के साथ, ये अब आपसे जानना चाहिए।
1: मैं वैसे एक्चुअल में जो है ना 2008 से जुड़ी हूँ।
0: ओके
1: इसके पहले जो है मेरा पूरा समय जो है एजुकेशन वगैरह में बीता है, तो मैं इसके बाद में बिल्कुल रेगुलर रही हूँ। और साथ में जो है यहाँ से जो भी गोल्ड के प्रोग्राम आते हैं सब बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं अलॉन्ग विथ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।
0: ओके और बताइए ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? ब्रेकफास्ट कर लिया?
1: जी ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं स्प्राउट्स खाती हूँ।
0: ओके वेरी गुड। तो बताइए अनु जी कैसे दिन शुरू होता है और एफएम गोल्ड आपका साथी किस तरह से बन जाता है, थोड़ा सा आपकी दिनचर्या के बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ माय सन, ही इज वर्किंग। तो मुझे क्या होता है कि उसके लिए सारी तैयारी करनी पड़ती है और उसको मेरे

0: तैयारी से ही बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है. उसके बाद ही मेरी दिनचर्या मतलब रेगुलर जो मैं करना चाहती हूँ वो करती हूँ, पूरा घर का काम खुद करती हूँ, 2 o'clock तक बिल्कुल पैक रहती हूँ. उसके बाद मुझे फुर्सत मिलती है फिर मैं, और जब मैं किचन में काम करती हूँ तो बराबर रेडियो और गोल्ड सुनती रहती हूँ, और अगर जहाँ कहीं आंसर करना होता है तो बीच में रोक देती हूँ, पर कई बार रोटी भी जल जाती है.
1: जी बिल्कुल, ये बात तो मैं जानती हूँ. प्रोग्राम चाहे कोई भी हो, आपका मैसेज और आपका जवाब आना ही आना है, और इस बात के लिए तारीफ तो बनती ही है अनु जी. अच्छा ये
0: आपने कमेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंटली प्रोग्राम करती हो और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लाती हो, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, एक बड़ा वाला थैंक्स.
1: ओ थैंक यू सो मच अनु मैम, और इतनी तारीफ करने के बाद तो अब जोश मेरा और भी ज्यादा बढ़ना ही है, और कोशिश करूंगी कि इसी तरह से प्रोग्राम्स पेश करती रहूं और आप लिसनर्स को सभी को खुश करती रहूं.
0: अब बहुत आज की भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी थी और पहले भी आपने बहुत अच्छी दी थी, और मैंने इसको मेंशन करके आपने फीडबैक मांगा था, मैंने डाल भी दिया था वो फीडबैक.
1: ओके थैंक यू सो मच मैम. अब चूंकि घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो अब यही पूछूंगी कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे.
0: माय डैड फेवरेट सॉन्ग सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है खत में. और लाड मैडम सुनिए, अभी आपने गाना चलाया था इट्स माय फेवरेट सॉन्ग जूही की गली मेरी लाड़ी, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग.
1: ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अनु जी, आपका दिन शुभ हो, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते रहें, और सबसे बड़ी बात इसी तरह से जैसे आप है ना खुश दिल रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और सब में मुस्कुराहट बांटते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सेम टू यू मैम, थैंक यू सो मच. और अब आप सुनेंगे आपका फेवरेट सॉन्ग भी, तो रेडियो बंद नहीं करना है. ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच. तो ये थी अनु जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी, और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने पहले भेजा और फिर इनसे हुई ढेर सारी बातें. और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, तो अब प्ले करूं मैं अनु जी का फेवरेट सॉन्ग. उससे पहले आपको याद दिला दूं कि FM गोल्ड पर एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला थमेगा नहीं. इस गाने के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़े समाचार. उसके बाद ठीक 10:30 बजे यानी 10:30 पर मुझसे फिर मिलना है आपको. प्रोग्राम कौन सा होगा? दिल का मेल बॉक्स, ये तो आप जानते ही हैं. चलिए अभी के लिए ले रही हूं फिर से एक वक्फा यानी एक छोटा सा ब्रेक, और सुनवा रही हूं ये खूबसूरत गाना अनु जी की पसंद से.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस

आमराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 50% reduction in the vehicle fleets of the CM, ministers and other officials and directed that unnecessary vehicles be removed from official convoys. The state government has stressed greater use of PNG, metro services and public transport while encouraging virtual meetings and a weekly no-vehicle day. The Ministry of External Affairs has urged people interested in undertaking the Kailash Mansarovar Yatra to apply before the 19th of this month, as registrations will close soon. Applicants can get further details and register through the official website kmy.gov.in. In Jammu and Kashmir, army foiled an infiltration attempt along the line of control in Poonch district yesterday, killing one terrorist in the Krishna Ghati sector. Our correspondent reports that the alert troops detected suspicious movement nearly 300 meters inside the Indian side of the LOC in the Krishna Ghati sector at around 4 p.m. after receiving specific surveillance inputs. The army said one terrorist has been neutralized. U.S. President Donald Trump has embarked on a highly anticipated three-day visit to China. He will hold a summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing from tomorrow. He is expected to hold talks with Chinese President Xi Jinping on key aspects of bilateral ties, with trade likely to dominate the discussions. The meet will mark Trump's seventh face-to-face interaction with Xi and the first visit by a U.S. president to China since 2017. Ugandan President Yoweri Museveni has been sworn in for a historic seventh term, extending his 40-year tenure following a landslide victory in January elections. One of Africa's longest-serving leaders, Museveni took the oath of office yesterday at an event at Kololo Independence Grounds in Uganda's capital, Kampala, while being cheered by thousands of attendees. The Meteorological Department forecasts more spells of rain and thundershowers across most parts of Jammu and Kashmir, while warning of hailstorms, lightning and gusty winds at isolated places during the next 24 hours. Generally cloudy weather with spells of rain and thundershowers was witnessed across several areas of Kashmir and Jammu divisions. There is a possibility of hailstorms, thunder and gusty winds with speeds of 50 to 60 kilometers per hour at a few places in both divisions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीन दिन के चीन दौरे पर। रूस ने समरथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार सातवीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक से पहले डॉ जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरा वियेरा के साथ भी वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात

0: नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, लोगों की क्षमता मजबूत करना और देशभर में टिकाऊ आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की साझेदारी केवल लंबे समय से ही नहीं बल्कि रणनीतिक तालमेल के लिए भी जानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेइचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है। ये शी जिनफिंग के साथ ट्रंप की 7वीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा से पहले ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इससे आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग और आपसी हितों के समर्थन में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर गंभीर प्रभावों के साथ साथ उनसे निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उधर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कतर ने कल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध एक शस्त्र समूह की बिबुयान द्वीप में घुसपैठ की निंदा की। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में पिछले 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 3.8% हो गया, जबकि मार्च में यह 3.3% था। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी प्रभावित हुए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बाधित हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी जलमार्ग से गुजरता है। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समृद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसकी क्षमता सोवियत दौर की वोयोमोदा मिसाइल प्रणाली के बराबर है। श्री पुतिन ने कहा कि समृद्ध मिसाइल प्रणाली को इस वर्ष के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। रूस की सामरिक मिसाइल सेना के कमांडर सर्गेई कारकाइव ने कहा है कि परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की क्षमता और उसकी तकनीकी मजबूती को साबित किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में शपथ ली। चुनावों में मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं विपक्षी नेता बोबी वाइन को 25% वोट मिले। ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की स्टामर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

0: उनके मंत्रिमंडल में आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहुनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टार्मर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया। उधर श्री स्टार्मर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टार्मर से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है और श्री स्टार्मर का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल में अमरीका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि ईरान ने युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर रेखांकित होते हैं। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देख रहे थे और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को नेपाल के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। नेपाल के विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने सदन में यह समझौता प्रस्तुत किया। ये समझौता इस वर्ष फरवरी में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। श्री गौतम ने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी और आसान बनाना है। पश्चिमी और दक्षिणी श्रीलंका में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने द्वीप के पास बने निम्न दबाव से मौसम बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को पश्चिमी और सबरागुमा प्रांत में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में आज से भारतीय दल सिंगल्स वर्ग के मुकाबले खेलेगा। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग के साथ खेलेंगी। वहीं देविका सिहा का सामना जापान की खिलाड़ी से होगा। तारा शर्मा का मुकाबला जापान की हीना केची और इशारानी बरुआ का मुकाबला इंडोनेशिया की थालिया रोसियाना वरियानवान से होगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 सदस्यीय दल भेजा है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Stage set for BRICS foreign ministers meeting in New Delhi beginning tomorrow. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to exchange views on global and regional issues with his counterparts of BRICS nations today. US President Donald Trump embarks on a 3-day visit to China. Russia successfully tests Sarmat intercontinental ballistic missile. Yoweri Museveni sworn in as Uganda's president for record 7th term. And in badminton, Indian shuttlers to play crucial matches at Thailand Open in Bangkok. And now the news in detail. India will be hosting a 2-day BRICS foreign ministers meeting from tomorrow. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Ahead of the meeting, Dr. Jayashankar will today hold several bilateral meetings in New Delhi. The minister will meet his Chilean counterpart, Francisco Perez McKenna, this morning and will hold bilateral talks. Later in the afternoon, he is also scheduled to hold bilateral talks with the foreign ministers of South Africa, Ronald Lamola, and Brazilian foreign minister.

नमस्कार, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे बातें करने और आपसे सीधे जुड़ने भी ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए। fmgoldair@delhi.gmail.com पर ईमेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप 9868686853 पर। अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, ये तो आपको लिखना ही है, साथ में कुछ शेरो शायरी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल छू

हो जाए तो बस बात बन जाए, और इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि मैं एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जिसे प्रोग्राम के बीच बीच में आप सुनते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये म्यूजिक पीस किस सॉन्ग का हिस्सा है, या फिर आप इसे गाने का प्रिल्यूड भी कह सकते हैं, मतलब गाने का शुरुआती हिस्सा। तो ध्यान से सुनिए आज का वो म्यूजिक पीस। एक बार और सुनिए। तो अगर पहचान लिया है गाना तो मत कीजिए देर और जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल, और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत।

आपकी दोस्ती ने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए इस दिल को हंसना सिखा दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस खुदा के, जिसने आप जैसे दोस्त से हमें मिला दिया। नाज जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु ने ये मैसेज भेजा है और मेरी तरफ से आपको थैंक यू। और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है, लेकिन आज के सवाल का जवाब नहीं भेजा है। और एक खास बात बताऊं, अपनी एक अच्छी आदत के बारे में बताना चाह रही हूं आपको कि मेरी नजर और मेरा ध्यान उसी मैसेज और उसी ईमेल पर टिकता है जिसमें कुछ न कुछ होता है। यानी अच्छी सी शायरी हो, कोई अच्छी सी बात हो, तो वो मैसेज ना मुझे अट्रैक्ट करता है। तो जल्दी से लिख भेजिए कुछ अच्छा सा, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में क्या मजा है ना। और इसी के साथ चलिए रुक कर लेते हैं दूसरे मैसेजेस का भी। शमशुर कमर जी ने मैसेज भेजा है शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान के साथ अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है और आदाब किया है। हमारी ओर से भी आपको आदाब, आपका दिन शुभ हो। लेकिन आज के सवाल का जवाब और साथ में कुछ अच्छा सा लिखकर भेजिए ना, वक्त बहुत कम है। मैसेजेस और ईमेल तो आप बहुत पहले से भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेर व शायरी हो या कोई भी अच्छी सी बात हो, वो लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, तब तक मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। तो कहा यह गया है कि अगर ये कह दो बगैर मेरे जिंदगी नहीं जा रही गुजारी, तो मैं तुम्हारी, या उस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। अगर मैं जीती तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी। अच्छा है ना, ऐसे ही कुछ आपको भी लिखकर भेजना है, ठीक है। और तब तक मैं सुनवाती हूं एक और गाना, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय की ओर से। तो लीजिए, ये रहा आपका गाना।

जी हाँ, बिल्कुल यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपने सुना और दूसरी बार सुना। इसे सुनकर आपको पहचानना है गाना और मुझे बताना है कि ये किस सॉन्ग का हिस्सा है। बोल आपको लिखकर भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868868753 पर। और अब पढ़ते हैं ईमेल्स। लिखा है कि अच्छी बातें जो होती है ना, वो खुशबू की तरह होती हैं। जी हाँ, जितना बांटो उतना ही दिलों में महकती हैं। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है। उषा जटोलिया चारू जटोलिया के साथ दिल्ली नागलोई से, और अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है। अगला मैसेज आया है कहां से, मोहाली से, चंडीगढ़ से आया है, सेक्टर 67 से। जी हाँ, 67। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप की ओर से ये मैसेज आया है। और बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है भाई। तेरी हर बात में एक मिठास शामिल हो, होठों पर हमेशा एक मुस्कुराहट शामिल हो, दुनिया की हर खुशी कदम चूमे तुम्हारे, मेरी हर दुआ में बस यही बात शामिल हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला मैसेज है संदीप मक्कड़ जी का, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी की ओर से ये मैसेज आया है व्हाट्सएप पर। पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से, और इन्होंने भी बड़ी ही अच्छी बात लिखी है। कई बार ट्रैफिक में फंसा हुआ आदमी आगे वाले को पीछे वाला बोलता है, टी टी पी पी, और सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता भाई हमें, क्योंकि गाँव में कोयल की बोलने की जो तीव्र आवाज है वो सुबह उठने के लिए मजबूर ही कर देती है। मतलब है कि मोटिवेशन देती है, इंस्पायर करती है। अगर हम चाहते हैं सभी जगह ऐसा ही हो, तो मरने से पहले जीना होगा, पेड़ लगाने होंगे, और सबसे पहले इंसान बनना होगा। बहुत अच्छी बात कही संदीप जी आपने, मैं आपसे बिल्कुल पूरा पूरा इत्तेफाक रखती हूं। और इसी बात पर अब

सुनाने जा रही हूँ आपकी ही पसंद का गाना। बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, पहले तो ये कहना चाहूंगी। प्रेम पर्वत फिल्म से है ये गाना और लता जी की आवाज है, सुनिए।

लोहे या सीमेंट से नहीं बल्कि फीकस इलास्टिका, जिसे भारतीय रबर ट्री भी कहा जाता है, उसकी जिंदा जड़ों से बनाए जाते हैं। चेरापूंजी की खासी जनजाति इन पेड़ों की एरियर रूट्स यानी हवा में झूल रही जड़ों को बांस या सुपारी के खोखले तनों के जरिए बांध देते हैं और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देते हैं।

कमाल की बात यह है कि इन पुलों की उम्र 500 साल तक की भी हो सकती है, तो अंदाजा लगाइए जरा इनकी मजबूती का। हालांकि इस तरह का एक पुल बनने में एवरेज 10 से 15 साल का समय लग जाता है, पर यकीनन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ठीक जैसे ये अगला सॉन्ग। अच्छा, फिल्म का नाम भी अजूबा ही है। माफ कीजिए, फिल्म का नाम अजूबा नहीं है, फिल्म का नाम तो जीन्स है, गाना, गाने के बोल जो हैं वो हैं अजूबा। फील कीजिए इस अजूबे को और जल्दी से वापस आ जाइए।

अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल सा है, तो ध्यान से सुनिए गीत के बोल। जावेद अख्तर साहब कितनी बखूबी बता रहे हैं कि भाई आसपास कितना कुछ हो रहा है जो अजूबा है।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां मैं यानी नाज आपको लेकर आ पहुंची हूं चेरा पूंजी, जिसके बारे में एक बात तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे भाई, सामान्य ज्ञान के शुरुआती ज्ञान में ही हम ये रट चुके होते हैं कि भारत में सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह कौन सी है। जवाब है चेरा पूंजी। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। ज्यादा बारिश की सबसे बड़ी वजह है चेरापूंजी की जियोग्राफिकल लोकेशन, और साथ में यहाँ के पहाड़ियों की बनावट भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि फनल यानी कीप के आकार की होती है और तीन तरफ से घिरी हुई है। तो जनाब, होता यूं है कि मॉनसून के दौरान जब बे ऑफ बंगाल की तरफ से नमी से भरी हवाएं नॉर्थ की तरफ जब बढ़ती हैं तो सीधा इन पहाड़ियों से टकराती हैं, और जब उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो मजबूर होकर उन्हें

ऊपर की ओर उठना पड़ता है। फिर लागू होता है बारिश का बेसिक रूल, हवा ऊपर उठती है, ठंडी और कंडेंस्ड होती है और नतीजतन यहाँ भारी बारिश होती है। हालांकि फिलहाल चेरापूंजी के नजदीक ही मौसिन राम एक जगह है जहाँ औसतन चेरापूंजी से थोड़ी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी चेरापूंजी की बारिश अपने आप में खास है। और खास है ये अगला गाना भी जिसे आप सुनेंगे और इस गर्मी के मौसम में लेंगे चेरापूंजी की बारिश का एहसास।

0: भाई, यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का अगर जिक्र नहीं करेंगे तो बात अधूरी नहीं रह जाएगी। चेरापूंजी की ये खूबसूरत तस्वीर। हो जाइए गंभीर, क्योंकि मैं लेने जा रही हूँ वो नाम। चेरापूंजी आकर जहाँ जाना तो बनता है बॉस। तो इस हरे भरे स्वर्ग में आप सबसे पहले सैर कीजिए नोह कालाई फॉल्स की, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार है। साथ ही चेरापूंजी के सबसे फेमस स्पॉट्स में इसकी जगह फिक्स है। इसके अलावा वेई सावदोंग फॉल्स भी देखने लायक है। वेई मतलब तालाब और सावदोंग का मतलब होता है स्क्वायर यानी चौकोर। परतदार चट्टानों से गिरता पानी आंखों और मन को सुकून देता है और चेरापूंजी की तस्वीर में अपना अलग रंग भर देता है। भाई, झरनों की बात हो रही है तो डेनथ लेन फॉल्स का जिक्र भी तो बनता है। आपको बता दें कि डेनथ लेन फॉल्स जो है वो चेरापूंजी में बहुत ही मशहूर है और अपने बड़े आकार और तेज आवाज की वजह से ये जाना जाता है। दोस्तों, लगभग 80 मीटर ऊंचे इस झरने की अगर मैं बात करूं तो खूबसूरत व्यूज और पक्षी आप यहां से निहार सकते हैं। और फिर इसके बाद आप रुक कर सकते हैं सेवन सिस्टर फॉल्स का, जो कि लगभग 315 मीटर मतलब बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है। औसत चौड़ाई इस झरने की है 70 मीटर के आसपास और यहां पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। छोड़ देना है हर बहाना और यहां जरूर जरूर है आना।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

अच्छा, खूबसूरत केव्स यानी गुफाओं के मामले में भी चेरापूंजी बहुत अमीर है। घनी हरियाली से घिरा एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा है यहाँ, जो गुफाओं, तालाबों और छोटे छोटे झरनों से भरा हुआ है। मेनली इसके 7 हिस्से हैं और हर हिस्सा अपनी अलग कहानी सुनाता है। चेरापूंजी बस स्टैंड के आसपास जब आप हों तो जरूर जाइएगा। यहाँ फेमस मावसमाई केव्स है इस जगह का नाम, क्योंकि वहां से ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चूना पत्थर की गुफाएं आप यहाँ पर देखेंगे, जिसका एंट्रेंस काफी बड़ा है। और फिर आप जाइए अरवा केव्स, जो लाखों साल पहले एकदम नेचुरल तरीके से बनी थी और अभी तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। बात करेंगे चेरापूंजी के खूबसूरत पार्क्स यानी बगीचों के साथ साथ यहाँ के लजीज स्वाद की भी, बट आफ्टर दिस

Ma'am Naz, for your information, I would like to make addition regarding Cherrapunji. There is a fine view for waterfalling and cloud floating from mountains. I visited to the place. SK Khanna ji ne ye message bheja hai abhi aur ye bhi likha hai ki ma'am, I am in touch with radio with Akashwani for last 60 years. Wow. However, you have very decent voice. Thank you so much, sir. Aur Anu ji ne bhi bhej diya hai message. Likh rahi hai ki whenever I get time, I will go to Cherrapunji and enjoy all whatever you explain in today's show. Thank you so much. Chaliye, वापस आ जाते हैं चेरापूंजी और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसा कि मैंने किया था आपको प्रॉमिस, अब आप चलेंगे मेरे साथ चेरापूंजी के फेमस गार्डन्स, जिसमें सबसे पहले बात चेरापूंजी के इको पार्क की, जो वाकई एक शानदार जगह है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर मौसम के साथ बदलती है, लेकिन बरकरार रहती है वो चीज, जो चीज वो है इस जगह की खूबसूरती। इसके बाद थांग खारंग पार्क भी है, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर फैला ये पार्क चेरापूंजी की सबसे, मतलब सबसे ही शांत जगहों में से एक है। एक ग्रीन हाउस, एक खूबसूरत फाउंटेन।

दो व्यू पॉइंट्स और एक छोटा पुल आप यहाँ पर देखेंगे। पिकनिक के लिए ये जगह बेस्ट है। फिर थोड़ा सुस्ता लीजिए और पहुंच जाइए माव फलांग वन भी जहां पर आपको 450 के करीब पेड़ और पौधों की वराइटीज देखने को मिलेंगी। और इतना सब घूमने के बाद जब आपके पेट में चूहे करने लगे डिस्को, तो भाई जल्दी से इन जगहों से खिसको और पहुंच जाओ चेरापूंजी के किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट या होटल में, जहां आपको बड़े ही प्यार से परोसे जाएंगे खासी जनजाति से इन्फ्लुएंस्ड बेहद लजीज पकवान। चावल यहाँ का स्टेपल फूड है, जिसे कई तरह से पकाकर और सजाकर आपको खिलाया जाएगा। नॉनवेज में जादो, दोहने योंग और तुंग तापी फेमस है। वेज आइटम्स में सोहरा पुलाव, पुथारो और पुखलीन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेरापूंजी का खास ऑरेंज हनी, आपको चखे बिना वापस नहीं आना है। और इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है तस्वीर में आज चेरापूंजी के रंग मेरे यानी नाज के संग आपको जरूर पसंद आए होंगे। फिलहाल जाती हूँ मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी खूबसूरत जगह की तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात। अभी के लिए टाटा, खुदा हाफिज और नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेज मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: வாங்கு.
1: नमस्कार. अगर इस वक्त आपकी जिंदगी एक स्क्रीन होती तो उस पर क्या चल रहा होता? रफ्तार, जिम्मेदारियां या थोड़ी सी थकान? तो चलिए अगले 50 मिनट तक के लिए उस स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करते हैं और कनेक्ट होते हैं खुद से, अपनों से और जिंदगी के जज्बातों से. आप सुन रहे हैं ना, तो घुमाते हैं पहिया कार्यक्रम घर आंगन का और इन लम्हों में आपकी सारथी बनी हूं मैं, श्रुति पुरी. ये समय है दोपहर 12:10 का और अगर 1 बजे तक भी आपको लगे कि आपकी कोई बात, कोई अनुभव या कोई सवाल इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए तो हमें लिखिए fmgoldgia@gmail.com पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज जुड़ती है उस सफर से जो हमें आप तक ला रहा है एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर. इंद्रप्रस्थ पर आप हमसे जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz और DRM 810 KHz पर, और हमारा डिजिटल परिवार हमें सुन रहा है AIR न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर. तो चलिए कार्यक्रम के रथ को आगे बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव संजोते हैं इस गीत के साथ. हम जोली फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को.

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

और श्रोताओ, अब समय है सुविचार का। आज के सुविचार को हो सकता है कि आप भी शायद मेरी तरह पसंद करें। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसान पूरे मन से मेहनत करे और हार न माने तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। कई बार जीवन के रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति अपना रास्ता खुद बना लेता है। सफलता पाने के लिए हौसला, मेहनत और विश्वास बहुत जरूरी है, और जरूरी है अपनों का साथ या उनके साथ होने का एहसास। प्यासा सावन, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, भारत के इतिहास और साहित्य जगत में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। आज पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती है, जो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों, सादगी और राष्ट्र सेवा की याद दिलाती है। आज ही के दिन भारतीय अंग्रेजी साहित्य को नई पहचान देने वाले लेखक आर के नारायण की पुण्यतिथि भी है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। उनका व्यक्तित्व सौम्य, सरल और जनसेवा के प्रति समर्पित था। उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आर के नारायण ने अपनी

आसानी से भारतीय जीवन, छोटे शहरों की संवेदनाओं और आम लोगों के अनुभव को बेहद सहज भाषा में दुनिया के सामने रखा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मालगुड़ी डेज विशेष रूप से लोकप्रिय रही। उन्होंने भारतीय कथाओं को वैश्विक पहचान दिलाई। श्रोताओं, कुछ लोग अपने पद से बड़े होते हैं और कुछ अपनी प्रतिभा से। फखरुद्दीन अली अहमद और आर के नारायण दोनों ही इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इंतकाम फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: ऐसे होते हैं जो वर्षों बाद भी अपनी आत्मीयता और प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। आकाशवाणी और उसके श्रोताओं का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भारतीय जनजीवन की स्मृतियों, संवेदनाओं और संवाद का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गांव से शहर तक, युवा से वरिष्ठ तक और समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुंच है। विशेष रूप से दिव्यांग जन के लिए आकाशवाणी ने हमेशा एक ऐसे साथी की भूमिका निभाई जिसने उन्हें सूचना, मनोरंजन, साहित्य, संगीत और समाज से निरंतर जोड़े रखा। इसकी सहज उपलब्धता, सरलता और विश्वसनीयता ने इसे दिव्यांग जनों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आइए सुनते हैं कि क्यों ये माध्यम आज भी दिव्यांग जन की पहली पसंद बना हुआ है। ये है हमारी दिव्यांग श्रोता अंजलि।
1: मेरा नाम अंजलि है। मेरी दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया को मैं देख नहीं सकती। मेरी दो दुनिया रेडियो है जो मैं हमेशा सुनती आई हूँ और सुनती रहती हूँ। इसके प्रोग्राम मुझे बहुत ही मन लुभावने लगते हैं क्योंकि दृष्टिहीन होने के कारण मुझे इस दुनिया की चकाचौंध दिखाई नहीं देती, लेकिन जो प्रोग्राम आते हैं उन्हें मैं

0: असली ताकत है। दिव्यांगजन के लिए ये माध्यम केवल कार्यक्रम सुनने का साधन नहीं बल्कि आत्मीय संवाद और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी रहा है। आइए बात करते हैं आकाशवाणी से जुड़े कवि दिव्यांग सुनील कुमार कर्दम से।
1: यूं तो आकाशवाणी से बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। 90 के दशक में जब गांव में टीवी नहीं हुआ करते थे तब हम रेडियो पर अपने मन पसंद कार्यक्रम सुना करते थे। समय समय पर आकाशवाणी से सामाजिक संदेशों के अलावा नारी उत्थान, दिव्यांगजनों के कल्याण, देश प्रदेश की जानकारी देने वाले समाचार एवं गीत संगीत के कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं, जिन्हें चौपाल पर बैठकर मैं और मेरे गांव की महिलाएं, युवा, बच्चे व बुजुर्ग ध्यान से सुनकर अपना मनोरंजन व ज्ञान में वृद्धि करते रहे हैं। मैं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बचपन से अब तक अनवरत सुनता आया हूँ। कार्यक्रम सुनते सुनते मेरे मन के एक कोने में एक सपना पलता रहा कि मैं भी कभी न कभी आकाशवाणी पर अपना प्रोग्राम पेश करूं, और वो सपना अब तक कई बार आकाशवाणी से प्रसारित काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ करने एवं सामाजिक सरोकारों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के साथ साकार हुआ है। मैं जब से अब तक अनवरत रूप से आकाशवाणी का अभिन्न हिस्सा बना हुआ हूँ और समय समय पर अपना प्रोग्राम देता आया हूँ, इसके लिए मैं आकाशवाणी का तहे दिल से आभार प्रकट करने के साथ 90 वर्ष पूरे होने पर लख लख बधाइयां प्रेषित करता हूँ।
0: 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी

ही होगा। थोड़ा सा बचपन ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपा वो गुप्त कमरा है जिसे हम बड़े होते होते खुद ही बंद कर देते हैं और फिर जिंदगी भर उसकी चाबी ढूंढते रहते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें खुश होने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, लेकिन बड़े होते होते हम वजह के बिना खुश होना ही भूल जाते हैं। जब हम खेलते हैं, हंसते हैं या बेवजह खुश होते हैं तो हमारा दिमाग वही केमिकल डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करता है जो बचपन में करता था। मतलब बचपन कहीं गया नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर एक्टिव मोड में है, बस हम उसे ऑफ करके बैठे हैं। कब आपने आखिरी बार बारिश में भीगते हुए सिर्फ बारिश को महसूस किया था, या फिर पतंग उड़ाते हुए आसमान को देखा था, या कभी बिना वजह हंसे थे इतना कि आंसू आ जाएं? थोड़ा सा बचपन जिंदा रखने के लिए बड़े बदलाव नहीं चाहिए। कभी अपने नाम के आगे से जी हटाकर सुना है? कभी सड़क किनारे गोलगप्पे खाते हुए ये सोचा है कि लोग देखकर क्या कहेंगे? मत सोचिए ना। कभी बिना वजह पुराने गाने पर झूम उठे हैं आप? बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ छोटे छोटे खेल खेलिए, खुद को उनकी उम्र का बना लीजिए और उनके साथ सहभागी बनकर हंसिए, खेलिए। कभी कभी बच्चों के कॉमिक्स पढ़ लीजिए, किताबों में छुपी मासूम कहानियों को महसूस कीजिए। कभी बच्चों के सीरियल या कार्टून देखकर मुस्कुराइए। उम्र कभी ये तय नहीं करती कि आपको जीना कैसे चाहिए, आपका मन तय करता है कि आप उम्र को कैसे जीना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बचपन जिंदा रखिए हर उम्र में, क्योंकि उम्र तो बस गिनती बढ़ाती है, जिंदगी नहीं। लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म जंगली में।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ब्रेन विद ब्यूटी यानी खूबसूरती से जुड़े प्रोफेशंस के बारे में। आज के दौर में हम केवल डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। कई क्षेत्र उभर कर ऐसे सामने आए हैं जहां खूबसूरती, आकर्षक व्यक्तित्व, स्मार्टनेस, संवाद कौशल और बुद्धिमत्ता सभी की बराबर भूमिका है। विशेष रूप से फिल्म्स, मॉडलिंग, टेलीविजन, फैशन और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों ने युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इन प्रोफेशंस में सफल होने के लिए केवल सुंदर चेहरा काफी नहीं होता। आत्मविश्वास, कैमरा प्रेजेंस, बेहतर संवाद अदायगी और रचनात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अभिनेता, एंकर, न्यूज प्रेजेंटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और इमेज कंसल्टेंट जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। वहीं मॉडलिंग के क्षेत्र में फैशन मॉडल, कमर्शियल मॉडल, रनवे मॉडल और ब्रांड प्रमोशन एक्सपर्ट जैसे करियर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में परिधान डिजाइनर, सौंदर्य विशेषज्ञ, त्वचा देखभाल सलाहकार और केश सज्जाकार या स्वास्थ्य प्रशिक्षक जो होते हैं और पोषण विशेषज्ञ जैसे पेशे भी बहुत आजकल फेमस हो रहे हैं। आज कंटेंट क्रिएटर, ब्यूटी ब्लॉगर, फैशन इन्फ्लुएंसर बनकर भी लोग अपनी पहचान तो बना ही रहे हैं ना। यहाँ व्यक्तित्व के साथ साथ समझदारी, ट्रेंड्स की जानकारी और दर्शकों से जुड़ने की कला बेहद जरूरी है। हालांकि इन क्षेत्रों में आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसीलिए केवल आकर्षक दिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार सीखना, अनुशासन बनाए रखना और अपने कौशल को निखारना बहुत जरूरी है। यदि सही दिशा, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास हो तो फिल्म, मॉडलिंग, टीवी और फैशन जैसे क्षेत्रों में आप नए नए सफलता के आयाम खोल सकते हैं। कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारी पहचान कपड़ों या हमारे काम से पहले हमारे व्यवहार से बनती है? एक कॉरपोरेट मीटिंग हो या किसी दोस्त की पार्टी, मेट्रो का सफर हो या किसी रेस्टोरेंट में बिताया गया समय, हर जगह हमारा पब्लिक बिहेवियर ही हमारी असली छवि पेश करता है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे समाज की एक बड़ी तस्वीर तैयार करती हैं। जब हम मेट्रो या बस में सफर करते हैं तो क्या हम अपनी लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं? क्या हम उतरने वालों को पहला रास्ता देते हैं? क्या हम बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए सीट छोड़ते हैं या क्या हम मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करने से बचते हैं? इसी तरह सड़क पर चलते या गाड़ी चलाते समय क्या हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? क्या हम अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचते हैं या कभी जेब्रा क्रॉसिंग पर

समाज नियमों से नहीं बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार से बनता है। एक मुस्कान के साथ धन्यवाद कहना, किसी को रास्ता देना, सफाई का ध्यान रखना और थोड़ी सी सहनशीलता दिखाना, ये सब छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। तो क्यों ना आज से हम खुद से एक वादा करें कि हम जहां भी जाएं अपने व्यवहार से एक सकारात्मक छाप छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है और यही बदलाव मिलकर एक बेहतर समाज की नींव रखता है। दोस्ताना फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

तो चलते चलते क्यों ना आज आई कुछ मेलों पर भी ध्यान दे लें। हमें एक मेल लिखी है नवीन भाटिया जी ने, कह रहे हैं श्रुति जी नमस्कार, आज काफी दिनों बाद दिखाई दी हैं आप, काफी दिनों बाद सुनाई दे रही हैं, सब ठीक? तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी हूँ, बस हाँ कुछ दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। गौरी शंकर वर्मा जी लिख रहे हैं, श्रुति बेटा राम राम, प्रोग्राम अच्छा है, जानकारियां बहुत अच्छी हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, तो धन्यवाद गौरी शंकर जी। सुदर्शन मुखी जी लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हम सुन रहे हैं, गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, तो हम आपका दिल से आभार अभिव्यक्त करते हैं, हमें ऐसे ही मेल लिखते रहिए। और अब हम अपनी इस महफिल को यहीं समेटते हैं, लेकिन इसके एहसास आपके साथ चलते रहेंगे, तो मुझे यानी श्रुतिपुरी को दीजिए नमस्कार, और फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी कार्यक्रम घर आंगन में।

निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को

0: कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Adlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Program 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Program scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry today for the record fifth term. At a ceremony held at the Lok Nivas, Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered the oath of office and secrecy. Maladi Krishna Rao of the All India NR Congress and A. Namasivayam of the BJP were also sworn in as ministers at the ceremony. Among those present were BJP National President Nitin Nobin, BJP National General Secretary Organization B.L. Santosh, State BJP President V.P. Ramalingam, officials and party leaders. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपकी अपनी आरजे नीति। और कलाकार बेमिसाल में आज बात उस अभिनेता की जिनकी मुस्कान भी लोगों को डराने के लिए काफी होती थी। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश विलेन याद आए? जी हाँ, प्रेम चोपड़ा एक ऐसा नाम जिन्होंने नेगेटिव किरदारों को भी सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों, बॉलीवुड में कई डायलॉग उनके मशहूर हुए, लेकिन एक डायलॉग ऐसा था जिसने इनकी पहचान ही बदल दी। याद है बॉबी फिल्म का वो डायलॉग, प्रेम प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ये लाइन आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि उस दौर में थी। और खास बात यह है कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे डर जाया करते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉबी फिल्म के उसी गीत के साथ जहां से उनका ये डायलॉग हिट हुआ था।

0: परिवार में इनका जन्म हुआ लाहौर में। हालांकि बाद में उनका परिवार शिमला आ गया और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। वो अपने पिता रणबीर लाल और माता जी रूप रानी चोपड़ा के 6 बच्चों में से तीसरे बेटे रहे और प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के निर्माता कैलाश चोपड़ा के भाई भी हैं। प्रेम चोपड़ा अपने कॉलेज के दौरान एक सक्रिय मंच कलाकार रहे और कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया और उन्हें सम्मान मिला, पहचान मिली। हालांकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो बड़े होकर डॉक्टर या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने, लेकिन प्रेम चोपड़ा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने अभिनेता बनने की ठान ली और अपनी आवाज अलग अंदाज से खुद को एक अलग पहचान दिलाई। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से एक और गीत।
1: मेरा पेट्रोल पंप, ये टैंकी खाली है, भर दो ना इसे।
2: ये लो बॉटल और भर दो सबके ग्लास।
3: ये माल चलेगा नंबरी सेठ, रानी छाप है।
4: रानी छाप हो या राजा छाप, यारों को चालू माल नहीं चलता।
3: तो फिर क्या दारू के अड्डे पे झक मारने के लिए आया है?
4: यारों के मुंह मत लग लौंडिया।
3: मैं और तुम्हारे मुंह जा मुंह धो गया।
4: आया तो मैं नहा के था, मगर तू यारों

ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने की शुरुआत की और बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काम करना शुरू भी कर दिया। इसी दौरान उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में किस्मत आजमाने की बात सोची। हालांकि फिल्मों में काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन 1960 में उन्होंने एक फिल्म हम हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को संजीव कुमार और प्रेम चोपड़ा के किरदार की वजह से ही जाना जाता है। 1962 में फिल्म मैं शादी करने चला की शूटिंग के दौरान उन्हें किसी ने विलेन बनने की सलाह दी और बस फिर शुरू हो गया ये कारवां। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने चौधरी करनील सिंह, सपना और पंजाबी फिल्म सहित एक और फिल्म की वो कौन थी। इस फिल्म में अभिनय करने के बाद उन्हें पहचान मिली और इस फिल्म का गीत अभी अभी हमने आपको सुनाया है। तो आइए सुनते हैं एक और गीत प्रेम चोपड़ा की ही फिल्म से, क्रांति।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम बात कर रहे हैं मशहूर विलेन और बेहतरीन एक्टर प्रेम चोपड़ा की। प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी जाती रही है। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया है, चाहे वो दो रास्ते हो, कटी पतंग हो, सौतन हो, और प्रेम चोपड़ा ने हर किरदार में अलग रंग भरा है। विलेन होकर भी दर्शकों का दिल जीता है। और आइए सुनते हैं अगला गीत एक ऐसी ही फिल्म से, कटी पतंग से, जिसमें कि प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना साथ नजर आए थे।

एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीन पर इतने खतरनाक विलेन के रूप में नजर आने वाले प्रेम चोपड़ा असल जिंदगी में बेहद शांत और मजाकिया इंसान माने जाते हैं, और कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि लोग उन्हें देखकर सचमुच घबरा जाया करते थे। और उनके एक बहुत अजीज मित्र रहे फिल्म इंडस्ट्री में मनोज कुमार। अगर आप देखें तो मनोज कुमार की फिल्मों में अक्सर आपको प्रेम चोपड़ा भी नजर आएंगे, और बड़े ही मिलन का सार किस्म के कलाकारों में गिने जाते हैं प्रेम चोपड़ा। तो आइए सुनते हैं प्रेम चोपड़ा और मनोज कुमार की एक फिल्म साथ में बहुत हिट हुई थी उपकार, उसी से ये गीत।

350 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय और हर किरदार में अलग पहचान। प्रेम चोपड़ा ने साबित कर दिया कि फिल्मों का विलन भी उतना ही महत्वपूर्ण किरदार हो सकता है जितना कि हीरो। नई पीढ़ी तो आज भी उनके अभिनय को देखकर सीखती है कि स्क्रीन प्रेजेंस किसे कहते हैं। उन्हें उनके योगदान के लिए, बेहतरीन अभिनय के लिए शिकागो के मेयर द्वारा शिकागो की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया और मानवीय कारणों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत और विदेशों में उन्हें भारतीय समुदाय को समृद्ध करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा भी सम्मानित किया गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया जिसके वो हकदार थे और कई लोकप्रिय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। पंजाबी फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें पंजाबी कला संगम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी बेटी रकिता नंदा ने उनके लिए उनकी जीवनी पर एक किताब लिखी, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, और ये जीवनी उनकी रिलीज हुई 2014 में जारी की गई। तो आज के लिए बस इतना ही और सुनते रहे ऑल इंडिया रेडियो का FM गोल्ड चैनल। चलते चलते उन्हीं की एक फिल्म से एक और गीत।

फिलहाल आरजे नीति को इजाजत दीजिए और वक्त है उर्दू में समाचारों का, तो देश दुनिया की खबरों को से रूबरू होइए। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली टीवीके हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीराला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकीन असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडापड्डी पेलानी सामी की क्यादत वाले 22 एआईएडीएमके अराकीन असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी और पीएमके से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। एसपी वेलुमनी की क्यादत वाले एआईएडीएमके ने हुकूमत की हिमायत की है। मगरबी बंगाल की 18वीं कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब एमएलएज को कोलकाता में हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से एमएलए के तौर पर हलफ लिया, जबकि नंदीग्राम सीट को खाली रखा गया है। इसके बाद 5 दीगर काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। आम जनता उन्नयन पार्टी के एमएलए हिमायू कबीर ने नोएडा सीट के लिए हलफ लिया।

0: जनाब कबीर रेजीनगर सीट से भी जीते हैं। उबूरी स्पीकर तपस रॉय ने उन्हें हलफ दिलाया। आजमुदाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के बानी एन रंगासामी को आज पांचवी म्याद के लिए पुडुचेरी के वजीराला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके साथ बीजेपी के ए नमासीवम और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मलाडी कृष्णा राव को भी एनडीए सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में मुनक़िदा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वजीर आला और दो वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बी एल संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर वीपी रामा लिंगम, डीएमके के कन्वीनर आर सिवा, कानून साज असम्बली साबिक स्पीकर आर सिल्वम और नौ मुंतखब अरकान असम्बली और पार्टी के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। हलफ बरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगास्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगापुर के तर्ज पर पुडुचेरी को तरक्की देने के लिए काम करेगी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरखा कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत सभी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। जराए के मुताबिक वजीर आजम के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार कम करते हुए इकतसादी इस्तेहकाम में ताउन के लिए शहरियों से उनकी अपील के बाद उठाया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वजराए आला ने भी वजीरों, अराकीन असेंबली और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान की सरकारी गाड़ियों के बेड़े में 50% कटौती करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को निकाल लिया जाए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के तीन रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबरा सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि तिजारत को इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सातवीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी और ये साल 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिखकर देख सकते हैं। इस साल सीबीएसई की 12वीं क्लास के इम्तिहान 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज सुबह चिली के खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को पेरेज मैकेन्ना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसत देने के मकसद से दोतरफा ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फोरमों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। ताहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेस समेत इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक का इजाफा कर दिया है। प्लेटिनम पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सरकार ने आज से सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सोने और चांदी के जेवराती अज्जा पर 5% महसूल जबकि प्लेटिनम के अज्जा पर 5.4% महसूल आयद होंगे। इससे पहले वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने शहरियों से अपील की थी कि वह मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर सोना न खरीदें।

0: गुजरात में इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने आज राजस्थान के लिए लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों और अंडमान और निकोबार जजायर के लिए कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई भी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और गुलाय अकीदत नजर किए। फखरुद्दीन अली अहमद ने मुल्क के पांचवें सदर जमहूरिया के तौर पर 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक अपने इंतकाल तक फराइज अंजाम दिए। वो पहले ऐसे सदर जमहूरिया हैं जिनका ओहदे पर फायज रहते हुए इंतकाल हुआ। सीबीआई की टीम नीट इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए जयपुर पहुंच गई है। उसने तकरीबन 2 दर्जन अफराद से पूछताछ की है जिन्हें राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने हिरासत में लिया है। इस दौरान एसओजी ने सीकर और उसके अतराफ के इलाकों में सैकड़ों अफराद से भी पूछताछ की है। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी वजह करने का फैसला किया है ताकि दिफाई अफवाज में उनकी म्याद मुकम्मल करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली टीवी के हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn in as chief minister of Puducherry for a record 5th term. Sentence states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares all India senior secondary class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA-DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA-DMK led by SP Velumani supported the government. We have a report.
2: It was a day of expectation in Tamil Nadu politics. The TVK government had to face a floor test in which the AIADMK party faced a split. The former chief minister and general secretary of the party, Edappadi Palaniswamy, criticized the ruling TVK government for encouraging a split in the party. He also criticized the speaker for allowing the breakaway group of AIADMK leader SP Velumani to speak on the motion of confidence. In his speech, Velumani said that they had to take a stand in support of the government to continue the ideals of MGR and Jayalalitha. In his speech, after winning the motion of confidence, Chief Minister Joseph Vijay assured that his government will definitely protect the welfare of the minorities and work for the welfare of the people. He said that the people will accept

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ

0: लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में

0: भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को

घोषित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हूं आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं
1: बिल्कुल मैं हूं गौतम। और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।
0: और गौतम कहते हैं ना कि पर्यावरण के लिए हम अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, बहुत सारी हम उन्नत किस्मों की बात करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पर्यावरण और फसलों के उत्पादन में, अगर हम उर्वरकों की बात करते हैं, जहां हम कहते हैं कि उर्वरक बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं पर्यावरण के लिए, फसलों के लिए, लेकिन अगर उनका प्रयोग ज्यादा कर दिया जाए उसका क्या प्रभाव रहेगा? कुछ ऐसी समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने भी आती होगी कि कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, पर्यावरण पे क्या फसल असर पड़ने वाला है, जलवायु पे क्या असर पड़ने वाला है। तो कुछ आज ऐसी ही चर्चा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में नई दिल्ली से। और आज जो हमारा विषय रहेगा पर्यावरण और फसलों के उत्पादन पर अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग का प्रभाव। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारा आज का जो विषय है पर्यावरण और फसलों के उत्पादन पर अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग का प्रभाव, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हम जलवायु की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन ही क्या होता है।
2: देखिए जलवायु परिवर्तन ये जो हमारा जो वातावरण है,

0: कि जीवन के हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है।
1: जी हाँ, तो ये तो आपने बताया है कि जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका हमारा खेती पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा होगा।
0: जी,
1: तो वो हम जानना चाहेंगे खेती पे किस तरह।
0: देखिए, खेती पर जैसे मैंने बताया, जलवायु परिवर्तन का मतलब यह है बेमौसमी बरसात, बहुत अधिक गर्मी पड़ना है, ऋतु चक्रों का परिवर्तन हो जाना। जैसे जब अभी क्या होता है कि जैसे ही सर्दी खत्म हुई एकदम गर्मी आ जाती है, यानी कि जो बसंत ऋतु है उसकी अवधि बहुत कम हो गई है, तो जो हमारे ऋतु चक्र है उसमें फेरबदल हो गया है। तीव्र गर्मी पड़ती है, उससे हमारी फसलें कुमला जाती हैं, मुरझा जाती हैं, उनकी उपज कम हो जाती है। ये देखा गया है कि यदि गेहूं के दाना बनने की स्थिति में अगर तापमान औसत से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो प्रति हेक्टेयर लगभग 400 से 500 करोड़ ग्राम तक की कमी आ जाती है। तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव है, ना केवल हमारे गेहूं में, दालों में, तिलहनों में, सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और हमारे फलों में, सब्जियों में। जैसे अगर जैसे अभी जलवायु गर्मी की वजह से जो लीची है वो उनके फल फटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो मतलब कृषि के हर क्षेत्र में, और ना केवल ये फसलों पे बल्कि पशुधन पर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब, जैसे कृषि पर आपने बताया कि कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन से, कृषि पर पड़ रहा है, मृदा पर पड़ रहा है,
0: जी,
2: तो इसको रोकने के लिए जो हमारे संस्थान हैं, जो संबंधित संस्थान हैं, वो क्या कदम उठा रहे हैं?
0: देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका जो एक पूरा सिस्टम है, अगर हम देखें 2014 से 2025 तक लगभग 2996 जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं, यानी कि ऐसी किस्मों का विकास किया गया है जो कि क्लाइमेट चेंज के खतरों से लड़ सकती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूरे जो देश है, हमारे यहां पर लगभग 651 जिलों में, उनमें देखा कि भी कौन से ऐसे जिले हैं जो मौसम से सबसे ज्यादा, मौसम के जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो उसका आकलन करने के बाद हमने देखा कि लगभग 151 जिले, और सबसे टोटल देखा 310 जिले, लेकिन उन 310 में से भी 151 जिले बहुत अधिक प्रभावित हैं। तो उन जिलों को आइडेंटिफाई किया, छांटा कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जलवायु परिवर्तन की जो तीव्रता है, जो मार है, सबसे अधिक है। तो ऐसे जिलों में भारत सरकार ने 448 क्लाइमेट रेजिलियंट विलेजेस, यानी कि ऐसे 448 गांव बनाए हैं जिनको हम क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस कह सकते हैं।

0: क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, यानी कि वो गांव जो अपने आप में एक ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करते हैं कि जिससे कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ा जा सके, तो उनको हम बोलते हैं क्लाइमेट अनुकूल गांव या क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस।
1: बिल्कुल, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है डॉक्टर?
0: देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा, यानी क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जो कि फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखे, अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखे, और जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो कम से कम हो, क्योंकि ग्रीन हाउस जिसको हम हरित गृह गैसें भी बोलते हैं उनकी वजह से ही जलवायु परिवर्तन होता है। तो ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें कि हम ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन जो इमिशंस होता है उसको कम से कम कर सकें और किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो किसान का लाभ है वो बढ़ा सकें और उत्पादकता भी बढ़ा सकें ताकि हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रह सके। तो ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम किया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जाता है, और इसमें क्या है जो लोकल नॉलेज है, जो हमारी परंपरागत ज्ञान है किसानों का, देसी कहते हैं ना देसी ज्ञान, तो उसको जो हमारी नई नई टेक्निकों के साथ समावेशित करके, जैसे ड्रोन टेक्निक है या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, माइक्रो इरीगेशन है, उन सबके साथ समायोजित करके उन परंपरागत तकनीकों से पूरे के पूरे एरिया को हम स्मार्ट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस हम डेवलप कर रहे हैं
0: जी,
2: तो हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस विलेज में जुड़ सकते हैं, किस तरह से अपने अपने गांव को इस तरीके का बना सकते हैं।
0: जी, जैसा मैंने बताया ना कि पूरे भारत में लगभग 448 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बनाए गए हैं, तो जो उनके क्षेत्र में जिले में पास है वो वहां का केवीके की सहायता से या जिले जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उनकी सहायता से वहां का दौरा कर सकते हैं, वहां के वैज्ञानिकों से संवाद स्थापित कर सकते हैं कि हम अपने गांव को, अपनी जमीन को कैसे जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए मजबूत बनाएं, वहां पे जाके देख सकते हैं। एक कहावत है ना, सीइंग इज बिलीविंग, जब आप कोई चीज देखते हैं तो उससे आप ज्यादा प्रेरित होते हैं कि भाई जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रक्षेत्रों का भ्रमण करें किसान भाई।

0: आ रहा है, तो किसान किस तरीके से अपनी फसलों का कार्यक्रम करें, किस तरह से कृषि क्रियाएं अपनाएं ताकि वो शीघ्र आने वाले मानसून का उचित फायदा उठा सकें।
1: तो जैसे कि आपने बताया कि जलवायु साक्षरता हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए, तो इस साक्षरता के लिए वो कहां से ये नॉलेज ले सकते हैं?
0: देखिए, मैंने बताया आज की जो कृषि है वो नॉलेज आधारित कृषि है, ज्ञान आधारित कृषि है। तो उसमें क्या है, हमारे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पूरे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के 100 के करीब संस्थान हैं। तो वहां पे समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं किसानों के लिए निशुल्क, उनके रहने का आने जाने का सब कुछ व्यवस्था की जाती है। तो वहां से जुड़े, और रेडियो के माध्यम से, जैसे अभी हम रेडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से हर माध्यम से उनको बताया जाता है कि भी इस बार बारिश ऐसे होगी, मौसम में मतलब चक्रवात आएगा या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, जो भी मौसम की जानकारी है उनको रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मिल जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से भी मिल जाती है। तो मेरे जलवायु साक्षरता का मतलब यह है कि किसानों को यह पता होना चाहिए कि हमारे मौसम में क्या बदलाव आने वाले हैं, हम कैसे अपनी खेती को उसके साथ समायोजित करें।
2: बिल्कुल, अगर आपको पहले से पता होगा मौसम के बारे में तो आप तैयार हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं उससे लड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं हमें, वो भी हमारे कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर अगर वो हैं और कॉल कर रहे हैं हमें, तो 011 एसटीडी कोड है, वो लगाएं 2342108 जो हमारा नंबर है, उस पर कॉल करें। दूसरा नंबर हमारा है 2342108 हमें कॉल करें। और आप विषय में एक बार पुनः दोहरा देता हूं, विषय है हमारा पर्यावरण और फसलों के उत्पादन पर अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग से प्रभाव। और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में।
1: तो डॉक्टर साहब, अब जैसे हमारा विषय है कि पर्यावरण और फसलों पर उर्वरकों का अनावश्यक उर्वरक तो हम इस्तेमाल करें, अनावश्यक अगर हम कर लेते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है?
0: जी,
1: तो हम इसको हम वन बाय वन लेते हैं, पर्यावरण पे क्या करेंगे, फिर उसको वन बाय वन कैरी करते हैं।
0: ठीक है, जैसा आपने बताया ना, जैसे आपके टाइटल में ही अनावश्यक, देखिए उर्वरक बहुत आवश्यक है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन अनावश्यक अगर हम जरूरत से ज्यादा पड़ेंगे, जैसे अभी जो पूरे विश्व की जो स्थिति है कि जो उर्वरक की जो ये है, तो हमारे पूरे भारत सरकार की योजना है कि किस तरीके से हम पूरे अपना जो किसान है उसके पास ऐसे कौन कौन से संसाधन है जिनको वो खेती में इस्तेमाल करके उर्वरकों की बचत कर सकता है। जैसे अभी हम धान की बात करेंगे, धान की खरीफ में वो होगा, फसल होगी, तो उसमें हम नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजोला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जैव उर्वरक हैं जैसे एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, इनके उपयोग से भी हम 25-30% तक रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। एक हमारा हो गया वर्मी कंपोस्ट, घूरे की खाद, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना है, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है जिसमें पूरा होलिस्टिक सिस्टम होता है, उसमें मिट्टी, पानी, हवा, सबका संरक्षण होता है। तो उर्वरक जैसे बताया आवश्यक है, लेकिन हमको अपने देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करना है। अगर हम उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, न केवल उससे हमारे आर्थिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सिडी लगती है, बल्कि अगर हम जब हम उर्वरक बनाते हैं उससे भी बहुत सारे इमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस होते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा उर्वरक डालते हैं तो यूरिया ज्यादा डालने से एक हरित गृह गैस होती है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम नाइट्रस ऑक्साइड मतलब उर्वरक यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है। वो जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो उसकी जो मौसम को गर्म करने की क्षमता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, अगर हम संतुलित ढंग से उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। और एक दूसरी और परेशानी होती है, अगर हम ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं और उर्वरकों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा जो भूमिगत जल है उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हमारे भूमिगत पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm से ज्यादा हो जाती है, तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें एक बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं ना, बच्चा नीला पड़ गया उस पानी से, तो वो बीमारी भी हो जाती है। तो देखिए, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन हो गया जिससे पूरा जलवायु परिवर्तन होता है, और एक अगर वो पानी में रिसके चला जाता है तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो नवजात बच्चे अगर वो पानी किसी भी माध्यम से उनके अंदर चला जाता है तो बच्चों का शरीर नीला पड़ने लगता है, उनके अंदर ऑक्सीजन के संवहन की क्षमता कम हो जाती है, तो इतने नुकसान होते हैं। ये, लेकिन ना केवल ये चीजें मैंने बताई बल्कि जो हमारे जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो हमारे मित्र कीट हैं अगर हम अविभोगपूर्ण ढंग से उर्वरक का उपयोग करते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। कैच

0: कीटों की संख्या में कमी आती है और भी बहुत सारे मित्र कीट हैं उनकी संख्या में भी कमी आती है। ज्यादा उर्वरकों के प्रयोग से जो हमारी जो फसलें हैं वो भी कमजोर हो जाती है, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, आजकल बच्चों को डिब्बे का दूध देने का ये है, इसी तरह से ये जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं, क्योंकि इसमें पौधे को कुछ कसरत नहीं करनी पड़ती उसको आसानी से वो, लेकिन इससे उसकी जो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उनमें कीटों का आक्रमण अधिक होता है अगर हम ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो।
1: डॉक्टर साहब, जैसे उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: जैसे मैंने बताया मिट्टी में उसका जो पीएच है, जो उसकी जो अम्लता या क्षारता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया जो मित्र कीट हैं, जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं, है ना, जो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो और भी जितने भी, क्योंकि जो मिट्टी है ना वो एक जीवित परितंत्र है, एक पूरा का पूरा जीवित इकोसिस्टम। मिट्टी को आप मृत मत मानिए, अगर मिट्टी मृत हो जाएगी, मिट्टी कब मृत हो सकती है, जब हम बहुत ज्यादा इस फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो अगर संतुलित मात्रा में करेंगे तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हमको ये जो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ हरित, जो हरी खाद है, जो मैंने बताया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला है, बायो फर्टिलाइजर है, उनका भी कृषि में समुचित इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर किसान भाई अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं?
0: जी, मैंने बताया कि जैसे एक तो मैंने बताया कि जब यूरिया है वो जो लीच होके पानी मिट्टी में चला जाता है तो मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रेट एक वो होता है, तो उससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी, मैंने बताया ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। ऐसे ही जो पानी जो जहरी, मतलब एक तरह से एक कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, उसका भी, उस पानी को हम पीते हैं लॉन्ग टर्म में, तो हमारी वो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता ही डालता है, हमारी आंतें खराब हो सकती हैं और बहुत तरह की बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें। जैसे हम बोलते हैं ना, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स अगर हमने जब जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी इस्तेमाल करें। ऐसे ही उर्वरकों की आजकल हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से देखें भाई, हमको 20 किलो यूरिया डालना है, लेकिन रिकमेंडेशन 120 की है, लेकिन आपकी मिट्टी को जो आवश्यकता है वो 20 किलो की है, उसके हिसाब से अगर उसमें भी हो सके तो ऐसा संयोजन करें, उसमें हरी खाद का इस्तेमाल करें, उसमें बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि एक संतुलित उर्वरक और संतुलित पोषक पौधों को मिल पाए।
2: जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है हमें और हमारे श्रोता अगर इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो आप बता सकते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि उर्वरकों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ उनसे क्या नकारात्मक हमें चीजें मिलती हैं। तो आज विषय पर चर्चा हो रही है और आप सीधे फोन कर सकते हैं 23-42-10-81 और 23-42-10-83 पे। और डॉक्टर साहब, अगर हम मानव स्वास्थ्य की बात कर चुके हैं, हम बच्चों के लिए बात कर चुके हैं, वायु प्रदूषण पे भी क्या उर्वरकों का कोई फर्क?
0: जी देखिए, वायु प्रदूषकों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जहां फर्टिलाइजर बनते हैं, जिन जिन फैक्ट्रियों में बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो गैसें तो निकलेंगी, ठीक है, वहां से गैसें निकलती हैं, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। जब हम उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उर्वरक डालते हैं, तो उससे मैंने बताया नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, अमोनिया निकलती है, तो वो पूरे के पूरे वातावरण को दूषित करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, बार बार ये कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हम नेचुरल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें और उर्वरकों का संतुलित, पूरे ICAR में, पूरे हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, एक अभियान चलाया हुआ है कि किस तरह से हम गांव-गांव लोगों के पास जा रहे हैं कि किस तरह से किन किन फसलों में कब कब हम उर्वरकों की बचत कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे अभी धान का पैदावार होगी, स्टार्ट हो जाएगी, बुवाई हो जाएगी, तो वहां पर हम एजोला का, ब्लू ग्रीन एल्गी का वो करके, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम उर्वरकों की, और हरी खाद ढैंचा लगा के, ढैंचा को उसमें मिला दें उसमें, तो हम लगभग 30 से 40 से 50 किलोग्राम तक यूरिया की बचत कर सकते हैं, परसेंट ये कितनी बड़ी सेवा है। ना केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ना केवल प्रदूषण की बचत होगी, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सबसे अहम बात जो है, जो किसान का जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी। जब उत्पादन लागत कम हो जाएगी तो उसका सीधा मुनाफा होगा और उसकी आय में वृद्धि होगी, और एक तरह से जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, तो अगर हम उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करेंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे, जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पायरलम, ओके, माइकोराइजा, तो उससे क्या है किसान की लागत कम होगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी और जो प्रोड्यूस पैदा होगा, जो हमारे जो अनाज सब्जी फल वो जो पैदा होंगे उनकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनका ना केवल स्थानीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी कीमत मिलेगी।
2: और यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात करें। हाँ जी, कहाँ से बात करें, नाम बताइएगा।
3: सुन रहे हो आप?
2: हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम।
3: अच्छा भाई, एक तो ये ध्यान करो, आप जो फोन नंबर बताओ ना आप।
2: हाँ जी,
3: फोन नंबर बताओ ना आप, वो आराम से बताया करो थोड़ा। हाँ
2: जी, ठीक है ठीक है, बताइए।
3: सारे कई आदमी शिकायत है ये।
2: अच्छा ठीक है, आप सवाल कीजिए, सवाल कीजिए,
3: आराम से बता रहे। और एक इस पर ज्यादा जोर दो, इसको हरे खाद पर।
2: हरी खाद पे जी?
3: हाँ, हरी का खाद है ये, हरी का, हरा खाद है। इस पर ज्यादा जोर
2: जी। थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय किसान भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी मतलब हमको दी है, मैं तो ये कहूंगा, और हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, और आपका जो आग्रह है कि जो फोन नंबर है उसको धीरे से बताएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आगे से धीमी गति से बताया जाएगा। और आपका जो एक आग्रह है कि हरी खाद पे जी, बहुत हमने अपनी बातचीत के दौरान भी बताया कि हरी खाद से हम प्रति हेक्टेयर यानी कि एक हेक्टेयर जमीन में लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे किसानों की आय बढ़ेगी, उससे मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ेगा। और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, और जो हरी खाद के जो बीज हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो आईसीआर के जो बहुत सारे संस्थान हैं, वहां से आप ले सकते हैं, उनको अपने खेतों में लगाइए, ढेंचा है, सनई है, बहुत सारी हरी खादों की किस्में हैं, और आप उचित मुनाफा कमाइए और पर्यावरण की रक्षा भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय।
2: तो बहुत सही कहा कि अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो भी आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, आपका जो इको हो रहा है, आप ये आवाज बंद कर दीजिएगा पीछे का, तो आपको आवाज आ पाएगी। नहीं आ रही है शायद, तो बात हो रही है। और आप हमें फोन कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि आसानी से धीरे धीरे नंबर बता देते हैं, 23-42-10-81 और 23-42-10-83 ये फोन लाइन्स हैं इस वक्त जो चालू हैं, और यहाँ पर आप फोन कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर साहब से आज के विषय पर चर्चा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अगर दिल्ली के बाहर से आप कर रहे हैं तो सुनिए कि आप एसटीडी कोड लगाना ना भूलें। एक और कॉल जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
2: हेलो, हेलो,
3: हाँ जी, मैं हाँ जी, सतवीर सिंह बोल रहा हूँ जी।
2: हाँ जी सतवीर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल कीजिए।
3: सवाल ये जी कि हरी खाद के लिए बोल रहे हैं आप, ये सनी का बीज कहाँ से मिलेगा?
0: जी हाँ, आप फरीदाबाद में कौन से गांव से बोल रहे हैं सतवीर जी?
3: छायसा गांव है जी।
0: छायसा?
3: हाँ, बल्लभगढ़ खंड में।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके आसपास एक कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है, और जो जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई केवीके है, ठीक है, आप एनएससी से भी ले सकते हैं, तो वहां से प्रमाणित जगह से आप बीज लीजिए और आप अपना खेत में लगा सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब जी?
0: जी सर,
3: ये एनएससी दिल्ली से मिल जाएगा सनी का बीज?
0: जी
3: ठीक है जी, धन्यवाद
2: सतवीर,
0: शुक्रिया सतवीर जी।
2: और हमारे साथ एक और फोन लाइन पे हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो,
4: हेलो,
2: हाँ जी, हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, अपना सवाल कीजिए।
4: मैं जगदीश सिंह बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
2: हाँ जी बताइए, सवाल कीजिए।
4: मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है और इधर अमेरिका और ईरान का, क्या इस पर जलवायु पर कितना प्रभाव पड़ेगा?
0: चलिए, ये युद्ध हमारे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जब ये मिसाइलें बम चलते हैं तो प्रदूषण तो होता ही है, और इन चीजों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2: जी हाँ बिल्कुल, और जो कहते हैं ना कि युद्ध तो हमेशा नुकसान ही करके जाते हैं, तो इसीलिए किसी भी समस्या को अगर हम बातचीत के जरिए प्यार से सुलझा लें तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और जैसे कि आज हमारा विषय है पर्यावरण और फसलों के उत्पादन पर अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग का प्रभाव, तो डॉक्टर साहब हम यहाँ जानना चाहेंगे कि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं
0: जी,
2: तो उसमें क्या रोल रहता है इसका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इस उर्वरकों के प्रयोग का प्रभाव?
0: देखिए जो आपका प्रश्न है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें उर्वरकों का क्या प्रभाव रहता है, क्या महत्व रहता है। देखिए जो सस्टेनेबल वर्ड है उसको अगर हम हिंदी में बोले तो बोलते हैं सतत कृषि, यानी कि एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है और जो

0: वो हमारे संसाधन हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी मुहैया रहते हैं। यानी ऐसा है अगर हमारे पास कोई 1 हेक्टेयर जमीन है तो ये नहीं है कि हम अपनी पीढ़ी तक ही उसको खा पी के खत्म कर दें। हमको वो जो 1 हेक्टेयर जमीन है अपने संसाधनों का इस तरह से संरक्षण करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके।
1: जी और यहाँ पर मैचा श्रोता आ गए हैं। हेलो
2: हेलो राम राम
1: जी। राम राम जी अपना नाम बताएंगे।
2: राम फल बोला खीसना
1: जी। सवाल कीजिए।
2: मेरा सवाल ये जो कितना पड़ेगा कितने।
0: आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है,
1: सवाल दोहराएं।
2: मेरा सवाल ये है ढांचे का बीज जो है एक किले में कितना पड़ेगा।
0: देखिए किले का तो मैं अलग अलग वो होता है, मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 हेक्टेयर में ठीक है तो 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है। लगभग 50 से 60 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा और उसके हिसाब से आप अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से उसको ग्रहण कर सकते हैं और उसमें और कोई संस्तुति वो देते हैं तो आप, क्योंकि वो जो आपके जो आप बागपत से बोल रहे हैं ना
2: जी।
0: हाँ तो वहां से एक बार बागपत में कृषि विज्ञान केंद्र है
2: जी।
0: हाँ तो उनसे
2: जी
0: जी जी उनसे आप बात करिए कि मैं ऐसे ऐसे मुझे इतने एरिया में लगाना है तो आप लगाइए जरूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो मुझे लगता है कि बहुत सारे श्रोता हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम के साथ जुड़ पा रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ से मिल रहा है। अब डॉक्टर साहब एक जल्दी से ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल अंतराल
0: जी।

0: जी हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन हमारे श्रोताओं के फोन जो आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल स्टूडियो में ठंडक बनाए हुए हैं। और अभी अभी एक सवाल आया है कि डॉक्टर साहब जल्दी से जवाब चाहेंगे इसका, कि गोबर की खाद और हरी खाद में क्या फर्क होता है।
1: जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गोबर की खाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वो गाय के गोबर से जो हमारे घरों में खेतों में जो कूड़ा करकट होता है उससे हम बना लेते हैं, उसको घूरे की खाद भी हम बोल सकते हैं। और हरी खाद जैसे मैंने बताया ढेंचा सना है सन, उससे हम हरी खाद बनाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो गोबर की खाद में, कि हमेशा सड़ी गली गोबर की खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर कच्ची गोबर की खाद आपने अपने खेत में इस्तेमाल कर दिया तो उससे फायदे कीजिए नुकसान हो जाएगा, खेत में दीमक आ जाएगी और जो मिट्टी में पहले से पोषक पदार्थ है वो स्थिर हो जाएंगे, वो फसलों को नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमेशा गोबर की सड़ी गली खाद ही इस्तेमाल करें।
0: जी हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी भी फोन आ रहे हैं, लेकिन अब हम समय के अभाव के कारण ये फोन कॉल्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जरूर कार्यक्रम सुनते रहिए और नेक्स्ट कार्यक्रम में जरूर फोन करके अपने सवाल का जवाब ले लीजिएगा। लेकिन कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइएगा kkbongold@gmail.com पर। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे सभी श्रोता, मुझे लगता है कि सभी को जो अच्छी जानकारी चाह रहे थे वो मिल गई होगी। इसी के साथ कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। मैं सीमा सती,
2: बिल्कुल मैं हूं गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत हासिल कर विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी पलानीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन ने टी श्रीरंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद के उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई के अनुसार 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% और छात्रों

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3:11 हुए हैं। आपके साथ कार्यक्रम मनभावन लेकर मैं हूं नईम अख्तर। जी हां, कार्यक्रम मनभावन, वो कार्यक्रम जिसमें आपके मन को भाने वाले गीत हम आप ही की फरमाइश पर आप ही तक वापस पहुंचाते हैं। मैं हूं नईम अख्तर और आपके लिए हम वो नंबर ऑन एयर कर देते हैं जिस नंबर पर आप अपनी पसंद हम तक पहुंचाएंगे। जी, फोन नंबर, आप फोन नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर आप हमारा लिख लीजिए 9868687539868687535। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी पसंद का गीत और हम तक पहुंचाइए और हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि कार्यक्रम शुरू होते ही हमारे पास ये जो पहला मैसेज आया है वो है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का, उनकी पसंद का गीत फिल्म कांच और हीरा से ये रहा।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है कार्यक्रम मन भावन। आप सुन रहे हैं मन भावन में अपनी पसंद के गीत और आपकी पसंद के गीत हम तक पहुंच रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868686753 यानी 9868686753 और इस नंबर पर हमारे पास दो मैसेजेस और हैं जो अभी हम शामिल कर रहे हैं। मतलब मैसेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो दो मैसेजेस अभी हम शामिल कर रहे हैं उनमें से एक मैसेज है स्वरूप आनंद सरजाल का जोड़ा पीपल अंबिकापुर से और इन्होंने दादा फिल्म का एक गीत सुनना चाहा है। अभी सुनवाते हैं दोस्त आपके पसंद का गीत हम आपको। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिख के भेजा है मुबारक नाम हमारा है। नहीं अच्छी बात है कि आपका नाम मुबारक है, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन ये भी तो बता देते मुबारक कि आप रहते कहाँ हैं। अपनी जगह का नाम भी लिख के भेजिए ना, जरा अच्छा सा लगेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपने अगर नहीं लिख के भेजा कि कहाँ से आपने ये मैसेज भेजा है तो भी आपकी पसंद हम तक पहुंच गई है। आपने जो गीत सुनवाने की फरमाइश भेजी है नाम फिल्म का गीत, ये गीत हम सुनवाएंगे आपको दादा फिल्म के इस गीत के तुरंत बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और मन भावन में आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके व्हाट्सएप पर भेजी हुई फरमाइश के माध्यम से। व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेजने के लिए हम आपको अपना फोन नंबर बता देते हैं। फोन नंबर है हमारा 9868868653 9868868683। जी हाँ, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है आपको जो हमने बताया। और हमारे पास अगली दो फरमाइशें जो आई हैं उनमें से एक फरमाइश भेजी है शेरवानी स्कूलगंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। इन्होंने दोस्ती फिल्म का, 1964 की फिल्म दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत और मधुर नगमा सुनना चाहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्त। और दूसरा गीत जो सुनना चाहा है वो है उत्तम नगर होली चौक से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने हिमालय की गोद में फिल्म का जो गीत सुनना चाहा है वो हम आपको सुनवाएंगे दोस्ती फिल्म के गीत के तुरंत बाद।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:33 कार्यक्रम मन भावन में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और हमारे साथ हैं आपकी पसंद के व्हाट्सएप के हुए कुछ फरमाइशी नगमे जिन्हें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आप तक भी एक चीज पहुंचा देते हैं, आपकी पसंद के गीत आप हम तक पहुंचा रहे हैं और आप तक हम उस नंबर को पहुंचा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर को, जिस नंबर पर आप अपनी पसंद के गीत हमको लिखकर भेज सकते हैं। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868686753 यानी 9868686753। और आपकी पसंद जो हम तक पहुंची है उनमें से एक ही गीत को इत्तफाक से हमारे दो श्रोताओं ने पसंद किया है। एक हमारे श्रोता हैं अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट, निखिल कांगड़ा, बबीता बोट, सीताराम कांगड़ा, इन सभी ने एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे पास एक पसंद भेजी है। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है भगत सिंह जी की। इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से भेज रहे हैं ये, लेकिन इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। तो चलिए आप दोनों की पसंद की गीत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म पतंग से ये गीत है। और एक और श्रोता हमारे पास अपनी फरमाइश भेज चुके हैं, राजकुमार द्वारका मटियाला से। इन सभी ने इन्होंने हमें फिल्म मासूम फिल्म का भूपेंद्र की आवाज में, जिसमें सुरेश वाडकर ने भी उनका साथ निभाया है, एक गीत सुनने की फरमाइश भेजी है। तो चलिए पहले पतंग फिल्म का गीत सुनते हैं, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी और उसके फौरन बाद हुजूर इस कदर भी।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:42:49 कार्यक्रम मन भावन में हम आखिरी बार नंबर बोल रहे हैं उस व्हाट्सएप का जो जिस पर आप हमें भेजेंगे अपनी पसंद के गीत। जी हाँ, हमने आपको ये कहा है कि मन भावन कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गीत हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब उनके बोल लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी पसंद आप तक पहुंचाएं। तो जनाब नंबर नोट कर दीजिए 9868687539868886875। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेजिए, शायद आखिरी गीत होंगे जो हम तक पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो दो गीत और

0: हुए हैं वो हमें तीन हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, इन सभी ने जो और समस्त वायाल परिवार, अच्छा मतलब इसके बाद ही अभी कुछ और सदस्य बचे हुए होंगे तो इसके बाद इन्होंने लिखा है समस्त राजे जाधव और देशमुख और वायाल परिवार। चलिए आप सभी के पसंद का ये गीत जो आपने लिख के भेजा है अभी सुनवाते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि जो गीत आपने लिख के भेजा है बहुत ही मनचला सा, बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही चुलबुला सा गीत है, अच्छा लगता है सुनने में, तो एक बार हम भी आपके साथ सुनेंगे और हम भी इसको एंजॉय करेंगे। और एक और गीत हमारे पास लिख करके भेजा है हमारे दो श्रोताओं ने, लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू ने, और इसी गीत को संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया, जालंधर से भी सुनना चाहते हैं। फिल्म जो हमारे पास गीत है वो है सिलसिला फिल्म का गीत पहली बार देखा ऐसा जलवा। तो दोनों ही गीत बड़े चुलबुले से गीत हैं, छेड़छाड़ से भरे हुए, पर बहुत ही डिसेंट अंदाज में इन गीतों को हम तक पहुंचाया गया है। तो चलिए एक एक करके दोनों गीत सुनते हैं।
1: लूटा है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे, वो तो लौटा है हंसा लेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में

आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर सुनते हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता की पसंद का ये गीत कार्यक्रम मनभावन में।

गाना पसंद का मुश्किल से सुनते हैं, सुन लिया सुन लिया सुन लिया। और बाकी हमारे वो सभी श्रोता जो अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते थे पर नहीं सुन पाए, उनके लिए भी यही गीत है कि मुश्किल से सुनते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो कोई बात नहीं, आप हमारे दूसरे श्रोताओं के पसंद के गीत सुनते रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM गोल्ड। आपके साथ मैं थी कार्यक्रम मनभावन में नईम अख्तर। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ, 10 मिनट बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनने के तुरंत बाद आपसे फिर मिलूंगी कुछ और गीत और कुछ और कार्यक्रम लेकर। सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके बाद 557 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कपास के लिए और 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल के लिए की गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी के पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नसिमयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हाल की यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हेरा

हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में जून अनुबंध के तहत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग शी ट्योंग को हराया, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आयुष शेट्टी, थारून मन्नेपल्ली, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

4:10:55 100.1 MHz पर यह है आकाशवाणी FM गोल्ड। आप और हम अभी जुड़े हुए हैं कुछ फिल्मी गीत सुनने के लिए। मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर और आपके लिए है ये पहला नगमा इस घंटे का।

नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं। आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था। उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले, स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था। जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइश

0: प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिसपे सुना करता था। समय बीता मुझे याद है, ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: फिल्म म्यूजिक से अभी नईम अख्तर को दीजिए इजाजत और सुनिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज कार्यक्रम।
2: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with National Institute of Labour Economics Research and Development has invited applications for the post of Joint Director, Deputy Director and Assistant Director on contract and deputation basis at its Narela campus in Delhi. The appointments will be initially for 3 years and may be extended further based on performance and institutional requirements. Candidates with qualifications in economics, development studies, statistics, engineering, business management, public policy and other social science disciplines may apply. Interested candidates can check detailed eligibility criteria and application procedures on the official website, that is at www.nilerd.ac.in. The last date for submission of applications is 45 days from the date of publication in the Employment News. National Informatics Center, NIC, under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, has invited online applications for direct recruitment to posts of Scientist C and Scientist D. There are total number of 153 vacancies which have been announced, including 141 posts for Scientist C in pay level 11 and 12 posts for Scientist D in pay level 12. Candidates with qualifications such as BE, BTech, ME, MTech, MSc, MCA, MPhil and related degrees in computer science, electronics, IT, mathematics, GIS, cyber law and allied fields are eligible to apply. Relevant experience of 4 years for Scientist C and 8 years for Scientist D is required in research, development, academic institutions or science and technology organizations. For details, kindly refer to the website at www.recruitment.nic.in. Office of Central Registrar of Corporative Societies under the Ministry of Corporation has invited applications to fill various technical posts on deputation and short-term contract basis. The vacancies include Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar and Senior Cooperative Officers posts. Interested candidates can check detailed eligibility conditions and application procedures on the official website. That is at www.cooperation.gov.

0: www.crcs.in or you could go on to www.crcs.gov.in. The last date for receipt of applications is 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The Department of Health Research, DHR, under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications from eligible officers for a scientist post on deputation, including short-term contract basis, in its Health Technology Assessment Attached Office. Interested candidates can apply within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.dhr.gov.in. The Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, under the Ministry of Home Affairs, is inviting applications for 6 posts of Senior Translator on deputation or absorption basis in New Delhi and other Data Collection Officers, DCOs. The posts are in Level 7 as per the 7 CPC. Eligible candidates must apply through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, and the official website is www.censusindia.gov.in.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक इंजीनियरिंग का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि संबंधी विवरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.shipmin.gov.in पर करियर लिंक के अंतर्गत मंत्रालय में रिक्ति लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अधिकारी अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं। अवर सचिव प्रशासन, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 447, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। केवल 1 पद पर रिक्ति उपलब्ध है और पद 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय, APWD, निर्माण विभाग, श्री विजयपुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा APWD की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका पता है andamannicobar.gov.in तथा apwd.and.nic.in। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समूह महाप्रबंधक उत्पादन, समूह महाप्रबंधक परियोजना, महाप्रबंधक गुणवत्ता, महाप्रबंधक अनुसंधान एवं विकास तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.midhani-india.in। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लोक अभियोजक 1 पद नई दिल्ली के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 1 और निजी सहायक कुल 4 पद, जिनमें से 1 पद भोपाल तथा 1 पद कोलकाता के लिए रहेगा, जबकि 2 पद नई दिल्ली के लिए रहेंगे। उच्च श्रेणी लिपिक 1 पद भोपाल मध्य प्रदेश के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 3 2 पद, जिनमें से 1 पद नई दिल्ली के लिए और 1 पद मुंबई के लिए है। उपारक्षी वन रक्षक एक पद चेन्नई और चेन्नई क्षेत्र, ड्राइवर एक पद कोलकाता तथा एक पद चेन्नई के लिए। संपूर्ण विज्ञप्ति और विवरण मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका पता है moef.gov.in। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक प्रशासन वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ब्यूरो मुख्यालय से ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है adadm@wccb.gov.in। फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 011-208-6273 तथा मोबाइल नंबर है 9415911667। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। हेलो सायरा।
2: Hello Jaya, how are you?
1: I'm fine.
2: And hope all listeners are also doing fine. Or welcome to our listeners. Aadab, namaskar. A very good evening because we have come with another fresh episode of Parikrama, where of course we have named the show because we do Parikrama of the country. Dekhenge hum log ke jo correspondents hai in different parts of the country, what interesting stories they have to share with us. And of course, Jaya has already told you what to look forward to, among other things. So let's start with the headlines first, Jaya.
1: जी, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ली।
2: सेंटर एंड स्टेट्स इंटेंसिफाई फ्यूल सेविंग मेजर्स फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज अपील अमिड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट।
1: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए।
2: Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%.
1: मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्द ही आने की संभावना।
2: And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. एंड जया, हस्बी दस्तूर हम लोग शुरुआत करते हैं परिक्रमा की अपने स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया से, इन विच वी टेक अ लुक एट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। वेल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द कमेंसमेंट ऑफ द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और वीबीजी रामजी एक्ट 2025 अक्रॉस ऑल रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of July दिस ईयर। With coming into force of the VVG Ramji Act, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or MGNREGA stands repealed from the same date. This marks a historic transition in India's rural development framework and ushers in a new era of integrated, future-ready and productivity-oriented rural transformation aligned with the national vision of Viksit Bharat at 2047. The commencement of the Act marks a historic transition from the earlier framework of Mahatma Gandhi NREGA towards a modern rural development architecture that combines livelihood security, durable asset creation, technology-enabled governance, convergence-driven planning and climate resilience.
1: बिल्कुल सायरा, और ये अधिनियम हर वित्तीय वर्ष में हर उस ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी देता है जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी खास हुनर वाले शारीरिक काम को करने के लिए अपनी मर्जी से आगे

0: आते हैं। इस बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण परिवारों की आमदनी, आजीविका की सुरक्षा, गांव के स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और टिकाऊ ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसका मकसद एक ऐसा टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण आजीविका, स्थानीय आर्थिक विकास और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करे। समय के साथ बढ़े हुए सामाजिक सुरक्षा कवच, बेहतर भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, ज्यादा वित्तीय समावेशन और आजीविका के साधनों में विविधता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है और इन बदलावों को देखते हुए ही मौजूदा ग्रामीण रोजगार ढांचे की आज की जरूरतों और उम्मीदों के साथ साथ विकसित भारत एट 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ढालने के लिए उसमें जरूरी सुधार करने की जरूरत है।
1: That's right, Jaya. And in furtherance of this objective, it is proposed to strengthen the livelihood guarantee framework by enhancing the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The enhanced guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households through expanded employment opportunities. Accordingly, it has been enacted, it has enacted a new legislation titled the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or VBG Ramji Act to establish a future-ready rural development framework that integrates livelihood security with productivity and asset creation, livelihood guarantee and workers security as well.
0: बिल्कुल। और अगर हम इस अधिनियम की विशेषता की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें विशेष बात यह है कि इसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और इस बढ़ी हुई गारंटी का उद्देश्य यही है कि आजीविका सुरक्षा को मजबूत किया जाए, आय में स्थिरता लाया जाए, ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा दिया जाए और कमजोर परिवारों को अधिक आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए। इस रूपरेखा को रोजगार भी सम्मान भी यानी कि सम्मान के साथ रोजगार के सिद्धांत पर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य केवल मजदूरी वाला रोजगार देना ही नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण श्रमिक ऐसे टिकाऊ और उत्पादक सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले जो गांव के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती हो।
1: And Jaya, if I may ask you a question, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मजदूर या किसान के बारे में आप सोचिए तो naturally किसका ख्याल आता है, किसी मेल का?
0: Obviously.
1: But अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचें विद अगर इंस्टेंटली ना रिस्पॉन्ड करें तो आप देखेंगी या ऑब्जर्व करेंगी दैट कितनी सारे किसान और मजदूर एक्चुअली महिलाएं होती हैं बाहर भी। इफ यू सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन फॉर एग्जाम्पल एंड इफ यू जस्ट पॉज योर कार और व्हीकल एंड जस्ट ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन साइट यू वुड सी दैट समटाइम्स ऑलमोस्ट हाफ एंड समटाइम्स इवन मोर वर्क फोर्स कंप्राइजेस ऑफ फीमेल वर्कर्स। सो इन ऑर्डर To promote the participation of women workers, a key provision has been incorporated in the Act. At work sites where 5 or more children below the age of 5 are present, one woman worker will be appointed to take care of the children and will be paid at the prescribed wage rate. So this is very important because obviously at construction sites, for example, you cannot have creches, right? But it's a very novel idea that among those female workers, one woman would be taking care of the children and she would be counted as, she would be given the daily wage according to that, right? So this is a very, very good initiative, I would say, which would enhance women participation. In the workforce, isn't it?
0: बिल्कुल बिल्कुल सायरा। और हमने कई बार देखा भी है कि किस तरह से महिलाएं अपने कंधों पे, पीठ पे बच्चों को लेकर काम कर रही होती हैं, ईंटें ढो रही होती है। तो ये चीजें देख करके ही सरकार ने फिर इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार भी प्रदान किया जाए और यदि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है तो उनके रहने, उपचार, दवाओं और मजदूरी दर के आधे के बराबर दैनिक भत्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह सहायता देय होगी और इस प्रकार ये अधिनियम कार्यस्थल पर सुरक्षा, संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है।
1: सो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम महात्मा गांधी नरेगा टू द न्यू फ्रेमवर्क हैज ऑल्सो बीन डिजाइंड इन अ सीमलेस एंड वर्कर फ्रेंडली मैनर। एग्जिस्टिंग ई केवाईसी वेरिफाइड जॉब कार्ड्स शैल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड अंटिल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स आर इशू

0: बिल्कुल। और इस फ्रेमवर्क के तहत ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मजदूरी का जो भुगतान है वो हर हफ्ते या किसी भी हाल में मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। और जिन मामलों में मजदूरी तय समय सीमा से ज्यादा देर से होती है तो उस समय मजदूर इस एक्ट के प्रावधानों के तहत मुआवजा भी ले सकते हैं। एक्ट में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां मजदूरी चाहने वाले लोग मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के बाद हर दिन की देरी के लिए बकाया मजदूरी का 0.05% की दर से मुआवजा पाने के हकदार होंगे। और इन प्रावधानों का मकसद मजदूरी वितरण में जवाबदेही को मजबूत करना और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
1: That's right. Well, under the Viksit Bharat Jiranji Act 2025, the scope of work has been significantly expanded and aligned with the goal of Viksit Bharat at 2047. Work is structured into 4 major thematic areas: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and works to mitigate extreme weather events. This enables a more outcome-oriented and cohesive approach in implementation.
0: जी, और कामों को जो विषय आधारित प्राथमिकता देने की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यह सुनिश्चित हो सके कि रोजगार का हर दिन टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाने में योगदान दे। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी कि सभी ग्रामीणों को इस तरह का काम दिया जाएगा जिससे पूरे गांव का विकास सुनिश्चित हो सके। तो जल सुरक्षा से जुड़े कामों में सिंचाई सहायता, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, जल संभर विकास, जल निकायों द्वारा जीर्णोद्धार, वकीकरण और वर्षा जल संचय संरचनाएं शामिल होंगी। और इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक जल सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा। मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के कामों में ग्रामीण सड़कें, सार्वजनिक भवन, स्कूली बुनियादी ढांचा, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वच्छता प्रणालियां, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा, आवास से संबंधित काम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले काम शामिल होंगे। इससे बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी।
1: That's right, Jaya. And to wrap up, let's give a gist or that livelihood-related infrastructure shall include rural markets, storage infrastructure, food processing units, cold storage facilities, livestock infrastructure, fisheries infrastructure, compost units and skill development centers. These interventions are expected to strengthen local livelihoods, diversify rural income and support agro-based economic activities. Through this thematic approach, rural employment is directly linked with productive asset creation, local economic development and resilience building. These works will ensure employment generation, value addition, expansion of agro-based industries and improved service availability, thereby bringing stability to the rural economy and diversifying income sources.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है।
1: Well, we are starting our journey of Parikrama from the state of Goa. Well, on the occasion of International Nurses Day, Goa's Raksha Parvatkar has been honored with the National Florence Nightingale Award 2026 by President Draupadi Murmu for her outstanding contribution to the nursing profession. More details from our correspondent.
2: The award was presented during a ceremony at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Raksha Parvatkar, who serves as ward in charge and ward sister at Goa Medical College and Hospital, has completed 39 years of dedicated service in nursing. The National Florence Nightingale Award includes a certificate, medal and a cash prize of 1 lakh rupees. It recognizes exceptional service and commitment in healthcare. Speaking at the event, President Draupadi Murmu praised nurses and healthcare workers for their compassion, dedication and service to nation, especially during challenging situations. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda said this year's International Nurses Day theme, Our Nurses, Our Future, Empower Nurses, Save Lives, highlights the vital role nurses play in strengthening the country's healthcare system and national progress. For Parikrama, Nikhil Upadhyay for Akashwadi News, Padji.
0: और श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं झारखंड के पलामू जिले के घने जंगलों और ऐतिहासिक किलों के बीच, जहां की एक कहानी ने सात समंदर पार फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल तक का सफर तय किया है। फिल्म पेड़ चलता है ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है।
3: पलामू टाइगर रिजर्व की वादियों

0: under the Bharat Innovates 2026 initiative, Union
1: पलामू टाइगर रिजर्व की वादियों और बेतला के ग्रामीण इलाकों की मिट्टी से उपजी एक फिल्म अब विश्व सिनेमा के सबसे बड़े मंच कांस के मार्शे ड्यू फिल्म फेस्टिवल में 14 जून को प्रदर्शित होने जा रही है। निर्देशक देवादित्य बंदोपाध्याय की यह फिल्म जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी थ्रिलर है। वे कहते हैं कि झारखंड की मिट्टी से उपजी इस फिल्म का विश्व सिनेमा के सबसे बड़े मंच पर पहुंचना राज्य के लिए गौरव की बात है।
2: हमारी फिल्म पेड़ चलता है, इस फिल्म की प्रीमियर होने जा रही है मार्शे ड्यू कांस फिल्म फेस्टिवल में। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, सब लोग इस जर्नी को तय करने में, जो लोग हमारे साथी थे, पूरा टीम एक्टर्स से लेके टेक्नीशियन तक, और जो भी हमारे झारखंड के थिएटर ग्रुप के साथी हैं, जिन लोगों का बहुत बहुत मेहनत काम आया, झारखंड के हर एक अधिकारी लोगों से लेके साधारण गांव के लोगों तक, सबका मैं बहुत अंतर से आभारी हूँ। इस फिल्म को बनाने में उनका बहुत मदद मिला।
1: फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्वाभाविकता है। इसमें पलामू टाइगर रिजर्व, शाहपुर किला और गारो के ग्रामीण परिवेश को इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है कि दर्शक प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्थानीय लेखक और टीम सदस्य साकेत चटर्जी इस यात्रा को ऐतिहासिक मानते हैं।
3: फिल्म पेड़ चलता है का सिलेक्शन कांस फिल्म महोत्सव के ऑनलाइन कैटेगरी में प्रीमियर की जाएगी उसकी, और संध्या 7 बजे 14 जून को इसे दिखाया जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, खास करके हम लोग जो पलामू के कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं, वो तो सपना में नहीं सोचे थे कभी कि ऐसा भी संभव है। और आप सब से अनुरोध होगा कि ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। अब कैसे ये आगे आपके सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम कांस में डूबे हुए हैं। इसकी जो एक महक आ रही है अभी तक वो फिल्म महोत्सव की, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा है हमारे लिए। बहुत खुश हैं हम और आगे और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
1: वीरेंद्र सक्सेना और प्रमोद पाठक जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं से सजी ये 100 मिनट की फिल्म पर्यावरण और इंसान के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। निश्चित रूप से फिल्म पेड़ चलता है कि ये सफलता झारखंड के उभरते फिल्मकारों के लिए प्रेरणा का एक नया स्रोत बनेगी। रांची के समाचार कक्ष से कुंदन वर्मा के साथ परिक्रमा के लिए मैं महविश रहमान।
4: एंड नाउ फ्रॉम झारखंड वी गो टू Mumbai. Well, we recently observed National Technology Day and celebrated the power of innovation, scientific excellence and technology for inclusive and sustainable development, underscoring the significance of saving and nurturing the environment. As we move rapidly towards development, IIT Bombay has come up with a one-of-its-kind technology to capture carbon and convert it into useful chemicals. Very innovative. Let's hear more from our Mumbai correspondent.
0: Under the Bharat Innovates 2026 initiative, Union Minister of Education Dharmendra Pradhan recently inaugurated the Integrated Carbon Capture and Utilization Plant at IIT Bombay. It is India's first end-to-end carbon capture, utilization and storage field laboratory pilot at IIT Bombay. Explaining these complex sounding concepts to us in the simplest words, we have with us Professor Dr. Vikram Vishal from the Department of Earth Sciences at IIT Bombay.
5: It's indeed an interesting project that we have been working for last several years, which captures carbon dioxide either from air to the high concentration sources from the industry's effluent gases. Essentially, we need to cut down our carbon dioxide footprint and carbon dioxide emissions that happen from the country. So what we have done is an innovative technology which captures CO2 from such sources of emissions and converts it into useful chemical product, largely calcium carbonate, sodium soda ash and baking soda, which can also have a valuable demand in the market. So there is a waste to wealth kind of an opportunity that comes with this facility. So this is a sort of a pilot demonstration facility on the IIT Bombay campus to demonstrate how CO2 can be captured from different sources and converted into useful chemicals.
0: The event also witnessed the commencement of geological CO2 sequestration scientific drilling. Let us dive deeper into this technology with Dr. Vikram Vishal.
5: It's a very interesting concept that when we capture huge amounts of carbon dioxide, we cannot convert into product that is still marketable at the scale of emission that is happening. So then we look at putting the carbon dioxide where it came from, the sources, the fossil fuels under the ground. So we capture the carbon dioxide and pump it into the subsurface formations, which is called as geological carbon sequestration. So we are drilling India's first well on the IIT Bombay campus that will be injecting carbon dioxide, essentially for monitoring the fate of injected carbon dioxide. So we know where it migrates, how it moves, so that we can build modern technologies and techniques for monitoring the fate of injected carbon dioxide on a field laboratory basis. So this will give confidence to the stakeholders in India that we can

0: capture carbon dioxide and we can store in geological formations in the subsurface in the country.
1: In India, any innovation has to be complemented by economic viability. We often tend to pit technology and the environment against each other. But examples like these show us that the two can be brought together, and if done with the right spirit, they indeed go hand in hand towards a sustainable future. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
2: And now we go up north to Leh. Well, the sacred relics of Lord Tathagat Buddha have been in Leh since the 29th of last month. People from all regions of Indonesia have visited the relics in large numbers, offering their reverence. Several programs were organized at various locations. Let's hear a report.
3: तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेष को लद्दाख के नए जिले संस्कार में दो दिन के लिए लोगों के दर्शन करवाने के बाद आज सुबह अवशेष को वापस ले लाया गया। इन्हें धर्मा सेंटर में रखा गया है, जहां हजारों भिक्षु भिक्षुनियां विशेष प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं। ये वार्षिक मुल्लम छिन्मो का भी हिस्सा है। यहाँ पाँच दिन का आयोजन होता है, जिसमें विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। लद्दाख के सभी क्षेत्र के लोगों ने बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ अवशेष की दर्शन की है। भगवान बुद्ध की अवशेष जो कि लद्दाख में अभी हैं, इसी दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग ध्यान स्वास्थ्य शिविर अंतर धार्मिक संवाद और आध्यात्मिक आयोजन शामिल है। हर शाम भारत भर के और स्थानीय कलाकारों द्वारा संस्कृति कार्यक्रम पेश किए जा रहे है। भारत और देश से कई नेता भी तथागत भगवान बुद्ध की अवशेष के दर्शन के लिए ले आए थे। इन पवित्र अवशेषों के दर्शन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया था। 15 मई को अवशेष को वापस दिल्ली ले जाया जाएगा। परिक्रमा के लिए ले से मैं दस्कित डोलवा।
4: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल क्रिकेट से, जहां आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
2: And in Finland Open Badminton, India begins with a positive start, with PV Sindhu and Kidambi Srikanth advancing to the pre-quarterfinals in Bangkok. Two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Chinese Taipei's Tang Xiaotang in straight games in just 33 minutes. The six-seeded Indian will next face Denmark's Emery Schulz in the round of 16. Former World Championship silver medalist Kidambi Srikanth also registered a convincing victory. Srikanth beat Singapore's Lo Kien Yu in a rematch of the 2021 World Championships final. The former Thailand Open champion will now take on Chinese Taipei's Su Li Yang in the next round. And if we talk about some business news, well, benchmark domestic equity indices rose marginally today after a volatile trading session, snapping a four-day losing streak. The Sensex advanced 50 points to close at 74,609, while Nifty added 33 points to settle at 23,413.
4: अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: In today's episode, we remember the freedom fighter and former President of India, Fakhruddin Ali Ahmed, who was born on the 13th of May 1905 in New Delhi.
6: Fakhruddin Ali Ahmed was the son of an army doctor from Assam. Ahmed joined the Indian National Congress when he met Jawaharlal Nehru in 1925 and jumped into the freedom struggle. In 1942, he participated actively in the Quit India movement, for which he was arrested and sentenced to 3.5 years of imprisonment.
5: After independence, Fakhruddin Ali Ahmed was elected to the Rajya Sabha in 1952 and thereafter became Advocate General of the Government of Assam. He was also elected to the Assam Legislative Assembly for 2 terms. He was twice elected to Lok Sabha, first in 1967 and again in 1971. As a Cabinet Minister, he held diverse portfolios relating to food and agriculture, cooperation, education, industrial development and company laws.
6: Fakhruddin Ali Ahmed served as the 5th President of India from 1974 till his death on the 11th of February 1977, when he collapsed in his office while preparing to attend his daily namaz. All India Radio News pays tribute.

0: Tribute to the nationalists.
1: We also remember Gandhian freedom fighter V.R. Krishnan Eluthachan, who died on the 13th of May 2004. A prolific writer in both Malayalam and English, Krishnan was the founder general secretary of Cochin State Prajamandalam, the political arm of the Congress Party in the erstwhile Cochin State before independence, and also the founder editor of the Dinabandhu newspaper. He converted the Congress Party into a truly mass-based party in his region. V.R. Krishnan Eluthachan was born in Avinisheri, Thrissur on the 25th of April 1909. He got inspired to join the freedom struggle after meeting Mahatma Gandhi in Thrissur in 1925 with the aim to end the sovereignty of Cochin King and to form a responsible government. Prajamandalam was formed on the 9th of February 1941 with Eluthachan as founder general secretary. In January 1942, Prajamandalam decided to conduct the first annual meeting at Irinjalakuda. Diwan A.F.W. Dixon banned it due to the resentment caused towards the king by the activities of Prajamandalam.
2: हम याद कर रहे हैं भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी कार्यकर्ता प्रतिष्ठित उर्दू कवि और पत्रकार रह चुके मौलाना हसरत मोहानी को आज उनकी पुण्यतिथि है। इतिहास में उनका योगदान और उनका व्यक्तित्व बेहद बेमिसाल रहा है। देश को झकझोर देने वाला सुप्रसिद्ध नारा मौलाना हसरत मोहानी ने ही लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद, जिसे बाद में शहीद भक्त सिंह ने जन जन में लोकप्रिय बनाया। और गुलाम अली द्वारा गाई गई बेहद लोकप्रिय गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है भी मूल रूप से हसरत मोहानी की ही लिखी हुई है।

0: वे एक सच्चे सूफी संत थे जो इस्लाम के कट्टर अनुयायी होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे। वे हर साल मथुरा और वृंदावन जाते थे और उन्होंने कृष्ण की भक्ति में कई खूबसूरत कविताएं भी लिखी हैं, जिसका एक अंश है कि मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्रा इसर जमीने गोकुल, दारा है जमाले दिलबरी का। तो हजरत साहब कहते हैं कि मथुरा प्रेम और भक्ति का शहर है, गोकुल की धरती का हर एक कण आकर्षण से भरा है और कृष्ण की बांसुरी की हर धुन अमर जीवन का संदेश है।
1: We are also remembering Shukanto Bhattacharya today, a Bengali revolutionary poet known as Young Nazrul or Kishore Bidrohi Kavi, for his rebellious stance and opposition against the British Raj, the Empire of Japan, other Axis powers and also the Second World War. While his poetry was not much studied during his career, he became one of the most popular poets of the 20th century and Bengali literature after his death.
2: Ranar chuteche তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানার, রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে রানার, কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার, রানার রানার জানা অজানার।

0: हम याद कर रहे हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान और लोकप्रिय उपन्यासकारों में से एक आर के नारायण को। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। मालगुडी डेज उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह है, जिस पर दूरदर्शन का बेहद लोकप्रिय धारावाहिक बना।
1: एंड जैसे ही ये ट्यून सुनते हैं ना, वी ऑल आर ट्रांसपोर्टेड बैक, यू कैन से, अ सी ऑफ नॉस्टैल्जिया टू दोज लवली डेज व्हेन स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू रिगेल अस विद देयर स्टोरीज।

तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और सायरा को परिक्रमा का ये अंक यहीं समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशनभोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:11 और 9 सेकंड हुए हैं और आप जानते हैं कि वक्त है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का। और गाते गुनगुनाते मैं आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर, और साथ ही आपको इंतजार होगा 80 और 90 के दशक की कुछ ऐसे गीतों का जो गीत आपको गुदगुदा जाए, आपको कुछ याद दिला दें। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी कुछ ऐसे गीत आप तक पहुंचाएं कि आपको 80 और 90 के दशक की कुछ खास बात याद आए? और अगर नहीं भी याद आए, कोई बात नहीं, मान लिया कोई ऐसी बात थी नहीं उन गीतों में या उस दौर में, तो भी कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए कि आपने अगर गीत सुन रखा है तो भी, और अगर गीत नहीं सुन रखा है तो भी आपको उन गीतों को सुन करके बहुत मजा आए। अब कहते हैं ना, जैसे अभी कार्यक्रम की मैंने शुरुआत करी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर, ये सब कुछ बोला ना मैंने आपसे। अब अगर बाई चांस मान लीजिए मेरा नाम नईम अख्तर ना हो, कुछ और हो, तो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम तो मैं ही दूंगी ना, प्रोग्राम देने का स्टाइल भी यही रहेगा। एफएम गोल्ड का नाम एफएम गोल्ड ना रख करके अगर कुछ और रख दिया जाए कल को, तो भी चैनल तो यही रहेगा ना। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा भी है कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। गुलाब को गुलाब नहीं कहकर कि अगर आप कांटा कहोगे तो क्या वो खुशबू देना बंद कर देगा? अगर चांद को चांद ना कहेंगे, पहाड़ कहने लग जाओगे तो क्या वो चांदनी भी कहना बंद कर देगा? पानी को अगर पानी ना कहकर के आप हवा कहने लग जाओगे तो क्या वो आपकी प्यास बुझाना बंद कर देगा? नहीं ना। यानी कि चाहे ये बात सच है कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी नाम में बहुत कुछ रखा है भाई। अगर नाम नाम जैसा ना हो तो पहचान करना मुश्किल हो जाए। अब आज के जो गीत हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। आपकी मनपसंद गीत, आपकी मनपसंद हिंदी फिल्में, जिन फिल्मों में आप अपने मनपसंद कलाकारों को देखते हैं, मनपसंद गायक गायिकाओं की आवाज सुनते हैं, और भी संगीतकार गीतकार और भी न जाने कितने ही होता है, निर्देशक निर्माता, इन सभी के बारे में आप जानते हैं अगर आपको हिंदी फिल्मों का शौक है। और एफएम गोल्ड भी इसीलिए सुनते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे वैरायटी मिलती है पुराने गीतों की। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही गीत लेकर आए हैं जिनमें, जिन गीतों में कुछ ऐसे कलाकारों को पर्दे पर दिखाया गया है या फिर उनकी आवाज सुनाई गई है जिनका असली नाम भी या तो वही है या फिर फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले या फिल्मों में काम करने वाले कलाकार के नामों को उसमें शामिल किया गया है। पहला ये गीत जो हम आपसे आपके लिए लेकर आए हैं वह 1988 की फिल्म हम फरिश्ते नहीं का। हम फरिश्ते नहीं फिल्म 1988 में आई थी। इसमें राज बब्बर, पूनम ढिल्लो लीड रोल्स में थे, लेकिन इसी के अंदर एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था स्मिता पाटिल ने, जो राज बब्बर की जिंदगी में उनकी प्रेमिका के तौर पर दिखाई गई थी। और उस दौर में जो जब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उस दौर में उन्होंने एक गीत पर्दे पर दिखाया था।

0: जिस पर स्मिता पाटिल और राज बब्बर गीत गाते हैं। स्मिता पाटिल तो सिर्फ सुन रही होती हैं क्योंकि उनका पीछा कर रहे होते हैं राज बब्बर, और उनको लुभाने के लिए राज बब्बर न जाने कितनी ही अदाकाराओं का नाम लेते हैं उस गीत में। वही गीत हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए और जरा काउंट कीजिए, नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, कौन कौन सी अदाकाराओं के नाम, कौन कौन सी अभिनेत्रियों के नाम इस गीत में आए हैं। और हाँ, मिस मत कीजिएगा, गीत के आखिर में स्मिता पाटिल का भी नाम आता है। तो सुनते हैं इस गीत को, मजे लेते हैं, और याद रखिए कि आपको इस कार्यक्रम में आज इसी किस्म के बहुत सारे गीत सुनने को मिल सकते हैं।
1: पोरगी ओए बुलबुल ओए सोनिए ओ गो सुंदरी किथे चलली कुठे साली कोथाए चलली अरे किधर चलली रुक जा रुक जा।

मजा आया ना? मैंने तो कहा था आपसे कि आपको मजा आएगा. इतने सारी हीरोइंस के नाम आपने इस एक ही गीत में सुन लिए. अब ये बताइए, हमने आपसे ये कहा था कि आप जरा नोटिस कीजिएगा कि कौन कौन से हीरोइंस के नाम इस गीत में आते हैं. किया क्या आपने? नहीं किया. तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन से हीरोइंस के नाम आए थे इस गीत में. आप मैच कर लीजिए, अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसको पूरा कर लीजिए, और अगर मिस नहीं हुआ है, आप भी हमारी तरह हैं तो ठीक है भाई, बल्ले बल्ले आते हैं ही, एफएम गोल्ड के श्रोता ना. तो कौन कौन सी हीरोइंस के नाम आए थे इसमें? श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रेखा, जया प्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे, रति अग्निहोत्री, पूनम ढिल्लो, अनिता राज. पूनम ढिल्लो के बारे में आपको बताया था कि इस फिल्म की मुख्य नायिका भी वही थी. पूनम ढिल्लो, अनिता राज, टीना मुनीम, जीना तमान, मुनमुन सेन, मीनाक्षी शेषाद्री, शबाना आजमी, रामेश्वरी, विजेता पंडित, अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया और आखिर में स्मिता पाटिल. जैसा कि हमने आपसे कहा ही था कि स्मिता पाटिल का नाम इस गीत के अंत में आएगा. तो ये तो रहा बहुत मजे का गाना जिसमें इतनी सारी हीरोइंस के नाम थे, पर एक गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं. हीरोइंस थी ना, आप कहेंगे कि हीरोज के नाम वाली तो कोई फिल्म नहीं है 80 और 90 के दशक में, तो क्यों नहीं है? आपके लिए एफएम गोल्ड है ना, इसी तरह के तो गीत आपके लिए लेकर आते हैं हम. हीरोज के नाम वाली भी एक फिल्म हम याद आई हमको, और उसका एक गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं. 1996 में एक फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिसमें मुख्य नायक थे अक्षय कुमार. सही याद आ रहा है आपको, रवीना टंडन और रेखा भी थे उसमें. और बस इतना कहना काफी, आपको याद आ गया, हम हैं सीधे साधे अक्षय. अक्षय कुमार पर ही ये गीत फिल्माया गया था, जिसमें अक्षय नाम ही बार बार इस्तेमाल किया गया. लेकिन सिर्फ अक्षय नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जिनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री की बात ना तो पूरी होती है, ना ही कहीं से शुरू होकर कहीं पर खत्म होती है. तो चलिए वही गीत सुनते हैं.

तो ये गीत सुनकर के आपको याद तो आया ही होगा अक्षय कुमार की स्क्रीन पे प्रेजेंस, और साथ ही इसके अंदर हमने आपको कहा था कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का भी नाम आया है इस गीत के अंदर। एक और गीत हम आपको याद सुनाना चाहते हैं क्योंकि याद आ रहा है 1983 में एक फिल्म आई थी नौकर बीवी का, ऑल एंड ऑन कॉमेडी मूवी थी, थोड़ा सा बस उसके अंदर सीरियस अंश था किसी जगह वैसे, लेकिन पूरी फिल्म जो थी वो कॉमेडी से भरी हुई थी जिसमें मुख्य भूमिकाएं धर्मेंद्र और अनीता राज ने निभाई थी। अब आप याद कर रहे होंगे कि नौकर बीवी का फिल्म में ऐसा कौन सा गाना था जिसमें किसी हीरो हीरोइन का या किसी और फिल्म क्रू का नाम आया है। कोई बात नहीं, हम आपको याद दिलाते हैं। असल में फिल्म की मुख्य नायिका जो थी वो अनीता राज थी और उनके जो नायक थे वो धर्मेंद्र थे, लेकिन इस फिल्म में एक रोल रीना रॉय का भी था जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, बहुत महत्वपूर्ण रोल था, और उस रोल को रीना रॉय ने जो पर्दे पे निभाया था उसमें उन्हें एक फिल्म अभिनेत्री दिखाया गया था। तो फिल्म अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने अपना किरदार बखूबी पेश किया था और उनके इस किरदार में, फिल्म में उनके इस किरदार के ही मद्देनजर

एक गीत भी फिल्म में था, जिस गीत में रीना रॉय पर्दे पर दिखाई दी थी और साथ ही उनके ऋषि कपूर पर्दे पर दिखाई दिए थे। और उस गीत के अंदर मजेदारी वाली बात यह है कि दोनों अपना अपना नाम बता रहे होते हैं, वो बताती हैं कि मेरा नाम रीना है और वो बताते हैं कि मेरा नाम ऋषि है। अगर याद आया है गीत तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो सुनिए और सुन के इस गीत का पूरा पूरा मजा लीजिए, और उसके बाद देखिए कि ये दोनों भी कह रहे होते हैं कि रीना मेरा नाम, ऋषि मेरा नाम, और साथ ही डांस रोमांस सब कुछ वो म्यूजिक को बताते हैं। सुनिए और सुन के मजा लीजिए।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:37:54 हुए हैं और कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में 80 और 90 के दशक के कुछ गीत आज आपके लिए नईम अख्तर ऐसे चुनकर के लेकर आई है जिन गीतों में आपको अपनी पसंद के फिल्मी कलाकारों के नाम सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो पर्दे पर दिखाई देने वाले हों या पर्दे के पीछे अपना कमाल दिखाने वाले हों, लेकिन फिल्मों से जुड़े हुए हैं और उन फिल्मों से जुड़ाव ही वो जज्बा है जो जज्बा आपको और हमको यानी आकाशवाणी एफएम गोल्ड के श्रोताओं को और हमें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खैर, ये जो अभी आपने गीत सुना जो हमने आपको सुनवाया था, क्या नाम है तेरा, नौकर बीबी का फिल्म का, उसके अंदर आपने दोनों ही तरफ से सुने कि कौन अलग अलग नाम लिए जा रहे थे, लेकिन जो ज्यादा मजेदार बात थी वो ये थी कि जब आशा भोसले गा रही होती हैं जो कि रीना रॉय पर पिक्चराइज था, तो वो नाम लेती हैं ऋषि का नाम लेने से पहले, ऋषि कपूर का नाम लेने से पहले, डब्बू चिंपू चिंटू। तो आपको यकीनन सुन करके याद आया होगा कि डब्बू चिंपू चिंटू ये तो इन तीनों भाइयों के नाम है, रणधीर कपूर, राजीव कपूर और चिंटू खुद ऋषि कपूर का नाम था। तो ये सारे नाम जो है इसमें ऋषि तो उन्होंने अपना नाम लिया, लेकिन चिंटू भी कहीं ना कहीं जो उनका पेट नेम था वो भी इस गीत के

कि गोविंदा की आंखों से दिव्या भारती ओझल हो जाती हैं और वो फिल्म में जो दिव्या भारती का नाम था वो नाम पुकारते हैं। और इत्तफाक देखिए, दिव्या भारती का इस फिल्म में भी नाम दिव्या ही था। तो दिव्या नाम असली में भी था और दिव्या नाम फिल्म में भी था और दिव्या नाम गीत में भी शामिल किया गया। एक और फिल्म आई थी उनकी सोनाली बेंद्रे के साथ 1998 में, बनारसी बाबू। और बनारसी बाबू फिल्म में गोविंदा ने सोनाली बेंद्रे को पैम्पर करते हुए उन्हें जो खिताब दिया वो फिल्म इंडस्ट्री की जिन्हें सबसे खूबसूरत अदाकारा कहा जाता है मधुबाला, उनका खिताब देते हुए कहा, गाना गाया था मधुबाला गजब कर डाला। ऐसे ही गोविंदा की एक और फिल्म आई थी 1983 में, आंखें। तो आंखें फिल्म में जब वो अपने बंदर के साथ गोविंदा और चंकी पांडे जब कुछ करतब दिखा रहे होते हैं, वो गीत बहुत हिट हुआ था। उसके अंदर भी तीन हीरोज के नाम आए थे, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और जितेंद्र। तो ये सब अगर बातें हुई गोविंदा की, तो क्यों ना एक गीत गोविंदा का ही सुनवा दिया जाए जिसमें किसी एक कलाकार का नाम भी आपको सुनने को भी मिले और पर्दे पे भी देखने को मिला हो। फिल्म थी कुंवारा, जिसमें उनकी नायिका थी उर्मिला मातोंडकर और उस फिल्म में भी उर्मिला मातोंडकर का नाम उर्मिला ही था। और क्योंकि फिल्म में उनका नाम उर्मिला था तो उसी नाम से उन पर एक गीत भी पिक्चराइज था। आ गया याद, उर्मिला रे उर्मिला।

याद तो आया आपको, और अगर आपको पिक्चराइजेशन याद आई होगी तो आपको और ज्यादा मजा आया होगा। अब लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि फिल्मी कलाकारों का जिक्र जिन गीतों में हुआ है तो क्यों हम सिर्फ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का ही जिक्र कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि आप बहुत क्यूरियस रहते हैं, आप एफएम गोल्ड के श्रोता हैं जिन्हें कुछ ना कुछ जानने की उत्सुकता रहती है, तजस्सुस रहता है, तो बस उसको पूरा करना तो हमारा ही काम है ना। याद कीजिए एक गीत जिसमें किशोर कुमार ने खुद अपने लिए एक गाना गाया था, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजों का नाम लेते हुए उन्होंने खुद अपने नाम को गाया था, किशोर कुमारम किशोर कुमारम। एक और गीत है फिल्म क्रोध में जो अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज्ड है, और इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज ने, और उन्होंने जिनकी शान में कसीदे पढ़े हैं वो थे मोहम्मद रफी। न फनकार तुझसा तेरे बात आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। ऐसे ही एक और फिल्म आई थी 1979 में, फिल्म गोलमाल, उत्पल दत्त अमोल पालेकर की फिल्म थी, जिसमें अमोल पालेकर को दिखाया गया है सपने में देखा एक सपना, जिसमें बड़े सारे कलाकारों को दिखाया गया है, अमिताभ बच्चन से लेकर के गायिकाओं में लता मंगेशकर तक को दिखाया गया है कि लता गा रही थी, मैं तबले पर था, वो अंतरे पे थी, मैं मुखड़े पर था, इस तरह करके उन्होंने गाया था। मतलब जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो और हीरोइंस को ही पर्दे पर दिखाया गया है या उनका नाम गीतों में शामिल किया गया है, बल्कि जो प्लेबैक सिंगर्स हैं, पार्श्व गायक और पार्श्व गायिकाएं हैं, उनका भी नाम फिल्मी गीतों में आया है। जैसे एक फिल्म आई थी 1986 में आपके साथ, आपके साथ में अनिल कपूर और रति अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में थे, और इस फिल्म में दिखाया ये गया था कि अनिल कपूर बहुत रिच बहुत अमीर होते हैं और रति अग्निहोत्री को बिल्कुल भाव नहीं देते, और रति अग्निहोत्री उनका ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए बहुत मॉडर्न स्टाइल में तैयार होकर के एक क्लब में आती हैं और वहां एक गीत गाती हैं, जिस गीत को सभी श्रोताओं ने न सिर्फ उस वक्त भी पसंद किया था बल्कि आज भी उस गीत को बड़े चाव से सुना जाता है। और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस गीत को जिस गायिका ने गाया था उसी गायिका का नाम इस गीत में शामिल किया गया था। याद आया तो अच्छा है, नहीं याद आया तो सुनिए मेरा नाम सलमा। जी हाँ, सलमा आगा की आवाज में ये गीत है, सुनिए और लुत्फ लीजिए।

और ऐसा नहीं कि सिर्फ गायक गायिकाएं या हीरो हीरोइन ही फिल्मी गीतों में अपने नाम के साथ आए हैं, बल्कि चरित्र अभिनेता भी पर्दे पर दिखाई दिए अपने अपने नामों के जरिए। जी जी जी जी, याद कीजिए फिल्म चाचा भतीजा जो 1977 में फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक गीत था जिसमें केशटो मुखर्जी और टुनटुन की शादी हो रही होती है और बैकग्राउंड में क्या बल्कि गीत उसमें दिखाया गया है कि गीत गा रहे होते हैं आसपास वाले, हे ले लाला हो ले लाला, झूमो जरा नाचो गाओ जरा, शादी बनाने को केशटो चला। जी, केशटो मुखर्जी का नाम उस फिल्म में आया था, इस गीत में आया था। ऐसे ही 1968 में एक फिल्म आई थी दुनिया। दुनिया फिल्म में एक गीत था, तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया। असल में लक्ष्मी और छाया दो नामों को मिला के जो एक नाम बनता है लक्ष्मी छाया, वो लक्ष्मी छाया नाम से एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं और उनके साथ ये गीत गा रहे थे जॉनी वॉकर। दोनों का ही नाम इसमें आया था, लक्ष्मी छाया का भी और जॉनी वॉकर का भी। ऐसे ही एक और अगर हम जिक्र करें आपसे कि खुद अपना किरदार किन किन ने निभाया, अपना सिर्फ नाम नहीं, जैसे अभी उर्मिला का जिक्र किया था सिर्फ, या दिव्या भारती का जिक्र किया था, सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपने आप उसी नाम के उसी किरदार के कौन कौन से कलाकार आए। तो 1971 में फिल्म गुड्डी आई थी जिसमें धर्मेंद्र फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ही बने थे। ऐसे ही 1993 में एक फिल्म आई थी ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री की जिसमें आमिर खान ने एक गीत गाया था बिन साजन झूला झूलू मैं वादा कैसे भूलूं, और इस गीत में आमिर खान बनकर ही फिल्म में पेश हुए थे कि वो एक चैरिटी के लिए सामने आते हैं। तो इस फिल्म का नाम था दामिनी। 1994 में एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, सलमान खान उसमें थे और आमिर खान थे, और उन दोनों की जो अभिनेत्रियां थी, उनकी दोनों की जो नायिकाएं थी, वो रवीना टंडन और करिश्मा कपूर थी। और आधी फिल्म तक रवीना टंडन को रवीना और करिश्मा कपूर को करिश्मा ही कह करके पुकारा गया। खैर, इसके अलावा है तो हमारे पास बहुत कुछ बताने के लिए। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में किरदार निभाया, फिल्म का नाम आपको याद शायद होगा, तहलका, जिसमें उन्होंने अपने ही नाम से एक गाना पर्दे पर पेश किया था, पुट ऑन द घुंघरूज ऑन माई फीट एंड वॉच माई ड्रामा, मैं हूं गरम धर्म मुझे कैसी शर्म। तो वो जमाना था कि जब धर्मेंद्र को गरम धर्म कहा जाने लगा था और वो उसी नाम से मशहूर हो गए थे। अब वक्त इतना नहीं है कि मैं ये सारे गीत आपको सुनाऊं, लेकिन हाँ एक गीत जो जाते जाते आपको सुनाने वाली हूँ वो गीत है फिल्म सरफरोश का। 1985 में ये फिल्म आई थी, तो सरफरोश का ये गीत सुनिए। और ये गीत खास तौर पे आपके लिए कार्यक्रम के अंत में हमने रखा इस वजह से क्योंकि कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो श्रीदेवी के जिक्र के साथ हुई थी। अब ये मैं समझिएगा हम श्रीदेवी के इतने बड़े फैन हैं कि और किसी के जिक्र के साथ हम खत्म नहीं, बस लेकिन एक वो थोड़ा सा तारतम्य बन जाता है, एक बैलेंस्ड सा दिखाई देता है। कार्यक्रम के शुरुआत श्रीदेवी के नाम से हुई थी, अंत भी हम श्रीदेवी के ही जिक्र के साथ कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। नईम अख्तर को अभी इजाजत दीजिए आज के कार्यक्रम गाते गुनगुनाते से, और श्रीदेवी के इस गीत का मजा लीजिए जिसमें श्रीदेवी के साथ जितेंद्र भी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं और श्रीदेवी को ही श्रीदेवी कहकर के पुकार रहे हैं। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz शाम के 6:11:03 और ये वक्त होता है आपके सफर का, हम सफर करने का। आकाशवाणी FM गोल्ड आपके घर तक के सफर का हम सफर होता है इस वक्त। और कहते भी हैं कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहिए जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर लगता है आज आपको कि आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है आज के दिन, तो ये सोच लीजिए कि आज का दिन ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी हर रोज सुबह शुरू होती है और शाम को घर की ओर रुखसत करती है।

कहते हैं मेहनत कभी जाया नहीं होती, देर से ही सही पर रंग लाती है। जो दिल से करता है कोशिश, सफलता उसे मिल जाती है। अब ये सफलता किसी रूठे हुए को मनाने की हो या फिर कुछ खोया है ऐसा जिसे पाने की हो। अगर किसी को नाराज करके गए हैं जनाब सोफे ऑफिस, तो अब शाम हो गई है, जाकर मना लीजिए ना उसे।

लेकिन जनाब हम अब कल नहीं मिलेंगे, हम अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे सांझ ढीले प्रोग्राम में। तब तक आप सुनिए संस्कृत में समाचार।

0: रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, पञ्चशतं रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितमस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37.5 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000 कोटि रूप्यकाणाम् अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रान्तरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं डीएमके विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलं 88 आसनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्रिरूपेण पंचमं वारं शपथग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः, तीव्र वायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजीलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्षोपलक्ष छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्रराज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. My name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aap sabka abhinandan. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ एसपी शर्मा। डॉ शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत अभिनंदन।
2: जी, थैंक यू प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: The benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds 50 points. Nifty settles above 23,400. Cabinet approves scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. And gold and silver prices jump around 6% after government hikes import duty.
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 50 अंक बढ़ा, निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। और सरकार द्वारा आयात शुल्क को दोगुने से अधिक बढ़ाने के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में लगभग 6% का उछाल आया।
0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, आइए अब जानें शेयर बाजार का हाल। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में चार दिन से लगातार जारी गिरावट के बाद आज मामूली तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। व्यापक शेयर बाजार के सूचकांकों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप 100 में लगभग 0.8% का उछाल आया, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: The benchmark domestic equity indices rose marginally today after a volatile trading session snapping a four-day losing streak. The Sensex advanced 50 points to close at 74,609, while the Nifty added 33 points to settle at 23,413. The broader market on the National Stock Exchange ended higher than frontline indices. The mid-cap 100 jumped nearly 0.8%, while the small-cap 100 gained 0.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 2.1%, पावरग्रिड और इन्फोसिस के शेयर 1.5% से अधिक, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के शेयर में 1.2% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स 4.5%, टाटा स्टील के शेयर 3.6% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 2.9% बढ़े।
0: And in the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors edged upward. In the top gainers, metal rose 3.3%, telecommunication climbed 2.8%, and consumer durables added 2.4%. Among the top losers, IT shed 1.1%, focused IT lost 1%, and auto dropped 0.9%. Overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. The shares of 2,406 companies declined, 1,794 advanced, and 169 remained unchanged.
1: और अब बात रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी

0: 95.70 रुपए पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.47 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, हमने देखा आज की लगातार चार दिन से बाजार में मंदी हमें देखने को मिल रही थी, मगर आज एक तनिक सी हरियाली हमें नजर आई, उस पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए प्राची, जो हमें मंदी दिख रही थी उसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। जो कुछ भी समझौता नहीं हो पा रहा है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है यूएस के और ईरान के बीच में, बल्कि ये बढ़ती जा रही है जो टसल है। भले ही हम उसको सीज फायर कहें, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और गहरा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज किसी एक मुद्दे को लेकर उसके ऊपर कुछ बातचीत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से वापस जो एक नेगेटिविटी का माहौल बना ग्लोबल लेवल पे, जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में डिसेलरेशन हुई, तो स्वाभाविक है कि सभी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट है। इंडिया भी उसमें कोई ऐसे इंसुलेटेड नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होगा। तो एक लेकिन आज एक जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, शॉर्ट कवरिंग कहूंगा मैं, क्योंकि अभी हम वॉलेटिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। ये एक जो डेसिलरेशन थी उसमें थोड़ा सा विराम आया है, लेकिन अभी जब तक कुछ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके फैसला नहीं हो जाता, जब तक यूएस और ईरान में कोई संधि नहीं हो जाती, तब तक हम मार्केट्स में स्ट्रांग रिबाउंड नहीं मान सकते। तो उसी के मद्देनजर जो आज हमने थोड़ी एक रिकवरी देखी, पहले वो रिकवरी काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में वो सबसाइड हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई
0: जी।
1: क्योंकि एक अनसर्टेनिटी अभी भी है ग्लोबल लेवल पे, जो दिन प्रतिदिन गहरा रही है। जो अभी देखो कि दो महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, उसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा किस कंट्री के ऊपर, अभी वो सीधे तौर पे विजिबल होना अभी बाकी है, जो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, हम खाली एक पॉइंट देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन उसके जो रिपरकशंस हैं, जो इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं, जो इकोनॉमी इसके ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो वो अभी किसी को भी सही रूप से अभी उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है।
0: डॉक्टर शर्मा, आपने मुनाफा वसूली की बात की जो आज हमने बाजार में देखी, मेटल के जो शेयर्स हैं उसमें काफी खरीदारी हुई है।
1: जी बिल्कुल, उसकी वजह तो जो भी कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई है गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर, तो उसी की वजह से एक जब कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। अब जो लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उनको उतना जो और ज्यादा जो कस्टम ड्यूटी है देना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले वो 1,00,000 रुपए के ऊपर 106 देते थे, तो अभी उनको 115 देना पड़ेगा, तो जिससे कि उतना ही प्राइसेस में एक अपसाइड आना स्वाभाविक है कि अब वो जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में, रिटेल मार्केट में उतने दाम पे बिकेंगे।
2: राइट डॉक्टर,
1: तो इससे कुछ शायद जिनके पास स्टॉक्स हैं, जो ऐसे ज्वेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक्स होंगे, उनको भरपूर मुनाफा भी होगा, क्योंकि उनके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए,
0: एकदम से बढ़ गए,
1: क्योंकि आज जो कल जो गोल्ड बिकेगा उनका जो भी, तो उस प्राइस पे ऊपर ही वो बिकेगा।
2: Absolutely, Dr. Sharma, we are given to understand, as you also mentioned, about the Strait of Hormuz being closed for the past 2 months now, and the global uncertainties, of course, you know, later on in the program, we'll also discuss about the U.S. President's visit to China, something it's kind of keeping our fingers crossed as to something, might something, you know, come out of it, eke out of it, and of course, you know, it goes without saying that we'll be discussing the Iran issue. There and of course the Cold War between the two major economies of the world. Now, besides the point, you know, for the benefit of our listeners, what particular, if you may say, broadly speaking, the sectors would you recommend for them to invest at the moment when the horizon seems to be that much more uncertain in the coming times?
1: Firstly, I would say time is not that much opportune to invest in the market this time, because if you are investing for the long term, that is okay. But if you are investing for the shorter period, or you want to make profits immediately, then there is no recommendation from my side that you should enter in the market. For the long term, there are benefits, because India is a long-term growth story. We have many promising sectors. As I say always, that every sector of the economy is promising, starting from infrastructure to information technology. So, like energy sector, telecom, power, your textiles, your pharmaceuticals, your engineering goods, gems and jewelry, all sectors are promising sectors. But the time of

0: सेटल दिस होल सिनेरियो।
1: डॉक्टर शर्मा, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, बिंदुओं को आपने रेखांकित किया, तो इन सभी ये जितनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें हमारे जो भारतीय निवेशक है जो हमारे बाजार में निवेश करते हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं ग्लोबल मार्केट से भी, उनके मनोविज्ञान पर कैसा असर पड़ रहा है, आप कैसा असर पड़ता हुआ देख पा रहे हैं, जिसका आपको प्रतिफल नजर आ रहा है बाजार के उतार चढ़ाव में?
0: देखिए, उनका मनोविज्ञान बहुत क्लियर है। दे आर वेरी वाइज एंड दे टुक देयर प्लॉजिबल डिसीजंस। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है इस टाइम पे, ये जो ग्लोबल हेडविंड्स है, ये जो यूएस और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, आपने देखा होगा जब जब कुछ ऐसी बात चली पीस की, थोड़ा सा भी पीस की बात चली, तो हमारी मार्केट्स ने स्ट्रांगली रिबाउंड किया। तो चैलेंज वही है, वो एक थ्रेट है हमारे लिए, जो हमारी मार्केट को बार बार, मैं उसको कहूंगा कि इम्पैक्ट करता है, या फिर हम कहें धराशाही करता है, कि जिसको जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को नेगेटिव उसमें कन्वर्ट करता है। तो अदरवाइज हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज, अवर इन्फ्लेशन नंबर्स आर ऑल्सो अंडर कंट्रोल, आरबीआई के बैंड में है, 2 से 6% के बीच में जो है, अभी 3.5% के आसपास का रीडिंग है, सो दैट इज इन बेनाइन कंडीशन,
1: ये एक फेज है।
0: और इसके अलावा जो हमारे दूसरे फंडामेंटल्स हैं, आईआईपी नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट्स में हमने कितनी महारियत हासिल की है, हमने लास्ट ईयर अच्छा ग्रोथ किया है, $863 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, और इस साल का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। अभी हम हमारे माननीय जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 1 ट्रिलियन का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में जो हमारी ट्राजेक्ट्री है, जो रिफॉर्म्स हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी, हर रोज रिफॉर्म्स हो रही है, आज भी कोई नई रिफॉर्म हुई है, कल भी हुई थी और कल भी होगी। लेकिन अभी चैलेंज क्या आता है कि जो नए स्टेटमेंट आते हैं, अभी आप देखिए कि 2 महीने से हुआ कुछ नहीं है, स्टेटमेंट्स ने ऐसा एक बबाल मचाया है जो हर रोज कभी ट्रंप साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो एक पैनिक क्रिएट होता है उससे क्या है कि मार्केट्स बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके ऊपर एकदम से इम्पैक्ट आता है। दूसरे बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग में है या बिजनेस, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना मार्केट उसको इमीडिएट फैक्टर इन करती है, जैसे अनाउंसमेंट हुआ, जैसे आपने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे उतराव चढ़ाव देखे
1: जी।
0: तो अगर ये पीस टॉक्स सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिस दिन कभी ना कभी तो ये सेटल होगा मामला, ऐसा लंबा तो नहीं चलेगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करेंगे, ये मेरा मानना है। मार्केट इससे उच्चतम स्तर भी बना सकती है, क्योंकि हमारा हरेक एक एक फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है जो ओरिजिनली एस्टीमेट किया गया, दैट इज मोर देन 7%। भले ही अभी कुछ रेटिंग एजेंसी उसको अंडरमाइन कर रहे हो कि जी इंडिया 6.5 पे ग्रो करेगा या 6 पे करेगा, बट आई स्टिल बिलीव दैट वी विल ग्रो मोर देन 7% इफ दिस टसल सेटल्स बिटवीन यूएसए एंड ईरान।
2: Even as I mentioned that, Dr. Sharma, the tussle between the US and Iran, the US President Donald Trump has arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. And during their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues including war involving Iran, US arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The meeting will mark Trump's 7th face-to-face interaction with Xi and the first visit by a US president to China since 2017. Dr. Sharma, the first visit by a US president in almost 10 years now, this is so significant. And also, you know, given the backdrop of the US-Iran tussle happening, as you mentioned earlier, and also, of course, we know the Cold War, you know, the economic Cold War between the US and China. Now, what can we really expect of this meeting, you know, because this appears to be a very ambitious meeting which is going to take place, you know, it's a summit meeting with his Chinese counterpart.
0: See, both are significant economies. Mm-hmm. One is the largest economy and second is the second largest economy.
2: Right.
0: And because their talks and their bilateral relations are very important for the global economy.
2: Mm-hmm.
0: And not only for the global economy, but for them also. China is important for US for the trade scenario, and US is also important for China for the trade trajectory. So I believe this will be a positive talk, and they will come out with some good announcement after this talk, and that will be beneficial for the not only for this region but for the world economy also. This is the expectation that both the economies are responsible economies, and they represent a significant chunk of the global GDP. One is a $30 trillion economy, and second is the $19 trillion economy. The total becomes at around $40 trillion, which is a significant amount at around 30 to 35% of the global GDP.
2: Right.
0: So I believe there must be some plausible announcement for the peace process between the USA and Iran.
2: So besides the economy you're talking about between the US, the two biggest economies of the world, number one, number two, China has been predominantly, if you look at the West Asian tussle as of now, China has been predominantly playing a very neutral role, standing on the sidelines. Do we expect something coming out of China, kind of maybe not jumping in, but probably, you know, kind of playing a more proactive role in de-escalating the situation over there?
0: Yes, I think so, that China is very important or significant country for the this peace process. And China holds a great weight in the global economy, and such kind of talks, and we can expect something positive for the this important talk.
2: Right, moving on. The cabinet today approved a scheme for the promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The scheme aims to incentivize new surface coal and lignite gasification projects for the production of syngas and its downstream products, targeting the gasification of approximately 75 million tons of coal and lignite. Mr. Vaishnaw said that the scheme is expected to generate annual revenue of 6,300 crore rupees.
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी. 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे.
2: And the Union Cabinet has also approved an increase in the minimum support price MSP for 14 Kharif crops for the marketing season 2026-27. Addressing the media, Minister Ashwini Vaishnaw said that the government has ensured remunerative price for farmers' produce, with the estimated payout to farmers expected to reach 2,60,000 crore rupees.
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT.
2: And in addition, the cabinet approved the upgradation and modernization of Nagpur International Airport through a long-term license involving a private partner under the PPP, that is Public-Private Partnership Model.
1: Dr. Sharma, 14 प्रकार की खरीफ की फसलों पर उनका जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसमें उसको वृद्धि देना, उसको सुदृढ़ करना, ये किस तरीके से सीधा असर, सीधा प्रभाव डालेगा जो हमारे देश के किसान हैं उन पर?
0: देखिए, सरकार का जो लक्ष्य रहा है वो हमेशा किसानों की आमदन को बढ़ाना रहा है.
1: जी.
0: सरकार ने अभी तक कितनी स्कीम्स अनाउंस की हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिनको किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो उसी संदर्भ में एक कदम है कि जो एमएसपी है वो हर एक साल रिवाइज होता है और हर एक साल बढ़ के आता है. और दूसरा, जो प्रोडक्शन है, जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो हर एक साल नए कीर्तिमान भी स्थापित करता है. ये उसी संदर्भ में एक गवर्नमेंट का सपोर्ट और हमारे किसानों की मेहनत, दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसको आगे लेके जा रहा है. और अगर हम पिछले 10 वर्ष में देखें
1: जी,
0: और पहले 10-10 वर्ष की तुलना में अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट देखें, तो इस पिछले 10 वर्ष का जो एवरेज ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, वो सबसे ज्यादा है. तो उसी संदर्भ में जो हमारा एक्सपोर्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम $1 trillion तक अपना एक्सपोर्ट लेके जाएं इस वर्ष में, तो उसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगभग कोई $50-60 बिलियन का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होता है। तो इसी के मद्देनजर सरकार हमेशा

0: जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी सपोर्ट में हमेशा तत्पर रहती है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है पिछले काफी वर्षों में।
1: जी
2: या डॉक्टर शर्मा, टॉकिंग ऑफ द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ सर्फेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टुडे विद द आउटले ऑफ 37,500 करोड़। नाउ वी डू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस, बट व्हाट वी ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड इज दैट हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सेल्फ सफिशियंसी फॉर द कंट्री गिवन द सिचुएशन। अगेन द बैकड्रॉप वुड बी द सेम, द वेस्ट एशियन क्राइसिस हैपनिंग एट द मोमेंट।
0: यस यस, दिस इज आई थिंक ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड सेकेंड फॉर अवर सेल्फ रिलायंस, बिकॉज नाउ वी आर फेसिंग सिग्निफिकेंट ट्रबल्स एट द ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो विद दिस गैसिफिकेशन, लाइक कन्वर्टिंग कोल इन गैस, इज अ ग्रेट स्टेप because this is the clean energy and government is providing a great incentive, 37,500 crores and that will be 20% of the total project cost, but not higher than 5,000 crore rupees and if the if and product wise 7,000 crore and for a total entity 12,000 crore. So I think this is a great incentive for the gasification field.
2: Yeah, and moving on to the bullion market, gold and silver prices today witnessed a sharp surge of around 6% after the government more than doubled the import duty. In the spot market, 24 carat gold was trading 5.9% higher at 1,63,220 rupees per 10 grams, while silver was trading 6.7% higher at 2,98,370 rupees per kilogram.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध वाला सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,573 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 6.7% बढ़कर 2,97,908 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। हालांकि दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि देखी गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क उपकर सहित 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया है। इस कदम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य चालू खाता घाटे को कम करना और मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना है।
2: वेरी क्विक कमेंट्स ऑन द सर्च।
0: यस प्राची, ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट दिस इज टू स्टॉप द unnecessarily import of the gold to save the forex, but the prices has gone up significantly with this custom duty. So I believe if there is a correction in the international market in the gold prices, then that will compensate the this price rise.
1: जो लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत छोटा सा,
0: देखिए अभी मैं इस जंक्चर पे तो नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाई पे हैं, बहुत वॉलिटिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो कोई भी कुछ भी लॉस हो सकता है इनके कोई इस हायर प्राइस पे एंटर करेगा।
2: यस, एंड मूविंग ऑन टू क्रूड, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल मॉडरेटली टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.3% डाउन एट $107.40 पर बैरल, वाइल द वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.4% डाउन एट $101.79 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन।
1: डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: थैंक यू डॉक्टर शर्मा। बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। The benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds 50 points. Nifty settles above 23,400. Cabinet approves scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. And gold and silver prices jump around 6% after government hikes the import duty. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए

0: 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices or

0: हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बड़ी खुशी हुई।
0: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि हमने देखा, कई ऐसे निर्णय लिए गए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आगे आने वाले वर्षों में या कहें समय में एक विकसित भारत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है फॉर द अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में खास करके, और उड़ान के बारे में भी हम जानते हैं, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
1: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहां पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे, तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है। इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है, पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है, और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है, 2009 से ये जॉइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट की बात करते हैं और लोग जल्दी देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
0: जी शुभमय, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर, वर्षा पर कितना ज्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सेसमम के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और 500 रुपए प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14 जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
1: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में आ गया है। तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं, साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है, कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं, जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं। लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा। और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का तो ऑफकोर्स है क्योंकि धान, पैडी, बहुत भारत की जगह पे पैडी का
0: बाजरा है,
1: कल्टीवेशन होता है,
0: बिल्कुल
1: बाजरा है। लेकिन साथ में जो दाल, दाल के जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स है, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है
0: जी।
1: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं। खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टि आकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया, ये तुलना अगर करें
0: जी जी।
1: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो है, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इससे जुड़ा हुआ है।
0: जी जी शुभ। और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभमय, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है। और बहुत ही सामूहिक फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
0: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो

0: सकता है शुभ में, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में? जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
1: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मॉडल वो एक ही चीज से बनता है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात कर रही है, हम इम्पोर्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीने पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कोल का हमारे पास चूंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हमारे पास है देश में, तो हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने आप को जैसे कहते हैं सेल्फ सफिशियंसी इन एनर्जी में पा सकते हैं। और सेल्फ सफिशियंसी एनर्जी अभी इस दुनिया में ये 21वीं सदी का एक मूल मंत्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इस दोनों का मिश्रण देश के लिए एक जिसे कहते हैं एसेंशियल चीज बन गया है। अपने निर्भरता, अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: इसमें ये जो 37,000 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक सपोर्ट देंगे, तो इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए। और अगर हम आगे अगर चले तो दिस गुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
0: जी जी जी शुभ मैं, और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज, गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
1: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है
0: जी,
1: ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
0: जी, जी
1: अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र के कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूर्ण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में है बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत था, जिसके तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
0: शुभ मैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। वायदे के मुताबिक

सांस झले प्रोग्राम लेकर हम पहुंच चुके हैं 7:25 और 22 सेकंड हो चुके हैं। एफएम गोल्ड की रवायत के अनुसार ये जो संगीत में सफर हमने शुरू किया है ये बस आपके दिल बहलाने का और आपके करीब आने का एक माध्यम बनता है।

0: 1964 में आई फिल्म,
1: हिंदी फिल्म जिसका नाम था अंग्रेजी में मिस्टर एक्स इन मुंबई, माफ कीजिएगा बॉम्बे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत हमने सुना।

1971 में आई थी फिल्म कटी पतंग, और 70 का दशक अगर हम राजेश खन्ना जो कि उस दौर के सुपरस्टार थे उनके नाम कर दें तो ये बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजेश खन्ना पर फिल्म आया गया, ये गीत आपने सुना, ये जो मोहब्बत है उनका है काम, फिल्म का नाम था कटी पतंग, किशोर कुमार साहब ने गाया था और संगीत था आर डी बर्मन का।

और लेरा के सभी गीतों में एक अलग ही खूबसूरती झलकती है और हर संगीतकार के संगीत को जो सुधीर होता है वो पहचान जाते हैं। कल्याण जी आनंद जी के द्वारा रचित गीत हिमालय की गोद फिल्म से और जिसे गाया था हमारी सबकी प्यारी लता दीदी ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जवानी दीवानी फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज में, आरडी बर्मन का था संगीत। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले।

आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और इस पर अभिनय किया था सदाबहार एक्टर राजेश खन्ना सर। और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा का विकास करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने

0: महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वाहनों
1: का ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे।
0: दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह नीति राजधानी में माल ढुलाई तथा आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। इस नीति के अंतर्गत बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत अंतरदेशीय कंटेनर डिपो का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क यानी पैदल चलकर काम पर जाने की अवधारणा पर आधारित समुदायों का निर्माण करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नीति दिल्ली के शहरी परिदृश्य और क्षितिज को एक नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ में कमी आएगी, शहरी गतिशीलता बेहतर होगी और किफायती आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, कुलपतियों और निदेशकों के साथ आज एक बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के शैक्षणिक संस्थाओं को नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक परिवर्तन के इंजन के रूप में विकसित होना चाहिए। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली यातायात पुलिस के प्रस्तावों और अवसंरचना से जुड़े कामों की समीक्षा भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार परिवहन व्यवस्था को और आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। श्री संधू ने गलत साइड ड्राइविंग, बिना अनुमति पार्किंग और भारी वाहनों के अवैध प्रवेश जैसी समस्याओं को मिशन मोड में हल करने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार, आईईसी और प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक के बाद सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए

0: किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा की जनता और विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति और डबल इंजन सरकार के सुशासन को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोडिमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भ्रमण करने के लिए आए छात्रों का विधानसभा परिसर में मार्गदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने इतिहास, कार्यप्रणाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में विधानसभा की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में एक जनसुनवाई के दौरान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक IP कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। सम्मेलन का विषय है पेटेंट से उत्पाद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में IP व्यवसायीकरण में तेजी लाना। श्री कृष्णन ने कहा कि देश आज विकसित भारत की परिकल्पना की दिशा में नवाचार यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना सुबह लगभग 9:54 पर मिली। खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी DB मुखर्जी के अनुसार विभाग की 28 गाड़ियां मौके पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि अब तक बिल्डिंग में काम करने वाले किसी मजदूर के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
2: हमारे कोई भी कर्मचारी जो है इंजर्ड नहीं हुए हैं। तक तो हमें सूचना मिली है कि बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है। बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग सेफ नहीं है और आसपास की फैक्ट्रियों को बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। किसी भी फैक्ट्री में जो है आग नहीं पहुंची है।
1: दिल्ली में मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े ड्रेन से 76% गाद निकाल लिया गया है। आधुनिक मशीनों, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस

वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 की परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्करी में शामिल दो मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाहन भी जब्त किया गया है। और अब दिल्ली में मौसम। राजधानी में आज सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि कल का अधिकतम तापमान 40 से 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा विकसित करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6000

0: 1,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने आज 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। उधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में बारिश के कारण देरी आई है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Union Cabinet has approved increase in minimum support prices MSP for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
2: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme aims to incentivize new surface coal and lignite gasification projects for production of syngas and its downstream products, targeting gasification of approximately 75 million tons of coal and lignite. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to United Arab Emirates, UAE,

सबसे पहले आवाज बनी, आवाज के उतार चढ़ावों से सुर बने, सुरों के संयोग से बोलों ने जन्म लिया, और फिर राग की डोरी में बंध कर बोल गीत बन गए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर उन रागों से जिन गीतों ने जन्म लिया उनकी बातें, और साथ ही एक राग की बात लेकर प्रोग्राम मधुरिमा में मैं सुनील सयाल आ चुका हूं।

राग बिलावल। मधुरिमा में आज हम बात करने वाले हैं राग बिलावल की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख और प्रातःकालीन राग है जो अपने शांत और उत्साहपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा। मधुरिमा में हम आज बात कर रहे हैं राग बिलावल की। ये बिलावल थाट का आश्रय राग है जिसमें सातों स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। आरोह अवरोह में सात स्वर और इसका वादी स्वर है ध तथा संवादी स्वर है क।

इस राग में कोमल या तीव्र स्वर का प्रयोग नहीं होता है। ये एक शांत सुबह की ताजगी भरा खुशमिजाज राग है। यह बिलावल थाट का प्रमुख राग है, इसलिए इसे बिलावल थाट का आश्रय राग भी कहा जाता है। पश्चिमी संगीत के सी मेजर स्केल के बहुत करीब है। राग अलहैया बिलावल इसका एक प्रकार है जो इससे थोड़ा भिन्न है। इसका उपयोग अक्सर भक्ति और शास्त्रीय गायन में किया जाता है।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबाब अनवर। शबाब, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति, और श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सहित कई खिलाड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। फिलहाल बारिश के कारण मैच में कुछ देरी आई है और फिलहाल टॉस जारी है। अंक तालिका में देखा जाए तो कोलकाता 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए सब कुछ आज के मैच पर निर्भर करेगा। जबकि बेंगलुरु चाहेगी कि आज का मैच जीतें और टेबल में टॉप पर पहुंचा जाए। शबाब, इससे पहले अगर कल के मैच की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन के बड़े अंतर से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल हैदराबाद की मजबूत बैटिंग लाइनअप का सामना फॉर्म में चल रहे गुजरात के गेंदबाजों से हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए, जिसमें साई सुदर्शन के 44 गेंद में 60 रन और वॉशिंगटन सुंदर के 33 गेंद में 50 रन का बड़ा योगदान रहा। हैदराबाद से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। आईपीएल में लगातार

0: 300 का आंकड़ा पार कर रही हैदराबाद के लिए ये लक्ष्य बेहद आसान नजर आ रहा था, लेकिन गुजरात के मजबूत गेंदबाजी क्रम के आगे SRS के साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए और पूरी टीम 15 ओवर पूरे होने से पहले ही 86 रन पर आउट हो गई। कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 19 रन जोड़े, जबकि गुजरात की तरफ से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट तथा मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट निकाला। इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस 12 मैच में 8 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 12 मुकाबलों में 5वीं हार के बाद 3रे पायदान पर है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: कोई टीम क्या सोच सकती है कि हैदराबाद जैसे बैटिंग लाइनअप जो लगातार 200 की छड़ी लगा देते हैं बैक टू बैक मैचेस में, उनको हम 80-90 के स्कोर पे रोक दें और मैच उतने ही अंतर से जीतें।
2: और इसका एक रीजन भी है। देखिए, जीटी एक ऐसी टीम है जो एक कंप्लीट क्रिकेट टीम है, अगर देखा जाए तो जिस तरह के खिलाड़ी उनके टीम में है, ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर्स, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दें तो ये टीम आगे बढ़ सकती है, जीत सकती है। ये टीम टेस्ट मैच की भी टीम है, यही टीम T20 की भी है, यही टीम ODI की भी है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी। साई सुदर्शन बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, आपने देखा ही होगा, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो अगर हम जीटी की बल्लेबाजी की बात करें तो जिस तरह से वो आगे ले करके गए, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने उनका साथ दिया, रन्स बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं था, यहां तो 225 और 30 भी सेफ नहीं है इस T20 फॉर्मेट, तो इस IPL में भी देखा। लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी उतनी संतुलित है, रबाडा और सिराज ने शुरुआत में क्या शानदार गेंदबाजी की और उसके बाद फील्डिंग भी आपकी अच्छी है, सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो फिर आप मैच जरूर जीतेंगे, भले ही आपकी जमा पूंजी कम हो। अगर देखा जाए तो ज्यादा स्कोर था नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की गेंदबाजी है और जिस तरह का प्रदर्शन उनके फील्डरों ने किया है, राशिद खान जैसे बॉलर, एक कंप्लीट क्रिकेट टीम इस IPL में अगर मेरे हिसाब से अगर कोई है तो वो गुजरात टाइटंस है। और मैं फिर से कहूंगा ये बात कि इस टीम को आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दीजिए, ये इसी तरह जीत हासिल करेगी। ये मौजूदा टीम सिर्फ T20 की नहीं है, इसमें जो खिलाड़ी शामिल हैं वो टेस्ट के भी दक्ष खिलाड़ी हैं, ODI के भी हैं और T20 के भी हैं। तो अगर ये टीम आगे बढ़ी है, इस समय नंबर 1 है, आज के मैच के बाद क्या होगा ये तो अभी समय बताएगा, चूंकि RCB पीछे है उनके, तो गुजरात टाइटंस डिजर्व करती है निश्चित रूप से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चैंपियनशिप का खिताब वही जीतेगी, लेकिन इतना करीब पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है
1: जी, बिल्कुल।
2: इससे पहले किसी ने शायद सोचा नहीं होगा जीटी के बारे में कि गुजरात टाइटंस की टीम इस तरह से ऊपर चली जाएगी और टेबल टॉपर होगी।
1: जी बिल्कुल, शायद अनुमान नहीं लगाया होगा। और ये टीम ऐसी टीम भी है जिसने IPL की शुरुआत से लेकर कल तक, जब उसने अपना आखिरी मुकाबला खेला, इस टीम ने लगातार अपनी गलतियों पे काम किया, जहां पे टीम थोड़ा सा विफल हो रही थी, पीछे रह रही थी, उन चीजों को सुधारा है। अगर आज के मैच की बात की जाए शबाब,
2: एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, आशीष नेहरा का नाम बहुत कम लिया जाता है। एक ऐसे कोच हैं जिनकी सेवा प्राप्त है, आपने उस तरह का कोच सिर्फ फुटबॉल में ही देखा होगा।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आशीष नेहरा की जो मेहनत है और जिस तरह से वो समर्पित रहते हैं और हर समय लाइन पर खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट कम दिया जाता है और टीम को क्रेडिट ज्यादा जा रहा है। आशीष नेहरा ने इस टीम को काफी आगे बढ़ाया है निश्चित रूप से।
1: जी बिल्कुल, आगे बढ़ाया है। और कोचिंग का एक नया फॉर्मेट
2: क्रिकेट में
1: देखा जाए तो आशीष नेहरा स्कूल ऑफ कोचिंग जो है, ये
2: बिल्कुल
1: लगातार प्लेयर को मैसेज पहुंचाना और सिर्फ ये नहीं कि आपको तेज खेलना है, कैसे खेलना है, कहां मौके बन सकते हैं। अगर आज के मैच की बात की जाए शबाब, तो कोलकाता है, कोलकाता के लिए ये मैच किसी डू और डाई से कम नहीं है कि आप करिए अन्यथा आप बाहर जाइए। और बेंगलुरु है तो क्या कह सकते, क्योंकि बारिश हो चुकी है, मैच ऑलरेडी 1-1.5 घंटे देर से शुरू होगा, ड्यू फैक्टर हो या ना हो, लेकिन एक धीमापन आपको मैदान में देखने को मिलेगा बारिश के कारण।
2: थोड़ा आउटफील्ड तो धीमा हो ही जाता है, इसके बाद रन जिस तरह से चौके आप लगाते हैं, हालांकि आप ऊपर से अगर खेले T20 फॉर्मेट है तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोशिश इसी बात की जाएगी। लेकिन यहां रायपुर में थोड़ा सा गेंद धीमी आती है बल्ले पर, थोड़ी सी परेशानी है, रन बनाना उतना आसान होगा नहीं। और रही बात KKR की, आपने कही इनके लिए अगर आगे बढ़ना है तो सभी मैच जीतने पड़ेंगे, आज अगर हारे तो यहीं पर इनकी सेवा समाप्त समझी जाएगी, क्योंकि अगर प्रतिशत की बात करें तो आज का मैच जीतने के बाद RCB का प्लेऑफ में जाना 93% पक्का, और अगर ये हारे तो इनकी आशा जो है उम्मीद सिर्फ 2% रह जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डू और डाई तो KKR के लिए ही है।
1: जी बिल्कुल, डू और डाई होगा और टीम चाहेगी कि अपनी उम्मीदों को आगे के लिए बचा के रखे।
2: इस तरह से लगातार जो जीत हासिल की है, जो वापसी की है, वो निश्चित रूप

0: उसके दो खिलाड़ी खास करके दूसरे फेस में जिस तरह से पलटे हैं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और बल्लेबाजी में जिस तरह से रिंकू सिंह ने फिर से अपना फॉर्म हासिल किया है, तो वो चीज अगर आज देखने को मिली तो फिर मजा आ जाएगा।
1: जी बिल्कुल, हो सकता है कि भले बारिश के कारण थोड़ा सा व्यवधान आया हो, लेकिन दर्शकों के लिए शायद बहुत सारा मनोरंजन।
0: अच्छी बात है कि ओवर्स नहीं कटे हैं, पूरे ओवर्स खेले जाएंगे।
1: पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाल, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मैचों का हाल।
2: थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज भारत का दिन मिला जुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तोंग सिउ तोंग को 21-9, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यूझांग को 13-21, 26-24, 21-13 से और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को 21-14, 21-15 और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-16, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं अच्छे फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिंगल्स में ही युवा थारून मन्नेपल्ली, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ और अनमोल खरब भी हार कर बाहर हो गयी। उधर मिक्स डबल्स में भारत की तीनों जोड़ियों का अभियान भी पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: एक मिला जुला दिन कह सकते हैं आज का, जहां आयुष के लिए शायद थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत का जीतना काफी ठंडक देने वाला है।
0: जी बिल्कुल, लक्ष्य सेन तो खैर निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। पीवी सिंधु ने जिस तरह का खेल दिखाया है, तो उनका फिटनेस का मसला था उनके साथ, उनका खेल देख करके यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 2024 का जो सैयद मोदी टूर्नामेंट था, उसके बाद से उन्होंने कोई खिताब जीता भी नहीं है, तो काफी गैप हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, जिस तरह का फिटनेस दिखाया, फुटवर्क दिखाया अपना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में काफी आगे जाने वाली हैं। और फिर ये थाईलैंड ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है कि मोस्टली भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, तो और बीडब्ल्यूएफ का जो ये 500 कैटेगरी का जो ये टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कई खिताब भारत के नाम पहले से ही हैं, भारतीय खिलाड़ियों के नाम। तो इसमें भी मिली जुली शुरुआत हुई है। कुछ अच्छे खिलाड़ी जिनके बारे में आपने बताया कि उनका सफर बहुत जल्दी समाप्त हो गया है, थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन प्रमुख खिलाड़ी पहले दौर से ही रेस में है।
1: जी बिल्कुल, रेस में है और उम्मीद होगी कि भारत के लिए, भारत की सबसे अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी जो वर्तमान में है पीवी सिंधु, कुछ अच्छे प्रदर्शन
0: और क्या जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने, क्या जबरदस्त, यानी कि जिस समय ओलंपिक में वो खेलती थी वो वाली सिंधु देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त वापसी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 2024 का जो फाइनल सैयद मोदी का, वहां से जो उन्होंने छोड़ा है वहीं से फिर पकड़ा है, और ये मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो क्या कहना।
1: जी बिल्कुल, ये मोमेंटम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ तक देखने को मिलता है, तो बिल्कुल ये खिलाड़ी भारत के लिए कुछ और पदक और खिताब झटकते हुए नजर आएगी। गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने आज 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच वर्ग में रजत पदक जीता, बल्कि और इसी स्पर्धा में कुल 194 किलो का वजन उठा करके कांस्य पदक भी अपने नाम किया। चीन की जिनलान झाऊ ने कुल 216 किलोग्राम भार वर्ग का वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता, जबकि वियतनाम की होई हुइंग ग्वेन ने रजत पदक अपने नाम किया। और अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो गुजरात मेजबानी कर रहा है, पहले दिन कोमल कोहर ने एक पदक भारत के लिए जीता था, उसके बाद आज ये पदक आया है, तो भारत

0: मौका मिल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है
1: जी। बिल्कुल, और खासकर ऐसे वर्ष में जब आपको एशियन गेम्स खेलने हो तो तमाम
0: सारी तैयारी उसी की है। सबसे पहले एशियन गेम्स पे ग्लासगो, तो तैयारी उसी की है, और उसमें जिस तरह के जूनियर खिलाड़ियों के एक पौध तैयार की गई है कोच की तरफ से, तो आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो आगे जो सीनियर स्तर के जो मुकाबले होंगे उसमें कई नाम आपको भारत के लिए पदक जीते हुए नजर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने नई पौध की बात की और पदक जीतने की बात की। इसी कड़ी में इस समय ताशकंद में जो एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, आज उसके अंडर 15 मुकाबलों के फाइनल खेले जाने हैं, जहां पे 15 भारतीय खिलाड़ी जो हैं स्वर्ण पदक के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नजरें वहां पर भी होंगी कि भारत कितने सोनों के साथ, कितने स्वर्ण पदक के साथ वापस लौटता है अंडर 15 कैटेगरी में।
0: ये अंडर 15 और फिर अंडर 17 अगर दोनों मिला दें तो 15 में तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है दोनों वर्ग में भारत की तरफ से हुआ है। और देखा जाए तो पुरुष वर्ग में अगर देखें तो लक्ष्य जरूर पहुंचे फाइनल में, जो तीन खिलाड़ी बाहर हुए सेमीफाइनल, उनमें से एक मुकाबला आपने देखा होगा नमन का जो कि 70 किलोग्राम वर्ग में था, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। जो चीज चाहिए बॉक्सिंग में, दो चीजें खास होती हैं, एक तो आपका मुक्का और दूसरे आपका फुटवर्क, तो नमन में ये दोनों चीज लक्ष्य की तरह ही देखने को मिली, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और 2-3 से वो ये मुकाबला ये बाउट हार गए, वरना ये खिलाड़ी भी भविष्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है मुक्केबाजी रिंग में भारत के लिए।
1: जी बिल्कुल, आपके 15 से 17 वर्ष के खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो देश को कुछ नई उम्मीदें और नई किरण नजर आती है। तीसरी राष्ट्रीय डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में तमिलनाडु के गुहान सेंथिल कुमार और संदेश पीआर की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में नमन सुराना और प्रणव अग्रवाल को 11-1 11-2 से हराया, तो बड़े अंतर से एक जीत दर्ज करते हुए नेशनल कंपटीशन में। और हांगकांग में 28 मई से शुरू होने वाली एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लंबी कूद के एथलीट शहनवाज खान को 48 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घरेलू प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर बुधवार को टीम का चयन किया। शहनवाज का नाम अंडर 20 प्रतियोगिता में 8.23 मीटर का रिकॉर्ड भी दर्ज है, और मोहम्मद अशफाक 400 मीटर रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि नितिन गुप्ता 5000 मीटर की रेस दौड़ते हुए नजर आएंगे। और पूजा ऊंची कूद में इस महाद्वीपीय अंडर 20 प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों में हैं। और एथलेटिक्स की बात है तो इस महीने के आखिरी में हो सकता है कि जैवलिन में वापस भारत कुछ और जोहर दिखाता हुआ नजर आए, डायमंड लीग इंतजार कर रही है।
0: जी बिल्कुल, नीरज चोपड़ा हालांकि इस बार कोई नया खिलाड़ी आपके सामने भारत में आएगा, लेकिन फिर भी इस मुकाबले पर तो अपना आधिपत्य भारत ने जमा रखा ही है। और जिस तरह से आप शहनवाज की बात आपने की, एक उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ ये खिलाड़ी है, 8.23 और सबसे कम उम्र में 8 मीटर की छलांग कूद करने वाला, ये बहुत कम ऐसे एथलीट भारत में है, तो इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी आगे, देखिए क्या होता है।
1: इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी,
0: चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट तो ही है
1: जी बिल्कुल, इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और इनकी उपलब्धियों पर। श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, शबाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज

0: का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की

0: यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए

0: का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रूपये पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27.

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा।

0: जा, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं।

0: या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी

भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे

0: के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला। कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है। लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय ये रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की

0: बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूं कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन

0: थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है, ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत

0: की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोरेला सेमी हाई स्पीड दौड़ी लाइन

0: परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोरेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश के रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मिले। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved increase in minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
2: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy the MSP will be 2,461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4,023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2,900 rupees and for toor it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in MSP for kharif crops for marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ काजिम गरीबाबादी, कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री यरजान आशिक बाबेव, नाइजीरिया के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत दुनोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलोवेव जोराबेविच शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया है और अनिश्चित तथा अस्थिर वैश्विक परिवेश में प्रतिभा और कौशल के आदान प्रदान का महत्व

0: और भी बढ़ गया है। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में ये बात कही। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्गेई लावरोव कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोव ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक प्रमुख परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस परमाणु संयंत्र के लिए नई बिजली इकाइयों के निर्माण में सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत इनोवेट्स 2026 के लिए आयोजित उद्योग जगत के नेताओं के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और संस्थागत भागीदारों ने भारत के गहन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भाग लिया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र जो IIT, IISc और अन्य अग्रणी संस्थानों से लेकर द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों तक की असाधारण प्रतिभाओं द्वारा संचालित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गए प्रमुख अधिकारियों में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, टेस्ला तथा स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क और ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक शामिल हैं। मेटा, वीजा, जेपी मॉर्गन, बोइंग और कारगिल के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। कल से शुरू हो रही 2 दिन की वार्ता में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्वता के बीच ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। ये द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक और तकनीकी मुद्दों के महत्व को रेखांकित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के 100 से अधिक ड्रोन ने आज यूक्रेन के कुछ इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन में रेलवे बुनियादी ढांचे और नागरिक स्थलों को निशाना बनाया है। इन हमलों में मध्य नीप्रो और उत्तर पूर्वी खार्कीव क्षेत्रों में यूक्रेन के आवासीय और रेलवे बुनियादी ढांचे, दक्षिण ओडेसा क्षेत्र में बंदरगाह बुनियादी ढांचे और मध्य पोल्टावा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष के बीच विश्वास व्यक्त किया था कि रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण अब समाप्ति की ओर है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया, मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने दो पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं रितिका सैनी आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हर श्रृंगार में। हंड्रेड डेज फिल्म से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। कहते हैं ना कि किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान का आ जाना और बिना वजह दिल का धड़कना, यही तो प्यार की पहली आहट होती है। और जब वो इंसान हर पल हर जगह नजर आने लगे तो दिल बस यही गुनगुनाता है।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में आपने सुना आशिकी फिल्म से ये गीत। नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। कहते हैं कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, जहां दूरियां भी करीब लगती हैं, और जब प्यार सच्चा हो ना तो उसमें वादे भी होते हैं, भरोसा भी होता है और साथ निभाने की चाहत भी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम आपका अपना मनपसंद हर श्रृंगार।

तो दोस्तों आज हर श्रृंगार में बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर और 11 बजे रहेगा समय समाचार का। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण

0: है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound

बिल्कुल गजब नहीं करते हैं, एक बार फिर से आ चुके हैं आपसे ही मिलने, आपको ही प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए। जी हाँ, गीत मेरे मनमीत में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहमा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये मिशन कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ।

तेरे बगैर जीने में रखा क्या है, तेरे बगैर जीने में रखा क्या है, तू नहीं तो दुनिया में रखा क्या है, और तुमसे बिछड़कर भी जिंदा रहना इससे बड़ी मेरे लिए सजा क्या है।

बिन तेरे कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, बिन तेरे कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, आ दो पल पास बैठ कर मेरे, कर दे पूरी जिंदगी की घड़ी। वैसे मुकम्मल ना हुई ये जमीन, ना मुकम्मल हुआ ये आसमां, अधूरा तेरे बिना सारा कारवां, तेरे बिना कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, तेरे बिन तो ये बूंदे बारिश की भी कुछ नहीं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों समय हुआ है 12:31 और 5 सेकंड। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू।

तुम्हारे सिवा इस दिल को कहां कुछ और चाहिए। ख्वाब हो या हो हकीकत, मुझे तो बस तुम ही चाहिए। जो तुम मिल जाओ जिंदगी में, तो फिर इस जिंदगी से कहां कुछ और चाहिए।

नजर करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजर करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, और ना देख गैरों को इतना कि मैं इश्क के जहर की आदि हो जाऊं।

तुम्हें क्या पता कि जब भी उठती है निगाहें उनकी, इस दिल में एक हलचल सी मच जाती है। बिना कहे कुछ वो सब कुछ कह जाते हैं और हमारी धड़कन यूं ही बस थम जाती है।

फूलों से कहो कि वो महफिल सजाएं, फूलों से कहो कि वो महफिल सजाएं, मेरे दिलबर की राहों को महकाएं। जिंदगी में बहार आई है उनके आने से, और इन धड़कनों से कहो कि वो जरा धीरे गाएं।

सभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। CBI ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर

है 1:11:06। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने, जिस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने बहुत ही मधुर गीत। रहेगा मेरा यानी अंजू का साथ और उम्मीद करती हूं कि ये सफर बहुत अच्छा गुजरेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तेरी यादों में खोकर मेरी रातें और भी सुहानी हो जाती हैं। तेरी यादों में खोकर मेरी रातें और भी सुहानी हो जाती हैं। चांद के नीचे बैठकर आज मैंने फिर से तुझे याद किया।

तेरी मेरी प्रेम कहानी खामोशी में ही लिखी गई। तेरी मेरी प्रेम कहानी खामोशी में ही लिखी गई। नजरों ने जो बात कही वो जुबान से ना कही गई। तेरे साथ हर लम्हा जैसे एक इबादत सा लगता है, और तेरी एक मुस्कान में ही मेरी पूरी जिंदगी संवर गई।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर है।

बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

मोहब्बत का तरीका मैंने सबसे छुपा रखा है, मोहब्बत का तरीका मैंने सबसे छुपा रखा है, जिक्र हर बात में तेरा है, बस तेरा नाम छुपा रखा है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम

0: समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 8 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अंजू, लेकर आई हूं बहुत ही मधुर और सुरीले गीत। रहिए इस सफर में मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, और ना हो निगाह में शोखी तो फिर ये दिलबरी क्या है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी

देखो तो जरा इस तारों की बारात को, सजाया है खुदा ने इस रात को। मेरा दिल तुझसे बस यही कहता है कि कभी खोना मत इस साथ को।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। भारती लेकर आएंगे कार्यक्रम हमराही। मुझे अनुमति दीजिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई

0: स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices for the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees, and for tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public

समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की, लेकिन आप सबका मैं प्यार भरा स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। पहला गीत सुनते हैं फिल्म पुकार से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। शुरुआत ही कर लेते हैं इस कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

किस्मत की बाजी में छुपे एहसास जैसे दिल को ये यकीन दिलाते हैं कि सच्चा प्यार हर हाल में अपना रास्ता बना ही लेता है।

प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है, इस सवाल में वही मासूम बेचैनी है जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कना सीखता है।

0: वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

प्यार में मीठी शरारतें रिश्तों में हंसी और मोहब्बत के रंग भर देती है, और यही शरारतें रिश्ते को और गहरा बना भी देती हैं।

चांद और तारों की चमक, चांद और तारों की चमक यही कहती है कि जब साथ अपनों का हो तो पूरी दुनिया भी किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लगने लगती है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 600

0: रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्य ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2461 rupees per quintal, for Jowar hybrid it will be 4023 rupees quintal, For Bajra, the MSP will

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारी सी गीत के साथ। गीत है फिल्म पायल की झनकार से सुलक्षणा पंडित और यशुदास की आवाज में, गीतकार राजकमल, संगीतकार माया गोविंद।

0: रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो।
1: नीर भरत जमुना तट पर, जब भर भर नीर उठाई गगर, तब डा...

इस गीत के गीतकार SH बिहारी और संगीतकार OP नायर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, बासु, RD बर्मन, भूपेंद्र सिंह और स्वपन चक्रवर्ती की आवाज में, गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार राज NCP।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा अरुणिमा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं अगला गीत फिल्म दोस्ताना से मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब आपको छोड़े जा रही हूँ कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति के साथ, और यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भोर सुहानी में। तब तक के लिए आनंद लीजिए इस लास्ट जो हमारी प्रस्तुति है उसका, जिसको अपनी आवाज से सजाया है अनुराधा पोटवाल ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज ढोलेरा सेमी हाईस्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार इस महीने की 26 तारीख को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत

स्वास्थ्य बिस्वा सरमा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। श्री सरमा ने कहा कि असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे कल अबुधाबी पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कल से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसकी पुष्टि आज उनके कार्यालय ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि इस बैठक से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है, हालांकि इस प्रगति से जुड़े किसी विशेष विवरण का खुलासा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिंग टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शूल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

0: कभी कभी दिल का दीवाना हो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि सपनों की उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीदें मुस्कुराना सीख जाती हैं।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक

जहाँ संगीत बसता है वहाँ मन की थकावट मिटी जाती है। हर नई सुबह जीवन को सुरों में ढालकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

फूल हमें सिखाते हैं मुस्कुराना, हालातों पर नहीं, अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। खुशबू बांटते रहिए, दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी।